0: सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
0: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए
0: जी रखी
1: है। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें
0: उसमें आकर्षित हुए, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल,
0: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरती प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है, और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं, और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
3: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
4: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आती हूँ, और उसमें हम बातें जो है वो करते हैं। आज सैटरडे का दिन है तो मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आई हूँ। जी हाँ, देखिए आज की हमारी जो कमाल की रेसिपी है ना, जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और वो है महाराष्ट्र की बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और देखिए आप महाराष्ट्र में इसे जो है आपको मिल जाएगी, आपको ये गुजरात में मिल जाएगी, और बहुत कमाल ये लगती है। वैसे तो गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की आइकॉनिक स्ट्रीट फूड की जो है वो सुपरस्टार है ये। और देखिए मैं आपको ना आज एक ऐसी टेस्टी डिश के बारे में बताऊँगी, इसका नाम बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज आपको ना बड़ी टेस्टी कमाल की रेसिपी के बारे में बताने वाली हूँ. देखिए, पाव के अंदर थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार आलू, मीठी सौंठ और साथ ही तीखी लहसुनी की चटनी अगर हो जाए, ऊपर से लाल लाल अनार के दाने और क्रंची रोस्टेड मसालेदार मूंगफली और बारीक देखिए जो नायलन सेब है वो हो जाए, और साथ ही आपको जब ये सब तवे पर ढेर सारे मक्खन में सिकता है ना तो मुंह में ना मतलब बिना बोले ना पानी आ जाता है. वैसे तो मैं ना आज गुजरात के कच्छ से निकली एक बहुत ही कमाल की एक टेस्टी आइकॉनिक स्ट्रीट फूड की सुपरस्टार डिश के बारे में आपको बताने वाली हूँ, और ये है दाबेली. तो अगर देखिए अपनी सुबह की चाय का कप अगर आपको ढाना है ना तो दाबेली होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि आज है वीकेंड यानी कि सैटरडे का, और संडे जब है वही तब भी आप कल भी आप इसे बना सकते हैं. अपनी डायरी और अपना पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको ना ये चटपटा क्रंची दाबेली आपको बताने वाली हूँ कैसे बनेगा. तो फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel like.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ बड़े टेस्टी एक रेसिपी आप सभी के लिए। और आज देखिए, जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त हो और अचानक किचन या रास्ते की किसी मसालेदार मशहूर, और देखिए जो तवे पर पिघलता हुआ मक्खन, भुने मसालों, लहसुन की तीखी चटनी की

महक हवा में जब घुल जाती है, सच बताऊं मतलब दिमाग की ना बत्ती जलाने के लिए ना किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इंडियन स्ट्रीट फूड की अगर बात करें ना, तो इसका एक अपना अलग स्वाद है। और जब बात दाबेली की हो तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बाइट में सारे स्वाद का ब्लास्ट जो है वो हो गया हो। ये फीलिंग सीधा दिल को छू जाती है। आज का ये जो हमारा सफर है बहुत ज़्यादा कमाल है, और ये चटपटे स्ट्रीट फूड स्पेशल को बिल्कुल ये डेडिकेटेड है। और आज हम बनाने वाले हैं दाबेली। दाबेली जो है देखिए बहुत कमाल है, और मुंबई का वड़ा पाव या गुजरात की जो दाबेली है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन देखिए इसको बनाना कैसे घर पर, क्योंकि जब भी हम स्ट्रीट स्टाइल खाते हैं ना तो हमें ना थोड़ा सा डाउट जहाँ होता है ना वो है क्वालिटी और क्वांटिटी में, और पैसों के हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ा और मच बेटर होना चाहिए। और जब आप घर पे बनाते हैं ना तो वो स्वाद वो प्यार वो मिलता है। तो अगर आप भी दाबेली बनाने का सोच रहे हैं ना तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं इसके इतिहास की ओर। ये बनी कैसे, आई कैसे, सबको मिली कैसे, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील राइट।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. आज है सैटरडे का दिन और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ. आज की हमारी कमाल की टेस्टी रेसिपी है दाबेली की. जी हाँ, देखिए क्या आप जानते हैं कि दाबेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दाबेली का इतिहास बहुत पुराना है. वैसे देखिए इतना भी पुराना नहीं कि देखिए याद ना किया जा सके, पर बहुत दिलचस्प है. साथ ही देखिए 1960s में गुजरात के कच्छ जिले में एक छोटे से शहर मांडवी में एक विजनरी रहरी वाले थे और जिनका नाम था जो है वो केशवाजी गाभा. इनका नाम था केशवाजी गाभा चुदासमा. और देखिए ये इन्होंने एक ऐसी डिश क्रिएट करने की सोची जो सस्ती हो, पेट भर सके और जिसमें कच्छ के ट्रेडिशनल मसालों का मैजिक हो. और उन्होंने पाव के अंदर चटपटा आलू स्टफिंग भरकर हाथों से दबाकर तवे पर सेका. गुजराती में दाबेली का मतलब होता है दबा हुआ, यानी कि प्रेस्ड. और वहां से मांडवी दाबेली जो है वो पूरे गुजरात में, आज पूरे देश के दिलों पर, सिर्फ गुजरात में नहीं और पूरे देश में भी ये उनके दिलों पर राज कर रही है. और इतनी शानदार कहानी है कि एक आम इंसान के बनाए जो लाजवाब इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो काबिले तारीफ है. कि देखिए शुरुआत कहाँ से हुई और आज दाबेली को पूरा वर्ल्ड जानता है. और मैं आपको बता दूं, अब क्या आपने कभी सोचा है कि दाबेली जो है वो इतनी एडिक्टेड क्यों हो जाती है? इसके पीछे एक वर्ल्ड क्लास कल्नरी साइंस छुपी हुई है जिसे कहते हैं टेक्सचर एंड फ्लेवर बैलेंस. एक ही बाइट में आपको सॉफ्ट पाव मिलता है, क्रीमी आलू मिलता है, क्रंची पीनट्स मिलते हैं, जूसी एंड जूसी बहुत जूसी अनार का ब्लास्ट मिलता है और क्रिस्पी सेव का क्रंच. मसालों में जो है वो सूखा नारियल, लौंग, दालचीनी और आमचूर का आशीर्वाद होता है. एक ही डिश में तीखे, मीठे, खट्टा और नमकीन, ऐसी मल्टी डायमेंशनल जो डिश है वो दुनिया के किसी बड़े मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पर अगर ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी नहीं मिल पाएगी आपको जो कि इस डिश में है. तो देखिए इसीलिए ये इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी कमाल की है. तो चलिए दाबेली की हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी बात करूंगी. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. आज लेकर के आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी डिश. और देखिए, इंडिया को ऐसे ही नहीं, स्ट्रीट फूड का किंग कहा जाता है. गुजरात के अहमदाबाद की अगर मैंने एक चौक की अगर बात करें, माँ मार्केट की बात करें, या हमारे फरीदाबाद के सेक्टर मार्केट्स की अगर बात करें, तो दोपहर ढलने के बाद जो दाबेली के जो वहाँ पर देखिए स्ट्रीट फूड होता है, वहाँ भीड़ लग जाती है और वो देखने लायक होती है. गोल गोल तवे पर लाल पीले रंगों से सजी आलू की प्लेट, कटोरी में रखा अनार और ताज़ी जो है वो कोटमिर यानी कि धनिया जो है वो नज़ारा ही भूख बढ़ाता है. खाना हमारी डेली रूटीन को एक्साइटिंग बना देता है. और अगर आप भी कोई देखिए दाबेली का आपका कोई फेवरेट स्पॉट है फरीदाबाद में, तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए. ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनेवर रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त हो गया आपको बताने का कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैनेवर रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है. आपको डाउनलोड करने के लिए अपने एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने के बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप और जुड़ रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक टू रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और रिचार्ज मॉर्निंग में मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ जाती हूँ. सैटरडे का आज दिन है और देखिए एक मैसेज जो है वो हमारे पास आया है, और ये मैसेज है नेहा जी का सेक्टर 28 फरीदाबाद से. और ये पूछ रही हैं, साक्षी घर पर जब भी दाबेली बनाते हैं वो आलू का मसाला बिल्कुल समोसे जैसा लगता है, बाजार वाला ऑथेंटिक स्वाद देता है, वो लाल रंग का नहीं आता, और असली दाबेली मसाला और जो उसकी असेंबली है वो कैसे करें. सही वक्त पर सही सवाल नेहा जी, बिल्कुल आज आपने ना पूछ लिया है. और मैं आज ना आपको जो इसके मसाले हैं, ऑथेंटिक होममेड दाबेली मसाला और जो स्ट्रीट स्टाइल आप खाते हैं ओरिजिनल जो कच्ची मसाला है दाबेली मसाला, वो आज बताने वाली हूँ. तो अपना डायरी और पेन तैयार रखिए. तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि 1960 में मांडवी कच्छ में जो है वो केशवर जी गाभा चुड़ासमा ने इस डिश को इन्वेंट किया था. और ये वेस्टर्न बर्गर का देसी मसालेदार और स्वीट टैंगी आंसर है, जवाब है. और साथ ही इसे बनाना कैसे है, सबसे पहले साबुत धनिया लेना है 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर लेना है आपको, या जीरा लेना है 1 टीस्पून, लौंग लेनी है 3 से 4, दालचीनी 1 इंच स्टिक आपको लेनी है, काली मिर्च लेनी है आपको 1/2 टीस्पून, सूखा नारियल लेना है आपको 2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेना है आपको 1.5 टेबलस्पून, और साथ ही ये ब्राइट रेड कलर के लिए होगा. इसी के साथ आमचूर लेना है आपको, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर लेना है 1 टेबलस्पून, और साथ ही साथ 1 टीस्पून आप ले सकते हैं शुगर लेनी है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक लेना है 1/2 टीस्पून, ऐसा स्वाद अनुसार जैसा भी आपको ठीक लगे. इसके साथ साथ जो आप मसाले आप बनाएंगे स्टफिंग आलू की बनाएंगे, उसके लिए आपको 4 आलू लेने हैं उबले हुए, मीडियम साइज के होने चाहिए, और इसे मैश कर लीजिएगा. दाबेली मसाला आपको लेना है 2.5 टेबलस्पून, इमली खजूर चटनी आपको लेनी है 3 टेबलस्पून, ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून, नमक लेना है स्वाद अनुसार, पानी लेना है जो 1/4 कप आपको सिर्फ पानी लेना है. इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स जो है आपको लेनी है टॉपिंग्स के लिए भी, तो उसके लिए आपको जो है वो बंस लेने हैं, यानी कि आपको जो लड़ी पाव है वो लेना है 6 से 8, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में आराम से. इसके बाद आपको जो है वो मसाला पीनट्स लेनी है, मूंगफली लेनी है 1/2 कप, अनार का दाना जो है अनार के दाने लेने हैं 1/2 कप, फ्रेश हरा धनिया लेना है 1/2 कप, फाइनली चॉप होना चाहिए, बारीक कटा हुआ प्याज लेना है 1/2 कप, फाइनली जो नायलन सेव होती है वो लेनी है आपको 1 कप, साथ ही तीखी लहसुन चटनी लेनी है, और रेड जो गार्लिक चटनी है ये 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, इमली गुड़ की चटनी लेनी है 3 टेबलस्पून, और इसी के साथ मक्खन लेना है रोस्ट करने के लिए. और साथ ही इसकी विधि क्या है वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हुई एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बात कर रही हूँ मैं अब कमाल की टेस्टी रेसिपी की, और अब बात करी हमने आज दाबेली की। दाबेली कैसे आपको बनानी है उस पर बात करते हैं, इसकी विधि क्या है, आपको इन्ग्रीडियंट्स बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको होममेड दाबेली मसाला तैयार करना है। सबसे पहले पैन में साबुत धनिया, जीरा, लौंग, दालचीनी, काले मिर्च और सूखा नारियल 2 मिनट धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। ठंडा होने पर मिक्सचर में आपको कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर, चीनी और नमक के साथ आपको जो है ये पीस कर एक फाइन पाउडर इसका तैयार कर लेना है। इसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करना है, फ्लेम को लो रखना है और 2.5 टेबलस्पून दाबेली मसाला डालना है। तुरंत 3 टेबलस्पून मीठी इमली की चटनी और 1/4 कप पानी मिलाकर, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, मिला देना है। इसके बाद अब इस बबलिंग मसाले में आपको मैश्ड पोटैटो जो है, यानी कि जो आलू है वो डालने हैं, नमक ऐड करना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और अच्छे से पकाना है जब तक मिक्सचर जो है वो स्मूथ सॉसी पेस्ट ना बन जाए, तब तक आपको ये करना है। इसके बाद क्या करना है बात करूंगी इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती है बातें लेकर के आई हूँ आपके लिए, कमाल की टेस्टी दाबेली की रेसिपी और इसे बनाना कैसे है उसकी विधि बता रही हूँ। तो देखिए, प्लेटिंग आपको अब करनी है, सारी स्टफिंग आपकी तैयार हो चुकी है। प्लेटिंग के बाद अगर बात करें तो मसालेदार आलू को एक फ्लैट प्लेट या थाली में बराबर फैला लीजिए। ऊपर से आपको ग्रेटेड फ्रेश को जो कोकोनट है, जो नारियल है वो डालना है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ढेर सारे अनार के दाने, बारीक कटा प्याज और साथ ही साथ मसाला पीनट्स और थोड़ी सी नारियल सेव आपको डालनी है। इसके बाद पाव के बीच को आपको जो है वो स्लिट करना है और अलग अलग इसे नहीं करना है, बस एक पॉकेट जो है वो बनानी है। एक तरफ तीखी लहसुन की आपको चटनी जो है वो डालनी है और दूसरी तरफ मीठी इमली की चटनी लगानी है और बीच में 2 बड़े चम्मच आपको जो है वो भरकर प्लेट के सारी जो टॉपिंग्स है, जो हमने आलू की स्टफिंग रखी है वो आपको रखनी है। ऊपर से थोड़ा सा नारियल जो है वो डालना है, अनार और मसाला पीनट्स आपको डालने हैं। पाव को हाथ से हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो दावेली यानी कि दबा हुआ प्रेसिंग जो है वो आ जाए। इसके साथ साथ तवे पर आपको 1 बड़ा चम्मच मक्खन का डालना है। दावेली को तवे पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक सेकना है। तवे से निकलकर एक जो है वो दाबेली के किनारे जो है उसको प्लेट में आपको रखी नायलन सेव पर आपको रोल करना है ताकि सेव स्टफिंग पर चिपक जाए और गर्मा गर्म जो दाबेली है, जो गुजरात स्टाइल दाबेली है, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूं और वो रेसिपी है दाबेली की. तो देखिए कुछ किचन टिप्स भी आपको दूंगी, कुकिंग टिप्स आपको दूंगी. तो सबसे पहले आलू का जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए. मसाला जो है भूनते वक्त तो थोड़ा पानी और इमली चटनी डालने से स्टफिंग जो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है और पाव मसाले को सोख कर रखता है. इसी के साथ मसाला पीनट्स मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल रोस्टेड पीनट्स में आप अगर आधा टेबल टीस्पून जो है वो दाबेली मसाला, एक पिंच नमक और 3 ड्रॉप तेल मिलाते हैं तो इंस्टेंट चटपटी मसाला मूंगफली बनकर तैयार हो जाएगी. इसी के साथ साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का। ये वक्त कहता है कि साक्षी इजाजत लेनी होगी, जाना होगा, तभी तो आपके लिए देखिए सभी लिसनर्स के लिए रेडियो मानव रेस्ट दूसरा प्रोग्राम लेकर के आएगा, और जिसमें हम बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज आपको मैंने कमाल की टेस्टी रेसिपी के बारे में बताया है, और ये रेसिपी है गुजरात की कच्छ की दाबेली की, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जिसमें ढेर सारे फ्लेवर्स हैं, चाहे वो मीठे की बात करें, तीखे की बात करें, नमकीन की बात करें, तो सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप ये दाबेली घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और कार्यक्रम है ग्रीन ग्रह, जिसे आपके बीच लेकर आते हैं हर हफ्ते डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब व पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जो हम आपके बीच में लेकर आए हैं और जानेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। क्या कर रहा है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन जो हमारे समाज उत्थान और पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज है कार्यक्रम ग्रीन ग्रह का आखिरी एपिसोड और इस सीरीज में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, वो एक्सपर्ट्स जो वाकई पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन और पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। ये कदम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं जो वाकई पर्यावरण को एक छोटी सी किरण तो दे ही रहे हैं और इस उम्मीद की किरण पर ही तो दुनिया कायम है। हमारे रोजमर्रा का जीवन और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये हम सब जानते हैं कि हम जिस तरीके से अपने कचरे का निस्तारण करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में बिना कोई सोचे समझे इतना सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, सामान खरीदते हैं, उस प्लास्टिक को यूं ही फेंक देते हैं, दूध की थैली से लेकर बड़े शॉपिंग बैग तक हर चीज़ कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ढेर सारे कुरियर्स मंगाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, आपको लगता होगा ये तो शायद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट वे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि जो कुरियर्स आप मंगाते हैं वो कुरियर्स कहीं ना कहीं दूर से आ रहे हैं। इकोनॉमी को तो ठीक रख रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जब आते हैं तो फ्लाइट या ट्रेन या फिर ट्रक्स बसेस के जरिए पहुंचते हैं और वहां पर भी ईंधन का इस्तेमाल होता है और बार बार इन कुरियर्स का आना या फिर रिप्लेस होना या फिर रिटर्न होना, सेम प्रोसेस और सेम पर्यावरण को झटका। इसके साथ साथ हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत जरूरी सी चीज है, वो है कूड़े को फेंकना। आपके घर से जो कचरा निकलता है, क्या आप उसे एक ही डस्टबिन में डालते हैं? अगर हाँ, तो ये कचरा छोटा सा चेंज आपके जीवन में ला रहा है और वो है पर्यावरण को खराब करने का चेंज। और अगर आपकी छोटी सी कोशिश हो तो ये पर्यावरण को खराब करने का चेंज वापस ठीक किया जा सकता है। कैसे? कचरे को अलग करके, सब्जियों, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती, फूल पत्तियां एक डस्टबिन में डालें, यानी ग्रीन कलर के वेट वेस्ट के डब्बे में डालें। और दूसरा, ड्राई वेस्ट यानी कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पैकेजिंग, मेटल कैंस, ग्लास वगैरह सब ड्राई वेस्ट में डालें। सैनिटरी वेस्ट और कुछ स्पेशल केयर वेस्ट को अलग रखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय नियमों में सोर्स पर अलग अलग वेस्ट रखने और सेग्रीगेटेड वेस्ट को ऑथराइज कलेक्टर रिसाइकलर्स को देने पर जोर दिया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसी ही कुछ बातें हम आपके लिए पिछली कुछ सीरीज में लेकर आए, जहां पर हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े, एक्सपर्ट जो इको क्लब से आए, एक्सपर्ट जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो भारत में नहीं बाहर रह रहे हैं लेकिन कार्य पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाने की। हमारे बीच में एक एक्सपर्ट ऐसे जुड़े जिन्होंने वाकई बहुत सारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया है और ना केवल कार्य किया है अपितु सरकार से कई बार जवाब तलब भी किया है, यानी RTI के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी जाननी चाहिए है। पंकज ग्रोवर जी हमारे साथ पिछले कुछ एपिसोड में जुड़े, जिन्होंने बताया कि बंदवाड़ी का जो कूड़ा का एक बड़ा सा ढेर है वो किस तरीके से आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनका पानी दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में कैंसर फैलता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो आसपास के एनवायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं ये कितने घातक हो सकते हैं, जैसा कि हमारे आसपास चाहे साउंड पोल्यूशन हो यानी नॉइस पोल्यूशन हो, या फिर पानी में बढ़ता हुआ पोल्यूशन हो, या फिर हवा में बढ़ता हुआ पोल्यूशन, ये हर तरीके से कैसे हम तक एक जहर की तरह पहुँच रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जमकर जो किया जा रहा है सब्जियों में, या फिर पानी में जो जा रही है, नदियों में जो वेस्ट जा रहा है इंडस्ट्रीज का, वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये सारी चीज़ें पंकज जी ने हमें बताई। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी नहीं एक और खास एक्सपर्ट जो बायो एंजाइम्स पर काम कर रही हैं। जी हाँ, बायो एंजाइम्स पर सुचेता जी हमारे साथ जुड़ी, सुचेता साहू जी, जो कि बायो एंजाइम्स यानी घर में ऐसे कुछ उत्पाद बना रही हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो जनरली हमें केमिकल से भरपूर मात्रा में बाहर मिलते हैं, जिनको हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं अपने बाथरूम्स को साफ करने के लिए ब्लीच के तौर पर, या फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के तौर पर, या फिर हम इंसेक्ट्स भगाने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर्स के तौर पर, या फिर फिनाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुचेता जी बायो एंजाइम्स के तौर पर इनको बनाती हैं, अपने ही घर की बालकनी में इनको फर्मेंट करती हैं, वो भी सिर्फ कुछ छिलके, सब्जियां और थोड़े से गुड़ के साथ। और जब ये फर्मेंट हो जाता है तो इसको सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है लोगों तक, ताकि वो अपने घर को केमिकल फ्री रख सके। तो ये सुचेता जी से हमने जाना। डॉक्टर निधि डिडवानिया हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने बताया कि वेस्ट सेग्रीगेशन कितना ज़रूरी है। अगर ये वेस्ट सेग्रीगेशन हम नहीं करते हैं तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है हमें। जी हाँ, इस बारे में हमने बहुत सी बातें उनसे जानी और वेस्ट सेग्रीगेशन के सही तरीके भी जाने। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहीं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, कुछ इको क्लब से जुड़े, कुछ इको सवेरा से जुड़े, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमने कोशिश नहीं करी तो हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स या अपने बच्चों के लिए शायद एक ऐसा माहौल छोड़ जाएंगे जो बहुत बहुत खतरनाक होगा, जिसका एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है कि किस तरीके से नेपाल में आई बाढ़, बाकी जगहों पर आई दिक्कतें प्रॉब्लम्स दे रही हैं हम सभी को। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं हमारे बहुत ही खास गेस्ट से, या फिर कहें होस्ट से, जिन्होंने हमें बहुत कुछ गाइड किया है। डॉक्टर एनसी वाधवा जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी हैं। साथ ही डॉक्टर एनसी वाधवा जी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल भी हैं। सो आइए जानते हैं इनसे कुछ खास कि आखिर कैसे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन दिन रात कार्य कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए और समाज उत्थान के लिए।
1: सर, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका लक्ष्य क्या है?
2: डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का गठन 11 अप्रैल 2014 को हमारे स्वर्गीय जो फाउंडर थे डॉक्टर ओपी भल्ला जी, जिनका देहावसान 16 सितंबर 2013 को हुआ था, उनकी स्मृति में ये संस्थापना हुई। और इसका जो लक्ष्य है इस फाउंडेशन का कि मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सामाजिक दायित्व कहते हैं, वो जिम्मेवारी, वो दायित्व निभाने के लिए ये फाउंडेशन मुख्य रूप में अपने विद्यार्थियों को साथ जोड़कर, अपने अध्यापकों को, मैनेजमेंट को, या इससे जुड़े जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हम सब मिलजुल कर इस प्रकार के कार्यों में भागीदारी डालते हैं जी। ताकि जो समाज के प्रति एक अच्छी प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो जिम्मेवारी है उसका हम मतलब उसका वो निभा सकें और लोगों के भलाई के कार्य हम कर सकें
1: जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन सोशल और एनवायरनमेंट की फील्ड में क्या क्या कार्य कर रहा है? कई सालों से कर रहा है, लेकिन आज इन प्रेजेंट क्या चल रहे हैं?
2: दोनों ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र या पर्यावरण का क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि इस शहर में आप देखेंगे बहुत सारे स्लम्स हैं, गरीबी से नीचे रहने वाले बहुत सारे परिवार हैं, उनके पास पूरे संसाधन नहीं हैं अपने, मतलब इवन रोज़मर्रा के जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी उनके पास पूरे संसाधन नहीं होते। तो ऐसे वर्ग की सहायता के लिए, चाहे उनको कोई अनाज के जो है ना समय समय पर देना, उनको कुछ कपड़े, वस्त्र, दूसरी जीवन की आवश्यकताएं वो उनको मुहैया कराना, उनके मोहल्लों में सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं का अभाव है, तो वहाँ किसी ना किसी रूप में अपनी संस्था से देना, ये तो एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। जहाँ तक पर्यावरण है, यस, बदलते वातावरण में वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, हवा दूषित हो गई, मिट्टी दूषित हो गई, पानी बुरी तरह से दूषित है, गर्मी बढ़ रही है, कभी अकाल की स्थिति होती है, कभी कम वर्षा, कभी अत्यधिक गर्मी, तो इस क्षेत्र में भी जो है ग्रीनिंग करके, पेड़ लगा के और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रदूषित होने से बचाना, हवा में प्रदूषण ना हो, उसके लिए लोगों को जानकारी देना, ज्ञान बांटना, उनका जो है सेंसिटाइजेशन करना, ये सारे कार्य पर्यावरण से जुड़े हैं। और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन ने अनेकों प्रोजेक्ट्स सामाजिक क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी, अभी जो ताज़ा उदाहरण है कि शहर में क्योंकि सफाई अच्छी तरह नहीं होती और जो कूड़े का निस्तारण ठीक नहीं होता और लैंडफिल साइट्स की जो है गंदगी बढ़ती जा रही है, हमने एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी को अडॉप्ट किया कि वहाँ गीला और सूखा कूड़ा शुरू से ही घर से ही लोग उसका अलग अलग करके दें, ताकि गीले कूड़े को उसको खाद में या एनर्जी में बदला जा सके और जो दूसरा खुश्क कूड़ा है जो रिसाइकल हो सके, दोबारा इस्तेमाल में आ सके, उसको निकाल लेना, और जो बड़ा अक्रिय इनर्ट वेस्ट है वो लैंडफिल साइट्स में, पत्थर है, रोड़ी है, जमीन है, भूमि है, कुछ और है, शीशा है, जिनका कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं, तो उनको गड़ों में वो करना। तो ये प्रोजेक्ट्स कई रूपों में फाउंडेशन ने मतलब चालू किए हैं।
1: जी जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा, आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन लेकर के आ रहा है?
2: यूं तो हमने जो पुराने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को शिक्षा स्तर ऊंचा करना, उनकी उनको सुविधाएं बांटना, स्कूलों में जो है अतिरिक्त बुक्स, कंप्यूटर गिफ्ट करना, हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ लगाना, पार्क डेवलप करना, मियावाकी फॉरेस्ट करना, और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके अतिरिक्त जो नए प्रोजेक्ट्स हम अब आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स एक मेजर प्रॉब्लम है, रोज दुर्घटनाएं हो रही, लोगों की मौतें हो रही, कोई अपंग हो रहा, इससे प्रोडक्टिविटी का लॉस है, मैनडेज का लॉस है। तो एक तो रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि एक रोड सेफ्टी पार्क डेवलप किया जाए, लोगों को इसका ज्ञान वो किया जाए, कुछ चौराहे जहां ब्लाइंड कर्व्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाएं, वहाँ वो सभी प्रयास किए जाएं, चाहे रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है वहाँ, चाहे लाइटिंग बढ़ाना है, चाहे रेड लाइट्स लगाने हैं। तो एक तो रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट, एक ऐसा है कि हमने ऑलरेडी कौशल और मार्गदर्शन प्रोग्राम, ये जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान या दूसरी स्किल्स मुहैया कराना, या इन बच्चों को के आगे प्लस टू के बाद इनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, इसको हम कैरियर काउंसलिंग या मार्गदर्शन कहते हैं। इन बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, हम अपने मानव रचना प्रांगण में हर शनिवार जब हमारी लैब्स फ्री

0: पार्क्स कई जगह कर रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट या मियावाकी गार्डन, ये जापानीज तरीका है जिसमें ग्रूव्स में मतलब घने पेड़ लगाए जाते हैं। फरीदाबाद क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रदूषित सिटी है, इसलिए यहाँ मतलब दूर दूर पेड़ ना लगा के हम मियावाकी पार्क के रूप में कई जगह ये प्रयास करना चाहते हैं ताकि अधिक पेड़ लगें और फरीदाबाद के जलवायु का सुधार हो, यहाँ की हवा में जो प्रदूषित मात्रा है वो कम हो और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, सेफ रहे।
1: जी सर, यूथ को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कदम जो हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि आज का जो युवा है, जो यूथ है, वो जुड़ेगा नहीं जब तक, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, तो उनको जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: जो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन है, इसका मूल मंत्र यही है कि नौजवानों को, विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में, समाज कल्याण के कार्यों में जोड़ें, उनको अगर इन गतिविधियों में ना लगाया जाए तो आप देखते हैं कि सारा दिन उनका कंप्यूटर पे वो या मोबाइल पे वो चलता रहता है। अननेसेसरी यस, आईटी क्षेत्र बहुत सहायक है ज्ञान बांटने में, हमारी स्किल डेवलपमेंट में, बट उसका अत्याधिक मोबाइल टाइप इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना विद्यार्थियों को जो एक्टिव लाइफ है, जो सामाजिक वातावरण है और जो मुद्दे हैं उनसे दूर हटाता है। उनके बिहेवियर में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, तो उनको पॉजिटिव वाइब्स उनमें वो करने के लिए उनकी व्यक्तित्व में अच्छा सकारात्मक तरंगे वो करने के लिए हम उन्हें फाउंडेशन से जुड़ी गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं, उनको वॉलंटियर बनाते हैं, उनको पर्यावरण रक्षक के रूप में और या ओल्ड एज होम्स ले जाना, ऑर्फनेजिस में ले जाना और जो सामाजिक कल्याण के केंद्र हैं वहाँ ले जाना। जब वो ये सारा वातावरण देखते हैं, उनमें जो है सिंपथी की, एम्पथी की, कंपैशन की फीलिंग्स डेवलप होती है, उनको हम कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं, जैसे समर वकेशन आते हैं उन्हें कहते हैं कि कोई सोशल प्रोजेक्ट बनाइएगा जिससे आप समाज को वापस क्या दे सकते हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ऐसे प्रयोगों से उनको हम सकारात्मक गतिविधियों में जोड़ते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी, समाज को वापस देने की प्रवृत्ति, हिम्मत से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का मुकाबला करने की, किसी भी कोई अगर संकट में स्थिति है तो हौसला रखें और उसके साथ जूझें। जब उनके चरित्र में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी तो वो हर प्रकार से सबल बनते जाएंगे और इस प्रकार उनके जो व्यक्तित्व का निखार होगा, उनके शिक्षा के स्तर में तो सुधार होगा ही होगा, उनके अपने कैरियर में या सामाजिक जीवन में लोगों को वापस देने की जो उनकी जो एक गुण है वो उसमें विकसित होगा।
1: सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर कोई संस्था आपके साथ जुड़ना चाहती है तो वो किस प्रकार डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के साथ जुड़ सकती हैं?
0: मैं आपकी सूचना के लिए और श्रोताओं की सूचना के लिए बताना चाहूँगा कि हम फाउंडेशन को ऑलरेडी हम लोग फरीदाबाद में कम से कम 2 दर्जन NGOs जो कोई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे ओल्ड एज होम है या ऑर्फनेजेस हैं या जो रिलीज चाइल्ड लेबर का सेंटर है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का एक केंद्र है, डेफ एंड डम का है, एनिमल शेल्टर है, कुछ स्लम के बच्चों को पढ़ाने के इस प्रकार के केंद्र बने हुए हैं, इन सब संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनको मोरल सपोर्ट देते हैं, उनको कई बार उनकी आवश्यकताओं के जो साधन हैं वो हम कई बार धन से, कई बार इक्विपमेंट से वो करते हैं। बाकी भी संस्थाओं को जो हमारे को हमारी गतिविधियों के थ्रू जानकारी हासिल करके हमें संपर्क करते हैं तो सदा हम उनको सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि

0: के और से और इस प्रकार की संस्थाएं रचनात्मक कार्य करें, समाज सेवा के कार्य करें। हर संस्था जो खुले मन से आम जनता के लिए कोई भी कल्याणकारी प्रोग्राम वो कर रही है, हम सदा उनके साथ खड़े मिलते हैं। तो हमारा ऐसी सब संस्थाओं के लिए स्वागतम है। हम सदा जो हमारे बल होगा, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे साधन है, अगर हम इस योग्य हैं कि उनकी सहायता कर सकें, तो सहर्ष हम इस कार्य में उनका हाथ बटाएंगे।
1: थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरीके से पर्यावरण को बेहतर करने के लिए डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन कार्य कर रहा है, अलग अलग कामों के जरिए समाज को बेहतर दिशा देने के लिए, बेहतर रूप देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी सीरीज में हमने बहुत से और भी एक्सपर्ट से बात करी, जैसे डॉक्टर विनीता शर्मा, जो कि एनवायरमेंट टॉक्सिकेंट और ह्यूमन हेल्थ पर कार्य कर रही हैं, इनका कार्य इस फील्ड से जुड़ा होता है। वैसे ये प्रोफेसर हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ में, और इन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन आपके पर्यावरण के लिए एक बेहतर प्रयास है, जिसको इतने सालों से हम नहीं कर रहे। अगर हम करेंगे तो ये इस पर्यावरण को थोड़ा सा तो बेहतर बना ही देगा। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सचान भी जुड़ी, जिन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल, रीयूज के बारे में भी जानकारी दी कि कैसे ये सर्कुलर इकोनॉमी हमारे पर्यावरण को और बेहतर बना सकती है। कोशिश तो हमने पूरी करी कि हम आप तक ये जानकारी अच्छे तरीके से पहुँचा पाएँ, लेकिन उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ मिलने से आपने कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ तो जाना ही होगा। अगर वाकई इन कार्यक्रमों से आपके जीवन में बदलाव आया है तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा 8010781078 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, PTC फाइनेंस लिमिटेड और इको क्लब और अपने सभी एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े और उन्होंने बहुत सारी विभिन्न जानकारियां वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़ी हुई हमारे साथ शेयर की। कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली किसी सीरीज में और भी बहुत सी बातें होंगी, शायद कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जिन पर चर्चा करनी बेहद आवश्यक है। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। This is Deeksha signing off.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ। मैं ऑर्गन इंडिया के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर सागर गुप्ता, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत है। यह डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सागर बात करेंगे किडनी यानी कि गुर्दा के बारे में, गुर्दा रोग के बारे में और गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो के लिए।
3: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका।
2: इससे पहले कि हम किडनी के रोगों के बारे में चर्चा करें, आप सबसे पहले सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किडनी होता क्या है और इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में।
3: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जनरली दो किडनीज होती हैं, यानी दो गुर्दे होते हैं। ये करीबन 4 इंच लंबे अंग हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक गुर्दा स्थित है। गुर्दे के शरीर में बहुत सारे कार्य हैं। सबसे प्रमुख इनमें से है खून की सफाई, यानी ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज हैं, यानी जो गंदगी हैं, उनको साफ करके, फिल्टर करके पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देना। इसके और कई कार्य हैं शरीर में, जैसे कि खून बनाने में मदद करना। नंबर 3 पे आप कह सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हड्डियों की स्वस्थ स्थिति को बनाए रखने में भी गुर्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से शरीर से फालतू नमक पानी निकालना भी गुर्दे का ही कार्य है।
2: तो गुर्दा रोग की बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे हम कहते हैं, वो होता क्या है।
3: मैं अपने श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुर्दे के रोग प्रमुख प्रकार से दो तरह के होते हैं। एक होता है AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि गुर्दों पर नया जोर जो कि हाल ही में पड़ा है। और दूसरे प्रकार का रोग होता है CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी चिरकारी वृक्क रोग, यानी गुर्दे पर वो जोर जो स्थायी रूप से बना आ रहा है 3 महीने से ज्यादा। एक चिकित्सक के रूप में हमें यह पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी यानी गुर्दे का नया जोर कारण पकड़कर पलटा जा सकता है। CKD यानी चिरकारी वृक्क रोग शरीर की वो स्थायी क्षति है जो कम से कम 3 महीनों से मौजूद है और गुर्दों के काम करने की क्षमता कुछ हद तक घट चुकी है। उस स्थिति को हम CKD यानी चिरकारी वृक्क रोग कहते हैं।
2: तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है?
3: अगर हम पूरी दुनिया के सारे देशों को लेकर चलें, तो नंबर वन कारण यानी सबसे प्रमुख कारण यानी वो बीमारी जिससे सबसे ज्यादा गुर्दा खराब होते हैं, वो है शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह रोग। पूरी दुनिया की तरह ही भारत के आंकड़े भी इसी तरफ संकेत देते हैं कि शुगर की बीमारी ही सबसे ज्यादा गुर्दों की बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग का कारण है। दूसरे नंबर पर आता है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी का लंबे समय तक हाई रहना। सीकेडी होने के अन्य कारण होते हैं बार बार संक्रमण यानी इन्फेक्शन पड़ना पेशाब के रास्ते। अन्य कारण होते हैं दवाएं लेना जैसे कि दर्द की दवाएं। छोटे समय से खाने में इसमें इतनी समस्या नहीं आती, बट कई लोग इसको बहुत लंबे समय तक लेते रहते हैं, उससे भी गुर्दों पे काफी जोर पड़ सकता है। इसके अलावा गुर्दे के अंदरूनी बीमारियां होती हैं और कुछ अन्य बीमारियां हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बच्चे में माँ बाप के थ्रू आ सकती हैं। तो ये सब होते हैं चिरकारी वृक्क रोग यानी सीकेडी के कारण। इसमें याद रखने वाला सबसे प्रमुख नंबर वन शुगर, नंबर टू बीपी, ये हैं।
2: पर यदि कोई व्यक्ति सीकेडी से ग्रस्त है तो वो कौन से लक्षण है जिससे रोगी का पता चलता है कि उसको सीकेडी है?
3: क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग एक तरीके से मुश्किल समस्या है। दुर्भाग्य से जब तक की बीमारी काफी हद तक बढ़ नहीं जाती तब तक यूजुअली इसका कोई लक्षण नहीं होता। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मरीज को कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन उनके अंदर गुर्दे की बीमारी पनप रही होती है और वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ भी रही होती है। आम तौर पर जब ये चिरकारी वृक्क रोग अपने स्टेज 4 या अंतिम स्थिति स्टेज 5 तक पहुंच जाता है तभी अधिकतर मरीजों को लक्षण आते हैं। सीकेडी के लक्षण होते हैं बहुत थकान, ऊर्जा की कमी, ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई, आपको लगेगा आप सोए जा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काम पे। उसके अलावा जो चीजें आप देख पाएंगे उसमें है पांव और एड़ियों में सूजन, आंखों के चारों ओर सूजन विशेषकर सुबह के समय, सूखी त्वचा और त्वचा में खुजली, पेशाब की मात्रा कम होते जाना, लोगों का सांस भी फूलने लगता है और अधिकतर मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर किडनी की बीमारी चल रही है। इसको पकड़ने का एकमात्र तरीका है एक सिंपल सा KFT नाम का ब्लड टेस्ट जिससे किडनी के कार्य, उसकी फंक्शनिंग, उसकी क्षमता के बारे में पता चल सकता है, और एक पेशाब की सिंपल जांच यूरिन RM ये जरूर करवाएं।
2: हमारे साथ है डॉक्टर सागर गुप्ता जो हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज या चिरकारी वृक्क रोग के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात किया कि सीकेडी होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे पैदा होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये सीकेडी हो गया है तो अब उसका इलाज क्या है?
3: अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग हो चुका है और वो बढ़ते बढ़ते स्टेज 5 या ESRD या अगर किसी को मान लीजिए क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुका है और वो बढ़कर ESRD यानी स्टेज 5 किडनी डिजीज यानी अंतिम चरण किडनी रोग तक पहुंच गया है तो उसके इलाज को हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो वर्ड यूज करते हैं हम RRT यानी कि गुर्दे का जो काम था शरीर में खून की सफाई, हमको उस कार्य को अब बाहर से करना होगा। गुर्दे का काम था शरीर में खून की सफाई यानी जो विषाक्त पदार्थ यानी जो अशुद्धताएं हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रही उनको बाहर निकालना। जब गुर्दे इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट प्रक्रिया यानी डायलिसिस के रूप में हम खून को बाहर से साफ करेंगे। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि इलाज का दूसरा फॉर्म होता है किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
2: तो डायलिसिस के क्या कोई भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं या वो एक ही तरह की होती है, कैसे करते हैं डायलिसिस?
3: ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने डॉक्टर गीतिका जी। डायलिसिस जैसा कि मैंने कहा वो प्रक्रिया है जिसमें हम मरीज के खून को साफ करते हैं। डायलिसिस दो प्रकार की होती है, हीमोडायलिसिस यानी खून वाली डायलिसिस और दूसरे प्रकार की पेरिटोनियल डायलिसिस, वो डायलिसिस जिसको पेट के थ्रू पानी भर के किया जा सकता है।
2: क्या आप हीमोडायलिसिस के बारे में कुछ और विस्तार से बता सकते हैं?
3: हीमोडायलिसिस, जैसे कि मैंने कहा, ब्लड का डायलिसिस है। इसमें हम शरीर से खून बाहर निकालकर उसको एक डायलिसिस मशीन यानी आर्टिफिशियल किडनी, एक डायलाइजर, एक फिल्टर के जरिए हम साफ कर देते हैं और खून को दूसरी साइड से वापस शरीर के अंदर डाल देते हैं, अथवा शरीर में नसों को जोड़कर एवी फिस्टुला बना दिया जाता है, जहां पर दो सुइयां लगा के हम एक तरफ से खून को निकाल के मशीन से साफ करके दूसरी सुई से वापस पेशेंट के अंदर यानी मरीज के अंदर रिटर्न कर देते हैं। इसका नाम होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए आपको किसी प्रकार की हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी में यानी किसी अस्पताल, किसी क्लिनिक में जाना होगा। ये कम से कम हफ्ते में 2 बार, बट आइडियली हफ्ते में 3 बार किया जाता है। एक सेशन 3 से 4 घंटा लंबा होता है। डायलिसिस के साथ सिर्फ खून साफ होगा, लेकिन गुर्दों के बाकी कार्य जैसे खून बनाना, कैल्शियम फास्फोरस को संभालना

0: ना, उनके लिए भी आपको साथ साथ अन्य दवाएं लेते रहना होगा।
1: डॉक्टर साहब, अब हमने बात किया गुर्दा और गुर्दा रोग के बारे में, डायलिसिस के बारे में, पर आपने ये भी कहा था कि एक और जो मुमकिन इलाज है वो होता है गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती कब है?
0: कोई भी मरीज जिसकी किडनीज यानी गुर्दे पर जोर आ चुका है, यानी जिनको चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 हो चुका है, जिनके शरीर में गुर्दे अपने काम करने की क्षमता स्थायी रूप से खो चुके हैं, उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आजीवन डायलिसिस या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण। अधिकतर तौर पर मैं हंस के कहता हूँ, लोग पूछते हैं सर गुर्दा प्रत्यारोपण कराने का कौन सा समय सही है, तो जवाब है आज, यानी कि सारे समय सही है अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 या उससे आगे आप डायलिसिस पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी रिसर्च में ऐसा दिखाया गया है कि अगर आप गुर्दा प्रत्यारोपण डायलिसिस शुरू करने से थोड़ा पहले करवा लें तो वो मरीजों का सबसे बेहतर लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय में देखें तो उनके रिजल्ट सबसे अच्छे रहते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत उनको है जिनको CKD स्टेज 5 यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5, जिसमें आपके गुर्दों की मिलाकर क्षमता 15% से कम की रह गई है, उनको जरूरत होती है।
1: आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण अगर किसी को कराना है तो वो तुरंत ही करा लेना चाहिए, तो डायलिसिस से क्या गुर्दा प्रत्यारोपण बेहतर होता है, और अगर बेहतर होता है तो क्यों?
0: जी हाँ डॉक्टर कृतिका, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी को CKD स्टेज 5 यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 है तो उनको गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में सोचना चाहिए। गुर्दे के प्रत्यारोपण के कई लाभ हैं। नंबर 1, ये डायलिसिस की आवश्यकता को समाप्त करता है। अगर आपका शुरू नहीं हुआ है तो फ्यूचर में नहीं जरूरत लगेगी। अगर आप ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं तो आपका डायलिसिस बंद किया जा सकता है। डायलिसिस के साथ होने वाले लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आपकी रोजमर्रा आपके दिनचर्या में जो बदलाव आते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस के लिए जाना, वो सब चीजें चली जाती हैं, तो इससे जीवन की गुर्दा प्रत्यारोपण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। तीसरा फायदा अगर आप देखें तो आपके समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आता है। गुर्दे की खराबी का सफलतापूर्वक उपचार हो सकता है। आपके आहार पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग के दौरान और डायलिसिस के दौरान, वो सब नहीं रहते हैं। आप तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स जितना सेवन करना चाहें उतना ले सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी रिसर्च स्टडीज में ये दिखाया गया है कि 1-1.5 साल के बाद जितने पैसे एक बार गुर्दा प्रत्यारोपण में लग जाते हैं, 1-1.5 साल के बाद आपके पैसे की अथवा धन की भी बचत होती है। तो ना सिर्फ आप केवल एक बेहतर स्वास्थ्य, एक बेहतर जीवन की गुणवत्ता एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही साथ ये कुछ हद तक आपके धन की समय की भी बचत करेगा।
1: और इससे जुड़े जो जोखिम है अगर आप उनके बारे में भी थोड़ा श्रोताओं को बताना चाहें।
0: जैसे आपने कहा कि कोई भी मेडिकल इलाज जोखिम रहित नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर मरीज को गुर्दे का प्रत्यारोपण कराना चाहिए। बहुत सारी जांचों के बाद एकदम डिटेल्ड हम इवैल्यूएशन करने के बाद ही मरीजों को गुर्दा प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे जोखिम जुड़े हैं। अगर आप तकनीकी जटिलताएं देखें तो किसी भी बड़े ऑपरेशन की तरह एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाओं का रिएक्शन, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, ब्लीडिंग यानी खून जाना, और हार्ट पे यानी दिल पे स्ट्रेस पढ़ना, ये सब किसी भी एक बड़े ऑपरेशन के प्रकार, ये तो ऑपरेशन के समय के रिस्क हैं। साथ ही साथ गुर्दा प्रत्यारोपण कराने के बाद आपको आजीवन कुछ दवाइयां लेनी होती हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिनसे आपके शरीर के इम्यूनिटी की जो होती है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा जोखिम है कि इम्यूनिटी कम करने से शरीर में संक्रमण यानी इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो किसी भी गुर्दा प्रत्यारोपण का मरीज और नॉर्मल आदमी के कंपेयर में संक्रमण के लिए वो ज्यादा उसका शरीर कमजोर है। दूसरी चीज जो मैंने नाम लिया रिजेक्शन यानी अस्वीकरण, यानी कि जो हमारा शरीर है वो नए गुर्दे को बाहर से आते हुए को एक फॉरेन बॉडी यानी एक बाहर की चीज समझकर उसको स्वीकार ना करने की पूरी कोशिश करता है, इसको रिजेक्शन कहते हैं। पूरी दवाइयों और सावधानी के बाद भी रिजेक्शन का डर बना रहता है।
1: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सागर गुप्ता से। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से आहार विहार या ऐसा कौन सा रोजमर्रा के जीवन में हमें आचरण करना चाहिए जिससे कि गुर्दा रोग से बचा जा सके।
0: तो अगर मैं कहूँ कि गुर्दा रोग यानी चिरकारी वृक्क रोग से कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले उनके कारण समझिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, संक्रमण, पेन किलर वाली दवाइयां खाना। अगर आपको इससे बचना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी अपने स्वास्थ्य में आपको रोजमर्रा में चेंजेस लाने होंगे। आप अच्छा खाना खाइए, फल सब्जियां, फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाइए और मीठा और तला हुआ कम रखें। नंबर दो, रेगुलर वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। आप नियम बांध लीजिए कि मुझे कम से कम दिन में आधा घंटा वॉक करनी है, चलना है या फिर दौड़ना है, हफ्ते में सातों दिन नहीं तो कम से कम पांच दिन। नंबर तीन मैं कहूंगा स्ट्रेस कम करिए। उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर आप तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उसे बंद करिए। उसके बाद अगर आपको बीपी या शुगर की समस्या है तो उनको कंट्रोल में रखिए और बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई एंटीबायोटिक यानी संक्रमण के इलाज या पेन किलर दवाएं लंबे समय तक ना लेते रहें। इन सब चीजों को करके हम गुर्दे में होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी जीवन, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
1: ये सभी जानकारी हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी पता चली है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजिस्ती हाँ, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए हर हफ्ते। और यहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ से हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है, जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपनी लाइफ की प्रिंसिपल के दम पर दुनिया के सामने एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिनका नाम हमने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, और शायद हर साल 2 अक्टूबर को भी हम उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या कभी हमने उनकी जर्नी को रियली समझने की कोशिश की है? नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, और दुनिया ने उन्हें प्यार से कहा महात्मा गांधी। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गांधी जी जब पैदा हुए थे तब किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक पूरे देश के फ्रीडम मूवमेंट का एक इतना इम्पोर्टेंट फेस बन जाएगा। लेकिन उनकी जर्नी किसी शॉर्टकट की कहानी नहीं थी, इसमें कन्फ्यूजन भी था, स्ट्रगल्स भी थे, फेलियर्स भी थे, और खुद को समझने के लिए एक लंबा प्रोसेस भी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके फादर करमचंद गांधी राजकोट और कुछ अन्य प्रिंसली स्टेट में दीवान के पोजीशन पर रहे, और उनकी मदर पुतलीबाई रिलीजियस और डिसिप्लिन नेचर की वुमेन थी। गांधी जी की पर्सनैलिटी और उनकी मदर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट बने। लेकिन गांधी जी बचपन से ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट या फिर फियरलेस लीडर नहीं थे। वो काफी शाय नेचर के थे, पब्लिक में बोलने में हेजिटेशन भी होती थी कई बार। मतलब जिस इंसान ने आगे चलकर लाखों लोगों को एड्रेस किया, उनके अंदर भी कभी स्टेज फियर और हेजिटेशन हुआ करता था। और ये चीज उनकी स्टोरी को रिलेटेबल भी बनाती है, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर स्टार्टिंग से ही सारी क्वालिटीज प्रेजेंट हो। सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें और धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले। गांधी जी की लाइफ हमें स्टार्टिंग से ही एक सिंपल सा लेसन देती है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी जर्नी में क्या सीखते हैं और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी की जर्नी में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, एक ऐसे फेस जो उनकी सोच को कम्प्लीटली चेंज करने वाला था। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं बातों के साथ गाने भी। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, इसके बाद जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें। चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और हम बात कर रहे हैं आज महात्मा गांधी जी की, एक ऐसे इंसान की, उनकी जर्नी की जिन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। और पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी का जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, एक सिंपल, एक शाय और एक डिसिप्लिन लड़के का, और जो कि आगे चलकर एक पूरे मोमेंट के इम्पोर्टेंट फेज बनने वाले थे। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अब शुरू होती है। गांधी जी ने अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन जाने का डिसीजन लिया। ये हुआ 1888 में, वो लंदन गए और वहां लॉ की पढ़ाई शुरू की। सोचिए, एक यंग लड़का जो अपने घर और फैमिली एनवायरनमेंट से दूर एक बिल्कुल नए कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। आजकल के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नई जगह एक्सप्लोर करनी है, नए पढ़ाई की चीजें एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए। पर उस टाइम में ये सब चीजें बहुत बड़ी मानी जाती थी क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, लोगों की सोच वैसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं टाइम के साथ में। लेकिन लंदन में उन्होंने सिर्फ लॉ की पढ़ाई नहीं करी है बल्कि अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है, उस पर भी काम किया है। उन्होंने इंग्लिश, मैनर्स और पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोशिश की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और आइडियाज को समझा और ग्रेजुअली अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया। फिर आया टाइम 1891 जिसमें लॉ की पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद गांधी जी इंडिया वापस आए और बॉम्बे में लॉ प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ा कि कोर्ट में बोलने में उन्हें हेजिटेशन होती थी, उनका कॉन्फिडेंस अभी भी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था। एक यंग लॉयर के लिए ये ऑब्वियसली इजी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन गांधी जी की जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर उन्हें इंडिया से बाहर ले गया। फिर आया साल 1893 जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक लीगल केस के सिलसिले में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और बस यहीं से उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी जी रेकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जहां पर सबसे फेमस इंसिडेंट में उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, और क्योंकि वो इंडियन थे। उस रात गांधी जी ने रेलवे स्टेशन पर बैठे रहे और उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में सीरियसली सोचा। वो वापस इंडिया भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएंगे जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। यहीं से एक लॉयर की जर्नी धीरे धीरे एक सोशल रिफॉर्मर और लीडर की जर्नी में बदलने लगी। दोस्तों, गांधी जी की लाइफ का ये इम्पोर्टेंट मोमेंट हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन भी देता है कि कभी कभी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ही हमें अपने रियल पर्पस से मिलाता है, हमें अपना रियल पर्पस समझाता है। प्रॉब्लम से बचना इजी हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम को समझना और उसके अगेंस्ट पीसफुली स्टैंड लेना एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ मांगता है आपसे। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसी स्ट्रेंथ को डेवलप करना शुरू किया था। लेकिन एक सवाल ये था कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ेंगे कैसे, क्या वॉयलेंस उनका आंसर होगा या फिर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ चूज करेंगे। इसी सवाल का आंसर गांधी जी के सबसे पावरफुल फिलॉसफी को जन्म देने वाला था। इस पर भी बात करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं जिनकी जर्नी की, उनका नाम है महात्मा गांधी जी। जी हाँ, महात्मा गांधी की आज हम जर्नी की बात कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि साउथ अफ्रीका में कैसे गांधी जी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ट्रेन से बाहर निकाले जाने वाला इंसिडेंट उनके लिए सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट ही नहीं था, बल्कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इनजस्टिस का सामना करना है तो इसका तरीका क्या होना चाहिए। गांधी जी के पास गुस्सा करने का रीजन था, वो वॉयलेंस का रास्ता भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच को डेवलप किया, वो था सत्य और अहिंसा पर बेस्ड रेसिस्टेंस। एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली हर्ट ना करना नहीं था, बल्कि गांधी जी के लिए अहिंसा एक बॉर्डर प्रिंसिपल था। हेट्रेड और वॉयलेंस के बिना इनजस्टिस का सामना करना, और इसी के साथ आया सत्याग्रह। जी हाँ, सत्याग्रह का सिंपल मीनिंग है सही के लिए स्टैंड लेना, यानी कि गलत के सामने चुप रहना नहीं है, लेकिन अपनी फाइट को वॉयलेंस के थ्रू नहीं, सच्चाई और शांति के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू लड़ना है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियंस के राइट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, उन्होंने लोगों को यूनिट किया और पीसफुल प्रोटेस्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड को डेवलप किया। ये जर्नी इजी नहीं थी, उन्हें अरेस्ट को फेस करना पड़ा, ओपोजिशन मिला और क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू रखा। 1950 में गांधी जी इंडिया वापस आए। अब उनके पास साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था और इंडिया में उनकी पब्लिक लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। इंडिया में उनका पहला मेजर मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, और ये हुआ 1917 में। जी हाँ, बिहार के चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन और डिफिकल्ट कंडीशन का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी वहाँ गए, फार्मर से उनकी प्रॉब्लम को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, और इसी एक्सपीरियंस ने

इम्पैक्ट ये भी है कि आप प्रेशर के टाइम में अपनी वैल्यूज को कितना होल्ड कर पाते हैं। गांधी जी की फिलॉसफी ने उन्हें एक लीडर बनाया, लेकिन उनकी पर्सनल डिसिप्लिन ने उस लीडरशिप को स्ट्रेंथ दी। और अब गांधी जी की जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाला था, जहां पर उनका लीडरशिप स्टाइल और मास मूवमेंट दोनों एक नए लेवल पर पहुंचने वाले थे। उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, उनकी जर्नी की, उनकी थिंकिंग की और उन लेसन्स की जो आज भी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं हम जैसे। और पिछले सेगमेंट में

जैसे कि हमने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में जाना, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ नेचुरली आ जाता है कि गांधी जी के आइडियाज इतने लोगों तक कैसे पहुंचे और आखिर उनके अंदर ऐसी क्या लीडरशिप क्वालिटी थी कि ऑर्डिनरी लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर था कि गांधी जी सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ से लीडरशिप दिखाते थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, उन्होंने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी और अननेसेसरी कंफर्ट को अपने आइडेंटिटी नहीं बनाया। उनका सिंपल ड्रेस और सिंपल वे ऑफ लिविंग उनकी पब्लिक इमेज को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना देता है। लेकिन सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं था कि उनकी लाइफ ईजी थी। एक्चुअली उनकी सिंप्लिसिटी के पीछे स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन था। वो अपने थॉट्स और एक्शंस को रेगुलरली एग्जामिन करते थे और उनकी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी इम्पॉर्टेंट रोल था, और ये चीज एक पावरफुल लीडरशिप लेसन देती है। और अगर हम किसी टीम को लीड करना चाहते हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना इनफ नहीं होता है, बल्कि लोग तब ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब लीडर खुद भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। गांधी जी ने मोमेंट्स में ऑर्डिनरी पीपल को इन्वॉल्व किया, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन और डिफरेंट सेक्शंस के लोग फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट होने लगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे मास मूवमेंट में उनकी लीडरशिप का स्केल बहुत बड़ा हो गया था। 1930 का सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया था। उनके साथ लोग जुटते गए और मार्च में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडेंस का एक पावरफुल सिंबल बना दिया। सोचिए दोस्तों, एक सिंपल सा डेली यूज प्रोडक्ट सॉल्ट एक मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट का सिंबल बन गया। यहाँ पर हमें गांधी जी की लाइफ से एक लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि बड़ी बात को समझने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या फिर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी एक सिंपल सा आइडिया भी लोगों से कनेक्ट कर सकता है। और गांधी जी की लीडरशिप का दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कंसिस्टेंसी। जी हाँ, उन्होंने एक दिन में अपनी इमेज नहीं बनाई। ईयर्स ऑफ वर्क, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और पब्लिक एंगेजमेंट ने उनकी लीडरशिप को शेप किया। दोस्तों, सक्सेस में टैलेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी होती है। गांधी जी की जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि लीडर वो नहीं है जो सिर्फ सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो भी है जो लोगों को एक पर्पस के साथ कनेक्ट कर सके और खुद अपने प्रिंसिपल्स पर चलने की कोशिश करे। लेकिन फ्रीडम की ये जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। आगे गांधी जी को अरेस्ट, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट डिसीजंस का भी सामना करना पड़ा। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई उन लेसन्स की, जो सिर्फ हिस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी काम आ सकती है। अब तक हमने गांधी जी की जर्नी के कई इंपॉर्टेंट फेसेस को देखा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल, सत्याग्रह, इंडिया में उनके मूवमेंट्स, लीडरशिप और डिसिप्लिन। लेकिन अगर हम गांधी जी की स्टोरी को सिर्फ अचीवमेंट्स के थ्रू देखेंगे तो पिक्चर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि उनकी जर्नी में सेटबैक्स भी थे, अरेस्ट भी थे और डिसएग्रीमेंट्स भी थे और डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े थे। गांधी जी कई बार ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट किए गए और जेल भी गए, लेकिन जेल जाना उनकी पब्लिक जर्नी का एंड नहीं बना था। उनके मूवमेंट्स के सामने भी चैलेंजेस आए और हर मूवमेंट का रिजल्ट इमिडिएटली उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो कभी वॉयलेंस हुआ, और कभी गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट डिसीजन भी लिए हैं। और इन सब में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। जी हाँ, 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच वॉयलेंट क्लैश हुआ, जिसमें पुलिस पर्सनल की डेथ हुई। गांधी जी वॉयलेंस के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। इस डिसीजन पर उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई। अब दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग लाइफ लेसन भी है कि कभी कभी लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना नहीं होता है, बल्कि कभी कभी लीडर को अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉज लेना और डिफिकल्ट डिसीजन भी लेना पड़ता है। आगे चलकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक और मेजर फेस आया, वो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मास मूवमेंट को कॉल दिया और उनका फेमस मैसेज था डू और डाई। इसके तुरंत बाद गांधी जी और कई अदर लीडर्स को ब्रिटिश अथॉरिटी ने अरेस्ट कर लिया। सोचिए, एक मूवमेंट का कॉल देने के बाद लीडर खुद जेल में है, लेकिन मूवमेंट की एनर्जी सिर्फ एक इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बहुत सारे ऑर्डिनरी इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। यहाँ पर गांधी जी की लॉन्ग टर्म लीडरशिप का इम्पैक्ट समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था, उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल को भी मूवमेंट का पार्ट बनने की स्पेस दी थी। दोस्तों हमारी लाइफ में भी सेटबैक्स आते हैं, कभी कभी एग्जाम के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, तो कभी करियर में अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, कभी किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिल जाता है। ऐसे मूवमेंट में गांधी जी की जर्नी एक सिंपल सा थॉट देती है, हमें एक मैसेज देती है कि एक सेटबैक को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी मत बनने दो। फेलियर या डिफिकल्ट फेस जर्नी का एक चैप्टर हो सकता है, पूरी स्टोरी नहीं। गांधी जी की लाइफ में भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल्स ने उनकी जर्नी को आगे बढ़ाया, और अब फ्रीडम स्ट्रगल उस फाइनल फेस की तरफ बढ़ने लगा जहां पर इंडिया की इंडिपेंडेंस का ड्रीम रियलिटी के करीब आ रहा था। बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जर्नी के बारे में। और अब हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी की लाइफ की उस फेस में जहाँ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल अपने फाइनल स्टेज पर आ गई थी। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, सत्याग्रह को एक मेथड के रूप में यूज किया और मास मूवमेंट लीड किया, और कई बार अरेस्ट और क्रिटिसिज्म का सामना भी किया। अब सवाल था कि जिस फ्रीडम के लिए इतने सालों से स्ट्रगल चल रहा था वो दिन कब आएगा। और फिर आया वो दिन 15th of August 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंट का ये मोमेंट कम्प्लीटली सेलिब्रेटरी नहीं था। इंडिया के इंडिपेंडेंट के साथ ही पार्टीशन भी हुआ और देश के कई पार्ट में कम्युनल वॉयलेंस और डिस्प्लेसमेंट की ट्राइबल सिचुएशन भी क्रिएट हुई। जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहे थे तब गांधी जी उस वक्त कलकत्ता में, यानी कि प्रेजेंट डे पे कोलकाता में, कम्युनल हार्मोनी के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। उनका फोकस पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से ज्यादा उन लोगों पर था जो वॉयलेंस से अफेक्टेड थे। गांधी जी का मानना था कि फ्रीडम का रियल मीनिंग तब होगा जब ऑर्डिनरी पीपल अपने आप को सेफ और रिस्पेक्टेड फील कर सकेंगे, चाहे उनका रिलीजन या फिर कम्युनिटी कुछ भी हो। 1947 और 1948 के पीरियड में गांधी जी ने कम्युनल पीस के लिए बंगाल और दिल्ली में फास्ट भी किए और लोगों के बीच शांति के लिए अपील भी की। लेकिन उनकी लाइफ का फाइनल चैप्टर भी बहुत जल्दी आ गया। जी हाँ, फिर दिन आया 30th January 1948, जिसमें दिल्ली में गांधी जी की असेंसिनेशन कर दी गई। वो बिरला हाउस में प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे जब नथुराम गोडसे ने उन्हें शूट कर दिया। गांधी जी की डेथ के साथ एक इंडिविजुअल की लाइफ खत्म हुई, लेकिन उनके आइडियाज और उनकी लेगेसी दुनिया भर में डिसीजन का सब्जेक्ट बन गई। आज गांधी जी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा और डिस्कस किया जाता है। उनके पॉलिटिकल डिसीजन, मेथड्स और आइडियाज पर डिबेट भी होती है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ भी उनकी लाइफ ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट और 20th सेंचुरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला। और दोस्तों, यहीं से हम अपने सक्सेस मंत्र की तरफ आ जाते हैं, जहां पर गांधी जी की जर्नी हमें ये समझाती है कि सक्सेस को सिर्फ एक डेस्टिनेशन के रूप में देखना जरूरी नहीं है। एक पर्सन की जर्नी में लर्निंग, डिसिप्लिन, वैल्यूज, फेलियर्स, डिफिकल्ट डिसीजंस और सर्विस, सब कुछ सक्सेस के डेफिनेशन का पार्ट हो सकता है। गांधी जी एक ऑर्डिनरी यंग मैन के रूप में स्टार्ट हुए थे, उनके अंदर भी हेजिटेशन थी और फेलियर भी मिले हैं उन्हें। उन्होंने भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और अपनी थिंकिंग को कंटिन्यूसली इवॉल्व किया है। और शायद इसीलिए उनकी स्टोरी आज भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने रखती है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल होने के साथ अपनी वैल्यूज को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। फाइनल सेगमेंट पे अब हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब वक्त है गांधी जी की पूरी जर्नी से कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल लेसन लेने का। जी हां, अब हम अपने आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, तो इनकी लाइफ से जो हमें लेसन मिले हैं उसे हम एक बार जान लेते हैं। गांधी जी की लाइफ हमें सबसे पहला मंत्रा जो देती है, नो योर सेल्फ। वो शुरुआत से कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी हेजिटेशन को एक्सेप्ट किया और ग्रेजुअली खुद पर काम करना शुरू किया। इसलिए अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है बल्कि ग्रोथ का पहला स्टेप है। और दूसरा मंत्र है, स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा सिर्फ वर्ड्स ही नहीं थे बल्कि उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो इन वैल्यूज को फॉलो करने की कोशिश करते थे। तीसरा मंत्र है, डिसिप्लिन। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन रूटीन बताता है कि बड़े गोल सिर्फ ड्रीम्स से अचीव नहीं होते हैं बल्कि डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। चौथा मंत्र है, लर्न फ्रॉम डिफिकल्टीज। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का डिफिकल्ट मोमेंट था, लेकिन इसी एक्सपीरियंस ने उनकी थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। हर प्रॉब्लम हमें कुछ नया सिखाती है। पांचवा मंत्र है, नेवर स्टॉप ट्राइंग। गांधी जी की जर्नी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। इयर्स ऑफ स्ट्रगल, मूवमेंट्स, क्रिटिसिज्म और अरेस्ट के बाद उनका इम्पैक्ट बिल्ड हुआ, इसलिए स्लो प्रोग्रेस को फेलियर मत समझिएगा। और छठा मंत्र है, लीड बाय एग्जांपल। गांधी जी सिर्फ दूसरों को प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए नहीं कहते थे बल्कि खुद भी उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट, सक्सेस बियॉन्ड योर सेल्फ। गांधी जी की लाइफ हमें यह याद दिलाती है कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट का नाम नहीं है बल्कि अपने एफर्ट से सोसाइटी और दूसरों के लिए मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना भी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो गांधी जी की जर्नी से आज ये फाइनल थॉट जो हमें मिला है कि अपनी वैल्यूज को साथ लेकर चलना, डिफिकल्टीज से सीखना और कंसिस्टेंसी के साथ अपने पर्पस की तरफ बढ़ते रहना, यही एक मीनिंगफुल सक्सेस की फाउंडेशन हो

0: फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
1: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
0: हाँ गुरुदेव।

मेरा बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो, हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र

थे महाराज पठाने, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे। टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमचे पड़े हैं।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज है शनिवार का दिन। हर शनिवार सुबह 11 से 1 आपको लेकर के जाती हूँ कहीं दूर सफर पर और हम बहुत सारी बातें करते हैं उस जगह के बारे में, बताती हूँ आपको उसके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, क्या कुछ खास है उस जगह घूमने लायक उस पर हम बातें करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं और उन ये हिडन जेम्स की हम बातें करते हैं ना जो बहुत ही कम लोग जिसके बारे में जानते हैं। आज भी एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको लेकर के मैं आ गई हूँ और आज जिस जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश में ये जगह है और इसे कहा जाता है द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए, ये कौन सी जगह है ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आती हूँ जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक मैं ये प्रोग्राम लेकर के आती हूँ जिसमें हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और आज का हमारा सफर हमें लेकर के जा रहा है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन, ठंडे और एडवेंचरस कोने में, जिसे द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, और आज हम चल रहे हैं बीर बिलिंग। इमेजिन कीजिए, आप 8000 फुट की ऊंचाई पर आप जो है वो किसी एक धुआंधार एक पहाड़ पर खड़े, और ये इसलिए क्योंकि बहुत ऊंचाई की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर बादलों के ऊपर हम आ जाते हैं, एक एज पर आप खड़े हैं, हवा में एकदम ताजा ठंडक है, और आपके सामने आकाश में सैकड़ों कलरफुल पैराग्लाइडर्स तितलियों की तरह तैर रहे हैं। बीर बिलिंग सिर्फ एक एड्रेनलिन रश का नाम नहीं है, ये एक देखिए ऐसी जगह है जहां एक तरफ हवाओं में उड़ने का थ्रिल है और दूसरी तरफ तिब्बतन मॉनेस्ट्रीज की शांति और टी गार्डन्स की महक है। आज के इस 2 घंटे के प्रोग्राम में ना, ये जो मैं लेकर के आती हूँ इस जर्नी में ना, मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। मैं आपको बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट पर ले चलूंगी, बीर के क्यूट कैफेज की हम बात करेंगे, ऑथेंटिक तिब्बतन मोमोज की मैं बात करूंगी, और यहाँ के मैजिकल सनसेट्स का नज़ारा भी आपको बताऊंगी। तो बस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का सफर एकदम हाई फ्लाइंग और कोजी होने वाला है। चलिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। डर के उस पार जब एक कदम आगे हम बढ़ाते हैं तभी जिंदगी को आजादी का असली पंख हम दे पाते हैं। और देखिए आज जिस जगह हम आए हैं ना ये बहुत खूबसूरत जगह है। और देखिए सबसे पहले समझते हैं इस जगह का ज्योग्राफी। और देखिए ज्योग्राफी यहाँ की कहती है कि बिलिंग जो है यहाँ का जो टेक ऑफ पॉइंट जो लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ के टॉप पर स्थित है और बीर है लैंडिंग ग्राउंड जो लगभग 4500 फुट की ऊंचाई पर जो है ये कुछ इस तरह है, नीचे है, घाटी में बसा हुआ है। बिलिंग दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट माना जाता है और यहाँ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी हो चुका है। जब आप बिलिंग के ग्रीन मेडोज पर अपने पायलट के साथ हार्नेस बांध कर खड़े होते हैं तो दिल थोड़ा जोर जोर से ना धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही पायलट ये कहते हैं ना रन रन रन और 3 कदम दौड़ते हैं आपके पैर हवा में चले जाते हैं। ओफ वो जो मोमेंट है ना वो बहुत कमाल का है। उस मोमेंट पर डर एक सेकंड में गायब हो जाता है और आप जो वहाँ की बर्फीली चोटियाँ हैं और नीचे घने देवदार के जो जंगल हैं उसके ऊपर परिंदे की तरह उड़ रहे होते हैं। वो 20 से 30 मिनट हवा में रहना एक ऐसा जादुई अनुभव है जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज हम आए हैं बीर, और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ढलता हुआ सूरज जब पहाड़ों को नारंगी रंग में रंग दे तो घड़ी की सुइयां भी ठहर जाती हैं। हवा में घूमने के बाद जब आपका पैराग्लाइडर भाई स्मूथ तरीके से नीचे बीर लैंडिंग ग्राउंड पर लैंड करता है तो वहां की वाइब एकदम फेस्टिवल जैसी लगती है। शाम के वक्त ये लैंडिंग साइट पूरे बीर का सबसे बड़ा सोशल हब बन जाता है। यहाँ ट्रैवलर्स घास पर आराम से बैठते हैं, लोकल बच्चे खेलते हैं और हवा में एक के बाद एक पैराग्लाइडर्स जो हैं यहाँ पर लैंड करते रहते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब सूरज जो है वो धौलाधर के पीछे जो है वो ढलता है, यानी कि जो चोटी है उसके पीछे ढलता है। आसमान लाल गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है और ग्लाइडर के जो देखिए यहाँ पर जो आकाश पर किसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कैनवस जो है वो पेंटिंग से कुछ ऐसा बनाया हो, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर हम पेंटिंग्स में देखते हैं ना। वहाँ बैठकर आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ में गर्म गर्म चाय है और साथ ही सनसेट हो रहा है। पैराग्लाइडर्स जो है वो हवा में है, बिल्कुल आसमान में है और रंग जो है आसमान का हो रखा है गुलाबी। देखिए ये जो है ना आपके माइंड को और पूरी बॉडी को ना एकदम रिचार्ज कर देता है, आपको सुकून से ना भर देता है, इसलिए बीर जाना ना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक छोटे सी देखिए एक मैं लूँगी एक ब्रेक का टाइम जो है छोटा सा हो गया है, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड,

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज आपको लेकर के आई हूँ बीप. मॉनेस्ट्री के रंग बिरंगे झंडे जब हवा में लहरते हैं तो हर आहट एक प्रार्थना बन जाती है. बीर सिर्फ एडवेंचर का अड्डा नहीं है, ये तिब्बतन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है. बीर तिब्बतन कॉलोनी एक बीच देखिए स्थित है, बहुत ज्यादा खूबसूरत. इसके बीच में स्थित है एक चोकलिंग मॉनेस्ट्री और चोकलिंग मॉनेस्ट्री जो है ये बहुत खूबसूरत है और इस मॉनेस्ट्री का ग्रैंड स्तूपा और एंट्रेंस गेट इतना कलरफुल और बारीक कार्विंग से बना है कि देखकर आंखें आपकी खुश हो जाती हैं. मंदिर के आंगन में खड़े होके जब आप हजारों प्रेयर फ्लैग्स आप देखते हैं हवाओं में फड़फड़ाते हुए देखेंगे जब आप, और अंदर से मॉन्क्स के डीप चैंटिंग और बेल्स की आवाज आती है तो मन का सारा शोर एक झटके में शांत हो जाता है. वहां के ध्यान कक्ष में बैठकर कुछ देर मेडिटेशन करना दिल को एक अनोखा ठहराव देता है. तो आपका क्या कहना है, आप बीर जाएंगे या नहीं, जरूर मुझे बताइएगा. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर आपको बताना है. तब तक लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। आज आपको लेकर के आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह। ये जगह और कोई नहीं बल्कि है बीड़। जी हाँ, बीड़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर भट्टू गांव के, जो यहाँ पर घने पाइन और ओक के जंगलों के बीच छुपा हुआ है, एक विशाल स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स पलपोंग शराब लिंग मोनेस्ट्री यहाँ पर है। और ये जो है वो ताए सितु रिनपोचे के सीट है। जंगल के शांत रास्ते से होकर जब आप इस मॉनेस्ट्री के आंगन में पहुंचते हैं तो सामने खड़ा विशाल स्तूप और गोल्डन आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके मेन प्रेयर हॉल के अंदर भगवान बुद्धा की एक बहुत ही विशाल और शांत मूर्ति विराजमान है। यहाँ हवा में देवदार की ठंडी खुशबू और बर्ड कॉल्स के अलावा कोई दूसरी आवाज आपको नहीं आती है। मॉन्स्ट्री के मॉन्क्स जो हैं वो देखिए ग्रैमी अवार्ड भी उनको जो है वो मिल चुका है इस आवाज़ को, चैंटिंग को, और उनके ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट चैंटिंग के लिए उनको एक अवार्ड जो है ये मिला है, ग्रैमी अवार्ड। अगर आपको भीड़ से दूर बिल्कुल प्योर साइलेंस चाहिए तो आप श्रैब जो लिंक है वहाँ पर आप जा सकते हैं, या आपको एक जन्नत की तरह महसूस होगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लव।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए पेट तो हम बहुत घूम लिए, चलिए अब कुछ खाने पीने की भी बात हो जाए। चलिए थोड़ी पेट पूजा जब बात आती है ना तो साक्षी आपको अलग अलग जगहों के बारे में बताती है। कोजी कैफे वाइब्स की हम बात करते हैं। बीर का कैफे कल्चर पूरे हिमाचल में सबसे यूनिक और रिलैक्स्ड माना जाता है। यहाँ छोटे छोटे एस्थेटिकली प्लीजिंग ओपन एयर कैफेज हैं जहाँ इंटरनेट, किताबें और अच्छा खाना मिलता है। यहाँ आकर आपको स्ट्रीट पर ट्राई करना चाहिए ऑथेंटिक तिब्बतन लाफिंग, जो कोल्ड स्पाइसी पोटैटो स्टार्च नूडल्स जो है ये होते हैं, जिसे चिली ऑयल और सोया सॉस में ड्रिप करके दिया जाता है। और इसके अलावा गर्मा गर्म सूप, जो सूपी थुकपा है, या स्टीम यहाँ के जो फ्लफी ब्रेड्स हैं यानी कि जो यहाँ की टिंगमो है वो दी जाती है, और पैन फ्राइड मोमोज खाना मैंडेटरी है। ऑर्गेनिक फूड के शौकीन जो यहाँ पर लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ होममेड ऑर्गेनिक कॉम्बुचा और वुड फ्राइड पिज्ज़ा और साथ ही फ्रेश माउंटेन एप्पल पाइज भी मिलते हैं। सिल्वर लाइनिंग कैफ़े या जून 16 कैफ़े पर आप जा सकते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो ज़रूर जाइएगा और यहाँ आप कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज मैं आई हूँ बिर्रा को लेके और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है. हर शनिवार हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं 11 से 1 बजे तक दूर लेकर के जाती हूँ. आज लेकर के आई हूँ एडवेंचरस जगह बीर. जी हाँ, बीर की हम बातें कर रहे हैं. बीर सिर्फ देखिए ऊंचे पहाड़ों का शहर नहीं है, इसके लोअर जो इलाके हैं यहाँ पर फैले हुए हैं सुनहरे और हरे भरे टी गार्डन्स, चाय के बगीचे. ब्रिटिशर्स के दौर के कांगड़ा वैली अपनी खास ग्रीन और ब्लैक टी के लिए मशहूर रही है. बीर के चाय जो यहाँ पर चाय गार्डन से यानी कि जो टी गार्डन से इसके बीच बने पतले रास्तों पर वॉक करना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है. यहाँ की लोकल महिलाएं ट्रेडिशनल बास्केट पीठ पर टांग कर दो पत्ती और एक कली तोड़ती हुई दिखती है. पास ही स्थित बीर टी फैक्ट्री, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे ताजी पत्तियां प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट क्वालिटी चाय जो है ये बनती है. यहाँ एक ताजी कांगड़ा टी पैक आप देखिए, आप जरूर आप पैक करवाइएगा अपने घर के लिए, लेकर जरूर आइएगा क्योंकि वो बेहतरीन स्वाद प्योर टी आप घर पे लेकर के आ रहे हैं. इसमें कोई मिलावट नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम द गार्डन्स टू योर किचन ये आप वहाँ से लेकर के आएंगे और वो स्वाद ना वो बहुत अलग है. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बहुत सारी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह। ये जगह है बीर। बीर से लगभग 12 किलोमीटर दूर देखिए बिलवा नदी के किनारे स्थित है हिमाचल के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक बैजनाथ धाम यानी कि बैजनाथ टेंपल। 1204 AD में बना ये मंदिर भगवान शिव द लॉर्ड ऑफ देखिए फिजिशियंस वैद्यनाथ यानी कि वैद्यनाथ को डेडिकेटेड है। और ये जो है वो देखिए एक नगारा स्टाइल स्टोन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मास्टरपीस है। मंदिर के पत्थरों पर इतनी बारीक मूर्तियां उकेरी गई हैं कि आप उनकी कार्विंग्स देखकर दंग रह जाएंगे। माना जाता है कि रावण ने इसी जगह पर भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और अपना जो सर है वो अर्पित किया था। मंदिर के आंगन में खड़े होकर जब आप सामने बहती हुई नदी और पीछे पहाड़ों को देखते हैं तो मन एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति से भर जाता है। तो आप बैजनाथ धाम जाना मत भूलिएगा। यहाँ दर्शन करने से कहते हैं कि देखिए ऐसा लोगों का कहना है, लोग मानते हैं कि जो आप चाहे वो आपको आपकी जो मुराद है वो पूरी होती है। तो चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह और हम अपने शहर से तो काफ़ी दूर आ गए. हम आए आज भी देखिए, छोटी सी पहाड़ी रेल जब सीटी बजाती है तो बचपन के बीते हुए हसीन दिन याद आ जाते हैं. बेर के बिल्कुल पास पड़ता है अहजू रेलवे स्टेशन, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन नेटवर्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. ये नैरो जो गोज ट्रेन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. पठानकोट से जोगिंदर नगर के बीच धीरे धीरे पहाड़ों, खेतों और फूलों के बीच से सीटी बजाती हुई ये गुजरती है. और इस छोटे से विंटेज रेल स्टेशन पर खड़े होकर जब आप उस लाल पीली टॉय ट्रेन को आते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने जमाने के पोस्टकार्ड का दृश्य जिंदा हो गया हो. इस ट्रेन में बैठकर बेर से बैजनाथ तक का छोटा सा सफर करना पहाड़ी सादगी और नॉस्टैल्जिया का सबसे सस्ता और खूबसूरत तरीका है. चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज एक बड़ी खूबसूरत से शहर आपको लेकर के आई हूँ और ये शहर है, ये जगह है बीड. जी हाँ, द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है. ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और बड़ी प्यारी है. तो चलिए, अगर आप कभी, आपको मन है, आप बहुत मतलब एडवेंचरस हैं, आपको मन है कुछ एक्टिविटीज़ करने का, तो यहाँ पर आके पैराग्लाइडिंग ज़रूर कीजिए. अगर आप बहुत ही शांत जगह ढूंढ रहे हैं तब भी बीड़ आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ऑन पीक है. तिब्बतन काफ़ी सारी मॉन्स्ट्रीज हैं यहाँ पर और यहाँ का खाना काफ़ी सादगी भरा है. तो चलिए, अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त. लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि भाई मैं ना आपको बहुत ही खूबसूरत गाने तो सुनाती हूँ और रेडियो मानव रचना आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर के आता है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देता है. तो अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त. होगी कल मुलाकात आपसे और होंगी ढेर सारी बातें. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel live. Bye-bye. Take care.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक, जी हां। और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं, और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है, या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय उस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा, आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए, उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें. यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ही समझ लीजिए, आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूँ बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूँ. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो, खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है, और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि ये अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए. और हाँ, मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से, और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है. क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना. और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना, कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूं आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो ख़िलाफ़ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हों बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इन्जॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और इस हसीन से सफर को लेके आ गई हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, मैं हूँ शो की होस्ट और आपकी प्यारी प्यारी दोस्त। और आपको पता है कि मैं इस शो में सिर्फ गाने ही नहीं सुनाती, साथ में उन गानों के पीछे छुपी हुई प्रतिभा, उस टैलेंट को ज़रूर आपके सामने उजागर करने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो टैलेंट फिर राइटर का क्यों ना हो, या फिर उसको कंपोज करने वाले का, या फिर गाने को गाने वाले का, या फिर वो गाना किस पर फिल्माया गया है, उस अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आपसे मैं बातें ज़रूर करती हूँ। दोस्तों देखा जाए तो जब एक फिल्म या गाना हम पर्दे पर देखते हैं तो सबसे पहले जो गाना जो हिट होता है ना, जो गाना ऑडियंस के दिल में जो अपनी जगह बनाता है, वो तो एक्टर या एक्ट्रेस के थ्रू ही बनाता है, क्योंकि हम पर्दे पर उन्हीं को गाते हुए देखते हैं। प्लेबैक सिंगिंग किसने करी, म्यूजिक डायरेक्शन किसने करी, ये सब बातें तो बहुत बाद में आती हैं। और आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो एक ऐसी हस्ती हैं जो कि बहुत मशहूर एक्टर है। एक्टिंग का तो उनका जवाब नहीं है,

उनका परिवार भी एक्टिंग में ही रहा, लेकिन साथ में जो गाने उन पर फिल्माए गए वो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से उन्होंने निभाए कि वो गाने आज भी हमारे अंदर घर कर गए हैं। जैसे कि झूठ बोले कौवा काटे, अब देखिए कितना पुराना गाना है लेकिन हमें क्यों याद है, क्योंकि ये इन पर फिल्माया गया था। सागर के खूबसूरत से गाने, एक एक गाना अपने में नायाब मोती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी के बारे में। एक ऐसे अभिनेता जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक, उनकी पर्सनालिटी, उनका टैलेंट्स के तो मैं क्या ही बात करूं, और उनका पूरा परिवार जो है, उनका खानदान पूरा ही फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित है। दोस्तों, ऋषि कपूर जी आज हमारे बीच में भले ही नहीं है लेकिन उनका करा हुआ काम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऋषि कपूर जी के बारे में आज आपसे मैं करूंगी ढेर सारी बातें। फिलहाल ले रही छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं उन पर फिल्माए हुए कुछ प्यारे प्यारे गाने, उसके बाद मैं तुरंत आऊंगी और आपको सुनाऊंगी ऋषि कपूर जी की जिंदगी के कुछ खास लम्हे, उनके बारे में दूंगी आपको कुछ खास जानकारी। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं जल्दी से वापस आती हूँ। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, कैफे क्लासिक्स है इस प्रोग्राम का नाम। और आज मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो हैं एक बहुत ही फेमस एक्टर। हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनका काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋषि कपूर साहब की। ऋषि कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, साथ ही वो निर्माता और निर्देशक भी रहे। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने काम किया, ये बात हम सभी जानते हैं। मेरा नाम जोकर में इन्होंने उस बच्चे का रोल किया जिनकी टीचर सिमी ग्रेवाल जी थी। तो हम में से काफ़ी लोगों ने वो मूवी देखी है और बहुत ही फेमस रहे। उसके बाद ये आए बॉबी फिल्म में, जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, और तब भी इनकी उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत ही इनका खूबसूरत सा जीवन। और इनके पिताजी का नाम राज कपूर, ये बात हम सब जानते हैं, और इनके ग्रैंडफादर थे पृथ्वीराज कपूर, जो कि एक खुद आइकन है। इनकी पढ़ाई हुई कैंपियन स्कूल से और मुंबई और मेयो कॉलेज में ये पढ़े। उसके बाद में मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, अपने भाइयों के साथ ही इन्होंने स्कूल की एजुकेशन ली। इनके भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, और इनके मामा थे प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ। और हम सभी जानते हैं कि राजेंद्रनाथ साहब कितने कमाल के कॉमेडियन थे। और इनके जो अंकल्स चाचा थे वो शशि कपूर और शमी कपूर, वो दोनों भी आउटस्टैंडिंग फिल्म एक्टर्स थे। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड के से ये थे। बहुत ज़्यादा जैसे इनको स्ट्रगल मैं कहूँगी इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये बॉलीवुड में थे। लेकिन ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि फादर बहुत अच्छे एक्टर रहे लेकिन बेटा नहीं कर पाया। तो सीख तो उससे यही मिलती है कि इंसान को अपने टैलेंट के बल पर ही खड़ा होना पड़ता है और तभी वो आगे चलता है। आप अपना यश और अपने, जिसे कहते हैं कि हम अपने टैक्स लगाकर किसी तरह किसी को भी एक मूवी में काम तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर वो फिल्म चले ना, अगर उनकी एक्टिंग, उस एक्टर की एक्टिंग लोगों को पसंद ना आए, तो फिर आप उसको आगे काम कैसे दिलवाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो जमे रहने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये टैलेंट ऋषि कपूर जी में भर भर कर था। और थोड़ा सा इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और बात करूँगी कि 22 जनवरी 1980 में नीतू सिंह जी के साथ इनकी शादी हुई। नीतू सिंह जी उस टाइम पर बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन्होंने ऋषि कपूर जी के साथ भी बहुत सारी फिल्म्स करी, और उनका जो करियर था एज एन एक्ट्रेस वो बिल्कुल पीक पर था जब उन्होंने ऋषि कपूर जी से शादी कर ली। और विवाह के बाद वो ज़्यादा काम नहीं कर पाई, वो फैमिली में लग गई, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा किया और ज़्यादा उन्होंने एक्टिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ये है इनकी कुछ निजी ज़िंदगी की बातें, और बात करूँगी ढेर सारी इनकी फिल्मों के बारे में। लेकिन यहाँ पर ले रही हूँ छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक, सुनाते हैं इन पर फिल्माए गए बहुत प्यारे प्यारे गाने। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर मैं वापस दौड़ के आऊँगी, आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स, और हम बात कर रहे हैं आज अपने इस शो में मशहूर फिल्म एक्टर ऋषि कपूर जी के बारे में, जो कि राज कपूर साहब के पुत्र और पृथ्वीराज कपूर जी के ग्रैंडसन पोते थे। तो ऋषि कपूर जी हम सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, खूब सारी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स दिए, और उन्होंने अपना जो डेब्यू करा वो किया मेरा नाम जोकर, जो मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जिसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी मिला। उसके बाद में एज एन अडल्ट जिस मूवी से इनका डेब्यू हुआ, दैट वो मूवी थी बॉबी, रोमांटिक मूवी थी जिनमें इनके ऑपोजिट थी डिम्पल कपाड़िया जी, और दोनों ही बहुत छोटी उम्र के थे, दोनों ने ही काम बहुत अच्छा किया, झूठ बोले कौवा काटे और बहुत सारे उसके अन्य गाने सारे ही बहुत फेमस हुए। 1973 और 2000 ये जो 28-30 साल थे ये ऋषि कपूर जी के लिए बहुत अच्छे थे। ऑलमोस्ट 92 फिल्म्स इन्होंने करी, और टॉप का जो स्लॉट था वो कंसिस्टेंटली ऋषि कपूर जी ने अपने हाथ में रखा। मूवीज आई रफू चक्कर, कभी कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम सब जानते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी, हम किसी से कम नहीं, सरगम, नसीब, कातिलों के कातिल, प्रेम रोग, कुली, नगीना चांदनी, हिना दीवाना, बोल राधा बोल और दामिनी। दामिनी मूवी का तो क्या कहना, उसका तो एक कहानी बहुत ही सुंदर थी जिसमें एक वाइफ जो है वो अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ गवाही देती है क्योंकि वो लेडी झूठ नहीं बोल सकती, और फिर किस तरह ऋषि कपूर जी ने एज अ हस्बैंड उसका साथ दिया अपनी वाइफ का उस सच के लिए जिसके लिए उनकी वाइफ लड़ रही थी। बहुत कभी कभी ऐसी मूवीज आती हैं जो कि एक बहुत अच्छा प्लॉट लिए हुए होती हैं। साथ ही इनकी परफॉर्मेंसेस खेल खेल में, कर्ज, ये वादा रहा, सागर, तवायफ, नसीब अपना अपना, हथियार और साजन के घर, इन मूवीज़ में भी इनका काम बहुत ज़्यादा सराहा गया। ऋषि कपूर जी ने काफ़ी लास्ट तक भी बहुत काम करने की कोशिश करी, कुछ मूवीज़ तो इनके जाने से थोड़ा पहले ही आई जिसमें इन्होंने बड़े अलग अलग से रोल करे और लोगों ने उनको पसंद भी किया। तो दोस्तों यहाँ पे ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि मेरे पास तो इतना इन्फॉर्मेशन का खजाना है, मैं तो बोलती जाऊँगी लेकिन मुझे

आप सभी वेट कर रहे हैं ऋषि कपूर जी के गानों का। तो लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आई विल बी राइट बैक। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा शो समर्पित है मशहूर फिल्म एक्टर ऋषि कपूर जी को। हम सभी जानते हैं वो एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे। 30-35 साल तक उन्होंने बॉलीवुड में राज किया और अपने जाने से कुछ समय पहले तक भी वो एक्टिंग कर रहे थे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी इनकी वाइफ के बारे में, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज करी नीतू सिंह जी के साथ, जो कि खुद भी एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छा काम करी थी। नीतू जी को ये मिले सबसे पहले जहरीला इंसान में, जो कि रिलीज हुई 1974 में। उनके साथ काम किया और स्क्रीन शेयर करा। उसके बाद कभी कभी मेरे साथ आए, दूसरा आदमी में साथ आए और उसके बाद कई मूवीज़ में इन्होंने साथ साथ काम किया। एक मूवी और है जिसके लिए मैं आपसे बात ज़रूर करूंगी, वो मूवी थी प्रेम रोग। प्रेम रोग दोस्तों एक ऐसी मूवी है जिसमें एक विडो की ज़िंदगी दिखाई गई है कि पहले किस तरह से एक लड़की अगर विडो हो जाए बहुत ही छोटी सी उम्र में, तो वो कितने दुखों का सामना करती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें दिखाई गई कि कैसे उस लड़की को बाल अपने हटाने के लिए मजबूर किया जाता है, किस तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं उनकी, यहाँ तक कि उनको फुटवेयर, चप्पल तक भी उनकी हटवा दी जाती है। तो ये जो थे इस फिल्म में बहुत सी चीज़ों को उजागर किया गया और इस ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि फिल्में एक ऐसा रोल प्ले करती हमारे सोसाइटी में कि वो लोगों का, अगर आप वैसे समझाएंगे ना एक मतलब एक भाषण के रूप में, तो किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जब हम कोई चीज़ फिल्म के माध्यम से समझाते हैं तो वो लोगों को एकदम समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रेम रोग ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, जो कि विडो होने पर उनका प्लॉट था इस मूवी का और किस तरह से ऋषि कपूर जी ने फिर एक विडो का हाथ थामा। तो बहुत ही एक खूबसूरत सी फिल्म थी और अपने काम करने के लास्ट डिकेड में एक बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक म्यूजिकल इन्होंने करी 1989 में, वो मूवी थी चांदनी। जी हाँ, आपको याद है वो गाना, चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। जी हाँ, गाया मैंने इसलिए है क्योंकि वो टाइम जो था मेरे चाइल्डहुड का था और हम ये गाना बहुत गाया करते थे। इस पे ऋषि कपूर जी ने बहुत ही प्यारा काम किया। यश चोपड़ा जी की डायरेक्टेड मूवी थी और श्रीदेवी जी के साथ इन्होंने काम किया। श्रीदेवी जी हम सबको पता है कि वो खुद ही इतनी ज़्यादा वर्सटाइल एक्ट्रेस थी कि जितने शब्द मैं उनके लिए कहूँ उतने ही कम हैं। इस फिल्म के लिए इनको नॉमिनेशन में रखा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर के लिए। 2000 के डिकेड में ऋषि कपूर जी ने बहुत एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया सपोर्टिंग रोल्स में। वो थे 2004 में हम तुम, 2006 में फना, 2007 में नमस्ते लंदन, 2009 में लव आजकल और 2007 में एक ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, इसमें भी इन्होंने काम किया। देखिए, इंसान जो है एक बार जब काम करना छोड़ देता है फिर ये भी तो थॉट उसके अंदर आ सकता है ना कि क्या जरूरत है अब काम करने की। भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसे की कमी नहीं है, तो हमें काम क्यों करना है, अपना आराम से ज़िंदगी जियो। लेकिन यही चीज़ इनके ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलती है कि काम करना मत रोको जब तक आपका बॉडी अलाउ करे। तो हम सबको ही काम करना चाहिए और अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, लाइफ का ग्राफ जाता आता रहता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए और काम करना चाहिए। इसके बाद भी 2010 में इन्होंने विलेन का रोल किया और मूवी थी अग्निपथ, 2013 में औरंगजेब और 2014 में मूवी आई कांची। सभी मूवीज़ में इन्होंने वो जो रोल जिनको दिया गया वो बखूबी निभाया। एक मूवी और आई 2012 में जो कि मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी थी, वो थी हाउसफुल 2। उसमें भी इन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया और उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी मिला। इसके बाद में एक इनका खुद का काम आया, वो था फैमिली ड्रामा कपूर एंड सन्स। ये मूवी रिलीज़ हुई 2016 में। इसके बाद एक कॉमेडी मूवी आई बेशरम 2013 में, मतलब इससे पहले ही आई वो, जिसमें इनके वाइफ और बेटा दोनों ही साथ थे। तो मेहनत करनी चाहिए ये तो इनकी ज़िंदगी से खूब समझ में आता है और लास्ट तक मेहनत करनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए और रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है।
दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं कहानी आपके सामने उठाऊं, उस लाइफ से, उस किरदार की जिंदगी से कुछ ना कुछ मैं भी सीखूं और वो संदेश मैं आपको भी देख के ज़रूर जाऊं। तो ऋषि कपूर जी की ज़िंदगी से तो यही मिलता है सबक कि रुकना नाम नहीं है ज़िंदगी का। आप काम करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं, रुकिए नहीं, क्योंकि रुकने से कहीं ना कहीं दिमाग में, ज़िंदगी में जंग लग जाती है। तो उस जंग को हमें उतारते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, यहाँ पर ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज हम आपसे बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म एक्टर ऋषि कपूर जी के बारे में। दोस्तों ऋषि कपूर जी ने बहुत सारा काम किया, 73 से 2000 तो काम करा ही करा, उसके बाद में 2000 के दशक में भी इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ करी और इसके लिए इनको खूब सारे अवार्ड्स ही मिले। जब इनकी पहली मूवी आई थी एज अ चाइल्ड एक्टर, उसी के लिए इनको चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिल गया। फिर जो डेब्यू मूवी आई इनकी बॉबी, उसके लिए अगेन इनको अवार्ड मिला। तो अवार्ड्स तो इनको भर भर के मिले। 1970 में इनको जो मेरा नाम जोकर का अवार्ड मिला, फिर बॉबी के लिए 2008 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला। भारतीय सिनेमा के साथ इनको रशियन गवर्नमेंट ने भी इनका काम खूब सराहा। 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया। 2010 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल जो इनको मिला लव आजकल के लिए, उसके लिए इनको नवाजा गया अवार्ड से। 2010 में स्क्रीन अवार्ड, 2011 में अगेन जी सिने और फिल्म फेयर दोनों मिले। 2013 में द टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स मिला। 17 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर कपूर एंड सन्स, ये इनको मिला। 2017 में सपोर्टिंग रोल मेल फॉर कपूर एंड सन्स दोबारा मिला। 17 में ही जी सिने अवार्ड मिला कपूर एंड सन्स के लिए। और 2019 में एडिडास मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स बेस्ट प्रोजेक्टेड बाय एडिडास, तो ये अवार्ड इनको मिले। दोस्तों कितने अवार्ड्स है तो शायद मैं जो आपको बता भी नहीं पाई। तो अवार्ड्स तो इनकी झोली में भर भर के हैं, लेकिन जैसा कि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस बहुत ज़रूरी हैं, मिलने भी चाहिए, लेकिन बेस्ट अवार्ड होता है जनता का प्यार, क्योंकि जनता ही है जो एक्टर्स को बनाती है और जनता ही है जो एक्टर्स को उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। और ऋषि कपूर जी वो शख्स हैं जिनको जनता ने भरपूर प्यार दिया। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर जी का काम सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और आज भी इनके काम को हम देखना पसंद करते हैं। इनके द्वारा जो की गई मूवीज़ हैं वो आज भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सोच में मैं थोड़ा सा इसलिए पड़ गई क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऋषि कपूर जी के बारे में तो पता नहीं कितनी बातें और हैं जो मुझे आपसे करनी है, लेकिन ये जो घड़ी देवी है ये भी टिक टिक करके आगे बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम का अंतिम चरण आ गया है, लेकिन अभी मैं जा नहीं रही हूँ, अभी मैं वापस आऊँगी। आप भी इनके गाने सुनिए और आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड।

रेडियो मानवरचना में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज रेडियो मानवरचना के माध्यम से हमने श्रद्धांजलि देने की कोशिश करी ऋषि कपूर जी को, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टर रहे। हमारे बीच में आज वो नहीं है, लेकिन अपने काम से, अपनी शोहरत से, अपनी एक्टिंग से वो हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। दोस्तों, एक समय था जब उनको पता चला कि उनको कैंसर है, बोन मैरो का उनको कैंसर हुआ। वो न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे उन्होंने अपना इलाज कराया और इस बीमारी के बाद वो पब्लिक अपीयरेंस तो उनकी बहुत कम हो गई। एक साल बाद वो वापस भी आए, दो साल तक उनका इलाज यहाँ चलता रहा। बहुत पीड़ा में रहे, बहुत उन्होंने कष्ट झेला, परिवार उनके साथ खड़ा रहा। उनके बेटे रणबीर कपूर और उनकी डॉटर रिधिमा कपूर, बेटे का तो हम सबको पता है कि वो बहुत फेमस एक्टर है। रिधिमा जो है वो एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं, वो फैशन डिज़ाइनर हैं, दिल्ली में रहती हैं। तो सभी उनका फैमिली जो है उनके साथ खड़ी रही, उनकी वाइफ नीतू जी अंत तक उनके साथ रहीं और उस बीमारी को वो झेल नहीं पाए और 30 अप्रैल 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम समय में वे मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में वो भर्ती थे और इस समय भी वो शर्माजी नमकीन नाम के मूवी के लिए शूटिंग कर रहे थे। तो देखिए, वही जो हमने इनकी ज़िंदगी से सीखा ना कि रुकना नहीं है, काम करते रहिए अपने अंत समय तक। ऋषि कपूर जी आज अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम थैंकफुल हैं आपको, हम शुक्रगुजार करते हैं आपका कि आपने फिल्म इंडस्ट्री को, आपने जनता के लिए इतना काम किया, इतना ज़्यादा साल अपनी ज़िंदगी के आपने हमारे लिए गुजारे और इतना हमारा भरपूर एंटरटेनमेंट किया। रेडियो मानव रचना के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी आवाज़ को विराम दे रही हूँ क्योंकि समय हो गया मेरे चलने का। अगले एपिसोड में, अगले शो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, एक नए अंदाज के साथ, एक नए एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर, देखते हैं कि कौन नसीब में होता है हमारे, तो किसी और अदाकारा की कहानी के साथ। तो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं कर रही हूँ साइन आउट अगले हफ्ते तक के लिए। गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: Well, hello, good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। Now, this show is special for us, special for you, reason being कि legal framework को decode करने की कोशिश यहां पर की जाती है। हर एपिसोड अपने आप में बहुत खास होता है क्योंकि हर एक एपिसोड में एक नया टॉपिक, एक नए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस गरिमा पावा। गरिमा मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव विष्णु यूनिवर्सिटी। टॉपिक हमारा होने वाला है आज का सोशल मीडिया, इसके लॉज क्या हैं, क्या सही में सोशल मीडिया एक फन के लिए आप उसको देख सकते हैं कि महज एक फन है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, निकल जाओ, कोई भी वीडियो बना के डाल दो, सब ठीक होगा, कोई नहीं देखेगा, या फिर उसको भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना सीरियस हम बाकी चीज़ों को लेते हैं, लाइक क्रिमिनल लॉज या ट्रैफिक लॉज। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किस लेवल पर आपको उसको आंकना चाहिए, क्या ग्रेविटी वहां पर हो सकती है, सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। This we gonna decode in today's episode. Now let's get started and let's welcome Miss Garima Pawa. Hi ma'am, welcome to our show.
4: Thank you so much.
3: पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि क्या सोशल मीडिया को हमें ऐसे ही लाइटली लेना चाहिए या फिर सोशल मीडिया सच में किसी इंसान को लीगल ट्रबल में डाल सकता है?
4: सी, आजकल हर कोई एक इंसान, चाहे वो 16 ईयर ओल्ड हो, 12 ईयर ओल्ड हो या एक छोटा भी बच्चा भी, आजकल सब स्क्रॉल करते हैं और या 60-70 ईयर्स ओल्ड हो, मतलब ऑल एज ग्रुप्स आर ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, हर एक चीज़ के पीछे ना एक मोटिव होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक रिलीजियस कोई पोस्ट डली हुई है और मुझे वो अच्छी लगी, मैंने वो लाइक कर दी, पर क्या पता मेरी कम्युनिटी को वो चीज़ पसंद ना आए और वही चीज़ मेरे को प्रॉब्लम में लेकर आ जाए। या फिर हम लोग ऐसे कोई पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, जो कि हमारे देश के खिलाफ हो जाती है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को वो हैम्पर करती है, या डे टू डे रूटीन को भी हैम्पर करती है, चाहे हायर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो। तो दोनों ही केसेस में हम लोग लीगल ट्रबल में फंस भी सकते हैं और कभी लेट गो भी हो जाता है।
3: ऑल राइट, क्या जो भी हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, हम उसको बोल सकते हैं सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सेंसर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आ सकती उसके अंडर?
4: देखिए, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मोस्ट यूज फंडामेंटल राइट इंडिया में, हर कोई इंसान इसको यूज़ कर रहा है, और सोशल मीडिया में पोस्ट करना ऑब्वियसली हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, बट जैसे उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ही गिवन है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे हम इंडिया की सोवरेनिटी को हार्म नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी है उसको हार्म नहीं कर सकते, पब्लिक डेकोरम को ख़राब नहीं कर सकते, ऐसे करके बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट एक आम आदमी उस नज़रिए से उसको देख ही नहीं पाता। हम लोग को कानून पता है तो हम उस नज़रिए से समझ पाते हैं, पर एक आम आदमी के लिए तो हर चीज़ बोलना एक फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो सोशल मीडिया पे कुछ लिखने, बोलने, इन सब को लोग ना बहुत नॉर्मल लेने लग गए हैं, चाहे वो किसी की ज़िंदगी ले ले रहा है, चाहे किसी की पूरी लाइफ आगे ख़राब कर रहा है, और एक दिन में किसी को बहुत फेमस भी करके अच्छी उसकी लाइफ भी बना दे रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हम बात करते हैं ओपिनियन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, मेरा ओपिनियन है उसको लेके, ज़रूरी नहीं है हम सरकार की हर बात की सहमति हो, तो उसको लेके हमने अगर कोई ओपिनियन दिया है तो वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में है। पर मैं उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काऊं, ऐसे स्पीच लिखूं या बात बोलूं, पूरे सोशल मीडिया में फैला दूं, जिससे पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ कोई बात हो जाए, तो वेजिंग वॉर वाला सीन आ जाए, तो वो उस टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे उनका रोल आ जाता है और एक आम आदमी समझ ही नहीं रहा होता। क्यों? मान लीजिए कि मैंने सबको समाज में किसी को भड़काना क्या सोचा, सरकार ने कुछ डाला, मैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ हूँ और मैंने उसको प्रमोट किया अपने व्यूज़ को देके, बट वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, बट वो दिख रहा है कि मैं भड़काना चाह रही हूँ, मैंने भेजा, किसी ने फॉरवर्ड किया, फिर किसी ने फॉरवर्ड किया, और ऐसे करते हुए चलता चला जाता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है, बेसिकली मिसयूज़ है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। बट ऑन दी अदर हैंड आई फील सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड अभी आप देखिए, बहुत रिसेंटली मतलब 3-4 साल में मैंने नोटिस किया है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से अपने आप को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी LGBTQ कम्युनिटी हो, लोगों को अवेयरनेस फैलती है इस बारे में, चाहे अभी हम देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है या अभी एक प्रोटेस्ट जो पीछे रहा कॉकरोच पार्टी के, उसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन जब लोगों के तक पहुंचती है तो लोग अपना ओपिनियन दे पाते हैं उसके ऊपर, एक्सप्रेशन दे पाते हैं, तो तब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
3: और मैं अगर इसको ये देखना चाहूँ कहाँ पर ये बाउंड्री खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की खत्म हो रही है, और कहाँ पर लीगल लायबिलिटी स्टार्ट हो जा रही है,
4: ये बहुत थिन और ट्रांसलूसेंट बाउंड्री है, इसको हम लोग कॉमन लोग डिमार्केट नहीं कर सकते, हम उसमें अंतर नहीं बता सकते। हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट वही चीज़ हो सकता है कि किसी की डिफेमेशन में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए मैंने किसी पार्टी के बारे में या किसी, जैसे हम लोग वीडियोज़ देखते हैं नेबर्स बीच में लड़ाई हो गई वो डाल देते हैं, या किसी भी पर्सन के बारे में जिससे रेपुटेशन उसके सामने ख़राब हो जाती है वो हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं। अब मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मैं अपने एक ओपिनियन दे सकती हूँ, पर वो सामने वाले के लाइफ पे या उसके इमेज के ऊपर क्या लेकर आ रहा है ये हमें नहीं पता, तो वो डिफेमेशन में बदल गया। तो जो थिन लाइन है ये लोगों को नहीं पता, और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग समझें कि किसी के बारे में अपना ओपिनियन देना, अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन उससे सामने वाले के ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, या आप सोचें कि मैंने वीडियो डाली और अब मैं उसको हटा देता हूँ तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, AI आ गया है, उसको डाउनलोड करके डीप फेक करके आप पोस्ट करिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डाल दीजिए, हर जगह से आप नहीं हटा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है इस लाइन को समझने के लिए अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पोस्ट कुछ आती है तो सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि इसका ओरिजिन क्या है। इसके ना दो जनरेशन सबसे ज़्यादा शिकार हो रही है। एक जो हमारी बहुत यंग जनरेशन है जो टीनेज में और एडोलेसेंस एज में आती है, और एक है हमारी जो बहुत एजड जनरेशन है जिनके हाथ में फ़ोन तो है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, और वो सिर्फ भावुकता में उन चीज़ों को आगे पोस्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको ये समझाना कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लाइन है ये बहुत बहुत थिन है।
3: बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर आपके और मेरे जीवन की, जो आप कह सकते हो जिस तरीके से तारें जुड़ी हुई हैं, या द वे हाउ वी कंज्यूम द इंफॉर्मेशन, द वे हाउ वी आर गेटिंग द करंट अफेयर्स, द वे हाउ वी आर गेटिंग द न्यूज़, ये सब कुछ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम आज के डेट में सोशल मीडिया, जिससे आपको और मुझे पता लग रहा है। मुझे याद नहीं है ठीक ठीक कि मैंने आखिरी बार अखबार कब पढ़ा था, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि मैं सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ देखता हूँ कि कुछ नया हुआ है। इट शोज़ अस दैट कि जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुका है, पर अगर सोर्स ही बायस हो जाए, अगर सोर्स को मैनिपुलेट कर दिया जाए, वहां से प्रॉब्लम दूसरे तरीके से स्टार्ट हो सकती है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, कि सोशल मीडिया कैन बी अ मैनिपुलेटिव टूल, सोशल मीडिया कैन बी समथिंग जो आपकी पूरी लाइफ, करियर सब कुछ चेंज कर सकता है। सो दैट इज अ थिंग। लेट्स टेक अ म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये घुमारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते, आप लोग जुड़े हैं रेडियो मार्फ 107.8 एफएम के साथ। टॉपिक हमारा है कि सोशल मीडिया पर लॉज कैसे काम करते हैं, हाउ एग्जैक्टली लीगल फ्रेमवर्क इज नेविगेटिंग थ्रू दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया। हमारे साथ गरिमा मैम है और गरिमा मैम से अभी तक हमने बात करी है एग्जैक्टली सोशल

0: इंडिया में कहां पर आप लीगल ट्रबल में आ सकते हो, कहां पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो वो बाउंड्री है वो खत्म हो जाता है, कहां पर आपका लीगल लायबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ लेट्स टेक इट अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि किसी के बारे में अगर मैं कुछ बोल दूं या डिफेमेटरी कंटेंट डाल दूं, या लेट्स से कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, इस केस में क्या होगा, कानून कैसे नेविगेट करेगा, क्या कोई लीगल एक्शन हो सकता है अगर मेरे पास उसका तथ्य नहीं है तो?
1: अभी ये चीज़ तो बहुत कॉमन हो गई है सोशल मीडिया में, कोई बात हो रही है, कहीं आप जा रहे हैं, आप कोई फोटो बनाई, वीडियो बनाई, डाल दिया। परमिशन का तो कोई कंसेप्ट एज सच है नहीं, क्योंकि मतलब काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो परमिशंस भी लेते हैं, बट हम कहीं जा रहे हैं तब भी वीडियो डाल दिया, तो अगर वो कोई डिफेमेटरी है, जिससे डिफेमेशन का भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जिसमें हम छोटी सी बात ये समझ सकते हैं कि जिससे हमारी समाज की नज़रों में हमारी इज्जत कम होती है, उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। सो अगर हमारा ऐसा कोई डिफेमेशन का केस बन जाता है, जिसमें मुझे लगता है कि आपने कोई मेरे बारे में कोई वीडियो डाल दी, या मैंने कुछ कहा या कुछ करते हुए आपने मेरी वीडियो डाल दी और सबको पता चल गया, या वो कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ ख़राब ही हो, तो वहाँ पे हमारा भारतीय न्याय संहिता आ जाता है, जहाँ पे जिस इज़ द न्यू लॉ, जिसको IPC ने रिप्लेस किया है अभी, और BNS जो है वो डिफेमेशन को एज अ ऑफेंस लेता है और उसके अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ आप साइबर लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज सच डिफाइंड साइबर लॉज अभी इंडिया के अंदर नहीं है जो स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर बात करता है, तो जो जनरल ऑफेंस जिसमें हम बात कर सकते हैं वो BNS का डिफेमेशन ही है, जिसके लिए हम चार्ज फाइल कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, क्या अगर व्हाट्सएप पे आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट नहीं है लेकिन आपके पास कहीं से आया है, तो क्या आप इसके अकाउंटेबल ठहराए जाओगे?
1: जी, इसमें अब दूसरा लॉ आ जाता है। आजकल ये YouTube पे भी बहुत कॉमन देखा जाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का ये नोटिसेस आ जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉपीराइट है क्या और उसका इन्फ्रिंजमेंट कैसे। अब जैसे आजकल हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसके अंदर कुछ भी एक ऑडियो का पार्ट उठाया और हम डाल देते हैं, राइट, तो वो हमारा कॉपीराइट है कि इन्फ्रिंजमेंट है कि नहीं है, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। या मैंने कहीं से कविता उठाई, मैंने व्हाट्सएप पे उसमें अपना नाम लगा के और आगे फॉरवर्ड कर दी, तो ये यहाँ पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं, और कॉपीराइट एक्ट है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट्स गिवन है। अभी इसका डोमेन और वाइड होना चाहिए, बिकॉज बहुत अभी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट इसको भी वाइड करना होगा। YouTube की जैसे कुछ गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसमें आप देखते हैं कि लोग मूवी अपलोड कर देते हैं और उसमें कुछ पार्ट जो है वो म्यूट कर देते हैं, जस्ट टू फाइंड अ लूप होल इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। सो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़, किसी का और का काम का क्रेडिट ले लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, बीट इमेज, रील्स और सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट, एनीथिंग, बीट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो तब हमारा कॉपीराइट एक्ट जो है वो गवर्न करता है इसको, और उसके अंदर हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए चार्ज कर सकते हैं।
0: बट वो तो तब बात होगी ना जब मैं उसको पब्लिश कर रहा हूँ कहीं पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी उठता है कि मानकर चलिए मेरे पास एक फेक कोई मैसेज आया जो मैनिपुलेटेड था, जिसमें किसी की डिग्निटी हार्म हो रही थी, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर वीडियो या फोटो जो भी है, बट मैं सोर्स बन रहा हूँ उसको आगे पहुँचाने का, क्या मेरे अगेंस्ट को लीगल एक्शन हो सकता है इस केस में?
1: जी, अभी मैंने बहुत रिसेंटली एक दो जगह पे देखा है, मेरे एक नोन भी हैं जिनका ना व्हाट्सएप अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो बैन हो गए हैं। रीज़न ये है कि दे आर नॉट नोइंग कि वो फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं। जैसे आज की क्या था, जो तुमने कुछ फॉरवर्ड किया, कोई गाइडलाइंस इन्फ्रिंज की, तो हमें पता ही नहीं है। वेन एवर वी स्टार्ट व्हाट्सएप, टर्म्स एंड कंडीशन से बस टिक करते हैं एंड वी गो विद इट। हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं है डिफाइंड, बट देर आर सम गाइडलाइंस जो ये प्लेटफॉर्म्स हमको देते हैं। और तीनों चारों जो फेमस सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे मेटा जो कंपनी है उन्होंने परचेज कर रखे हैं, उनके अंदर ही काम करते हैं। अब इनकी गाइडलाइंस हर प्लेटफॉर्म को लेके डिफरेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि 1 या 2% ऑफ इंडिया इवन नो अबाउट दैट गाइडलाइंस। सो जो हम ये फॉरवर्ड करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, हम सोशल मीडिया से बैन हो जाते हैं, रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो वो लीगल एक्शंस जो हैं वहाँ लिए जा रहे हैं। बट ऑन दी नेशनल लेवल अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए कोई अभी तक एज सच कोई फ्रेमवर्क आया नहीं है।
0: ओके, सो बेसिकली इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप उस प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस को अगर यू नो स्पॉइल कर रहे हो या उनको समहाउ वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं हर प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म आपके अगेंस्ट ये एक्शन ले पाएगा, आपके अकाउंट को बैन कर देगा, शेडो बैन कर देगा, बट कोई सीधा लीगल नोटिस नहीं आएगा। अब एज ऑफ नाउ
1: राइट,
0: अभी हमारे पास नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है. ओके सो अमेजिंग, लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक. उम्मीद कर रहा हूं अगला पॉइंट आपको समझा पाए. हम जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव.

0: once again welcome back. अगर मेरे लिए या गरिमा मैम के लिए कोई भी फीडबैक है आपके पास, so do make sure 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात आप जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर के चलेंगे। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर और मैंने बाद में उसको डिलीट कर दिया, क्या अभी भी मैं अकाउंटेबल हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज का?
1: या डेफिनेटली, इवन दो अगर हम ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ अपलोड हो गई और हम सोच रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, गंदे रिव्यूज आ गए और वो किसी और के लिए है, ठीक है, और उसको हम रिमूव कर देते हैं कि सोच के कि अब मैं मेरे पेज को लोग अनफॉलो ना करें या मेरे ऊपर कोई मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए कुछ इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैनी पीपल डाउनलोड दोज वीडियोस, दे रीपोस्ट, नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रीपोस्ट आल्सो, एंड उसके बाद वो अपने पेजेस पे भी डालते हैं, अपने अकाउंट्स पे भी डालते हैं। उसके बाद आजकल एक जो बहुत इशू हो गया है वो है डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है, जिसमें आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके एक डिफरेंट सिनेरियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो वीडियो बना लें, चाहे आप कहीं कोई रील बना लें या आपको कहीं एक से पिक्चर बना लें, एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फोटो एंड वीडियो, इट विल डेफिनेटली लुक लाइक अ रियल पिक्चर, राइट। तो अगर आपने किसी की वीडियो अपलोड करी, इवन दो आपने उसको डाउन भी कर दिया, बट जो सर्कुलेशन हो चुका है, नैनो सेकंड्स में आजकल सर्कुलेशन हो जाता है, जो सर्कुलेशन हो चुका है और उसके बाद अगर कोई उसको मिसयूज़ कर रहा है, सो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर लीगल ट्रबल आएगा, ठीक है। सो मेरा सजेशन तो हमेशा यही होता है दैट बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग जस्ट स्टॉप फर्स्ट एंड थिंक अबाउट इट, कि अगर मैं ये पब्लिश करूँगा या मैं इसको पोस्ट करूँगा, दिस विल हार्म एनीवन इन द सोसाइटी, एंड इफ इट विल सो एट व्हाट लेवल वी कैन थिंक कि किसी

0: ये पूरी लाइफ या करियर जा सकता है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सेंसरशिप वाला एक पार्ट होता है. अभी हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह जितनी सब चीज़ें आती थी पहले, वो सेंसरशिप में वो सेंसर बोर्ड देखते थे एंड देन उसके बाद वो छप कर बाहर आते थे. लेकिन जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं उसमें आपके जो अकाउंट में, मतलब जो पोस्ट कर रहा है, जो उसका मेन एडमिन है, उसके ऊपर होता है कि उसको सेंसर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है. और वो कहीं पर ब्लर हो जाती है, वीडियो भी नहीं हो जाती. अभी बहुत रिसेंटली जो बिहार केस हुआ, जिसके अंदर एक लड़का लड़की को पकड़ लिया और फिर वो वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया, एंड वन ऑफ द एक्यूज ओनली हिमसेल्फ अपलोडेड दैट वीडियो. उसमें उन दोनों का फेस एकदम क्लियर है. आफ्टर मी एज अ नॉर्मल पर्सन, आफ्टर वॉचिंग इट फॉर लाइक 10-15 टाइम्स, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरे सामने आई उसमें उनके फेसेस ब्लर हैं. सो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस? सो जो पर्सन जिसने स्टार्ट किया है, दैट पर्सन विल बी ओनली अकाउंटेबल. उसके बाद जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो तो फंसेंगे ही, बट जो मेन है, अगर वो सोच रहा है कि मैं डाउन कर देता हूँ ना, आई विल बी आउट ऑफ इट, तो ये तो नहीं हो पाता.
1: There's a new culture coming up which is meme culture. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉलेज में, अगर हम यहाँ पर कैंपस की बात करते हैं अपने, लेट्स से कि हमारे कोई स्टूडेंट है जिसने मीम पेज अपना बनाया हुआ है और वो टीचर्स का मजाक उड़ाता है, मॉक करता है, या अपने कॉलिग्स का मजाक उड़ाता है, मॉक करता है, क्या इस सिनेरियो में जो कि फन वे में हो रहा है, मीम भाषा में हो रहा है, क्या इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को?
0: सी दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली. अब इंस्टीट्यूशन क्या उसके लिए एक्शन लेना चाहती है. कई बार एडमिन को पता करके एंड वी, मतलब इंस्टीट्यूशन डज इट कि वो उनको मना कर देती है, या एक स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी लेवल पे ले लेती है कुछ, बट उनके ऊपर लीगल केसेस वगैरह तो मैंने बहुत कम देखे हैं. नॉट जस्ट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज बच्चे आजकल यू जस्ट टेकन एनो सेकेंड फोटो बना दी, स्नैपचैट में तो फिल्टर्स लगा दिए एंड देन पोस्टिंग इट अप. इवन आई हैव सीन सम केसेस जहाँ सीनियर टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतना समझ नहीं पाते हैं, तो उनका कोई मीम बना के डाल देते हैं. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन एंड केस टू केस कि वो कितना ऑफेंसिव है, और जिसके बारे में उन्होंने वो डाला है वो उसको कैसा टेक लेते हैं. समटाइम्स एक वो पैरोडी भी तो होता है ना, समटाइम्स वी फील लाइक कि नहीं इट्स ओके, बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, दिस इज ओके ऑल्सो फॉर फ्यू फैकल्टीज, बट फ्यू फैकल्टीज, फ्यू टीचर्स फील लाइक कि नहीं, दिस इज कम्प्लीटली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. जो उनका राइट टू प्राइवेसी है वो बिल्कुल खत्म होता है. हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं और फोटो वीडियोग्राफी के लिए वी डोंट डू इट अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूशन आस्क अस टू डू दैट. तो वहाँ पर डिपेंड करता है डेफिनेटली कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, एंड उसके बाद जो कंटेंट डाला है वो क्या है, कितना ऑफेंसिव है, कितना उसमें वो मतलब टारगेट कर रहा है, या फन बेस्ड है, या कुछ ऑफेंसिव डल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे मैटर करता है. एंड देन कम्स टू द यूनिवर्सिटी लेवल, हाउ दे वांट टू यू नो मूव फॉरवर्ड विद इट.
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग. आई एम डन विद माई क्वेश्चंस. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री.
0: ओके, आई जस्ट बिलीव कि हम लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करना आ गया है, बट उसकी कितना हमें यूज़ करना है और किस एक्सटेंट तक उसको यूज़ करना है, ये अभी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक देर शुड बी सम लीगल रूल्स ऑल्सो, देर शुड बी सम फ्रेमवर्क ऑल्सो जो इसको गवर्न करता हो, एंड जो हमारी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खराब, मतलब वॉयलेट भी ना कर रहा हो, बट स्टिल देर नीड टू बी सम लाइक सेंसरशिप ऑन द पोस्ट एंड एवरीथिंग. बिफोर दैट आई बिलीव कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंटेंट कर क्या रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. समटाइम्स आई थिंक द बिगेस्ट रोल दैट द पीपल प्ले इज इन्फ्लुएंसर्स ओवर सोशल मीडिया, बिकॉज वो ट्रेंड सेट करते हैं. अब वो किस तरीके के मजाक और किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो आई बिलीव चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, दे शुड थिंक फर्स्ट बिफोर लाइकिंग, अपलोडिंग और कमेंटिंग समथिंग. जो लोग इस बारे में अवेयर हैं वो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने एल्डर्स को इस चीज़ के बारे में बताएं कि वो जो भी डाल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल तरीके से ही हो रहा हो. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो किसी एक रिलीजियस सेक्ट को, एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को, या फिर कम्युनिटी को, या ऑल ओवर एक नेशन को बहुत अफेक्ट कर सकती है. तो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट बिफोर गिविंग एनी ओपिनियन, आई शुड से वी शुड थिंक कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एंड देन वी शुड टेक सम स्टेप्स जब तक हमारे पास कोई लीगल इसका स्टैंड नहीं आ जाता. सो जस्ट बी अवेयर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड साइबर क्राइम नहीं करने के साथ साथ उससे बचना भी है. तो मेरा सिर्फ यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सोशल मीडिया को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए, और ना ही उसको ऐसा लिया जाए जिससे आपकी लाइफ पे बहुत अफेक्ट हो जाए.
1: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज मैम. उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आज जो हमने बात करी सोशल मीडिया की, और बॉटम लाइन हमें समझ में आती है कि आपके एक्शंस बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा या फिर उसको आप इन्फ्रिंज कर चुके होंगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका इंटेंट क्या है और आप क्या एक्शन ले रहे हो। समटाइम्स अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, बट वी हैव टू बी माइंडफुल। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अपने बाकी शोज में भी बोलता हूँ कि आप उस जमाने में जी रहे हो जहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया है। अब ऐसे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सही है या एज इट इज़ आपको पता लग रही है। डिपेंड करता है किसके थ्रू आ रही है, क्या उसमें किसी का एजेंडा छुपा हुआ है, उसको मैनिपुलेट किया गया है, क्या सिनेरियो वहां पर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सो ऑलवेज यू हैव टू फैक्ट चेक द थिंग, क्रॉस चेक आपको करना चाहिए कि फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। फिलहाल इसी नोट पर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस।
0: थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला, इस मेरा रंगीला।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं आ गई हूँ लेकर प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मैं

0: आपको मिलवाती हूँ ऐसी सशक्त महिलाओं से जो न सिर्फ सशक्तिकरण फैला रही हैं, लेकिन साथ के साथ बहुत सारा काम कर रही हैं महिलाओं के लिए। वो खुद भी सशक्त हैं, उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है दीप्ति माथुर जी। दीप्ति माथुर जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL में। और ये सोलर स्केल इंटीग्रेशन की बात करूं या फिर यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी की बात करूं तो इस पर ढेर सारा काम भी कर रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर भी ये बहुत सारा काम कर रही है। और ये क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है और इनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने के लिए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू भावना जी, आज इस प्रोग्राम में आपने मेरे को इस लायक समझा कि महिला सशक्तिकरण पे मैं कुछ अपने विचार सबके समक्ष रख सकूं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।
0: दीप्ति जी ये जो कार्यक्रम है ना ये महिला सशक्तिकरण का है, और महिला सशक्तिकरण की एक जो परिभाषा या डेफिनेशन होती है मेरा ये मानना है कि वो हर महिला के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो अगर मैं आपसे पूछूं आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण को कैसे डिफाइन करेंगी, आपको क्या लगता है क्या है महिला सशक्तिकरण, आपके लिए एम्पावरमेंट क्या है, तो क्या कहेंगी आप?
1: भावना जी महिला सशक्तिकरण का शायद हर महिला अपने हिसाब से कुछ उसका व्याख्यान कर सकती है, पर मेरी नजर में महिला सशक्तिकरण कोई किताबी परिभाषा नहीं है ना, और नहीं कोई एक ये नारा है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर लें, बल्कि यह मेरे लिए एक बहुत ही अत्यंत व्यक्तिगत और जीवंत यात्रा है। वह यात्रा जो शायद हम अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के साथ पूरी करते हैं, उस पर अडिग रहकर पूरी करते हैं, अपने योग्यता और अपने कार्य से अपनी जगह बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परंपरा और आधुनिकता का यह एक बहुत सुंदर संतुलन है। मेरे हिसाब से यही महिला सशक्तिकरण है कि अपने शर्तों और उच्च आदर्शों के साथ आप जिए और उत्कृष्टता हासिल करें और शायद एक ऐसी अमिट छाप भी छोड़ जाए जो दूसरों का सदैव मार्गदर्शन करती रहे।
0: तो जी महिला सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा अगर मैं कहूं तो वो यही है कि महिलाएं खुद तो सशक्त हो ही रही हैं, लेकिन साथ के साथ दूसरों के लिए और महिलाओं के लिए भी राह क्रिएट कर रही हैं, रास्ते क्रिएट कर रही हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से। दीप्ति माथुर जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की JVVNL की, और सोलर एनर्जी पर ये ढेर सारा काम भी कर रही हैं। दीप्ति जी, अब एक सवाल, हम कहते हैं ना महिलाओं के नाम के साथ जो एक सरनेम आता है वो सरनेम है चैलेंज, और महिलाएं इन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेती हैं, लेकिन हर एरा में उनके जो चैलेंजेस हैं वो बड़े अलग हैं। सो आप मुझे बताइए आजकल की महिला का क्या चैलेंज है?
1: देखिए भावना जी, आजकल प्राय सारी महिलाएं मतलब ऑलमोस्ट 40-50% महिलाएं नौकरी पेशा हैं, और मेरे हिसाब से जो वर्तमान में सबसे बड़ी उनके साथ चुनौती है वो कई बहुत मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं आती, कोई अदृश्य चुनौतियां हैं। जैसे मतलब हर महिला को एक दोहरा बोझ एक सहन करना पड़ रहा है, उस जैसे इट्स लाइक एन अनपेड केयर वर्क है वो। शिक्षा और कैरियर में हमने पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर हम चलते हैं, उसके बावजूद भी यह है कि घर परिवार बच्चों की देखभाल बुजुर्गों की सेवा यह सब आज भी प्रायः भारतवर्ष में एक आप देखा जाए तो महिलाओं के कंधों पर ही यह जिम्मेदारी मानी जाती है। यह हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा एक और मतलब मदरहुड एक पेनल्टी जैसे कहते हैं ना, वो उस तरह से हमारे ऊपर एक ये एक पेनल्टी हमें लगता है कई बार, क्योंकि हमें अपना कार्य कार्यस्थल पे कार्य संपूर्ण करना होता है, पर ये हमें एक जिम्मेदारी यही समझी जाती है कि यह एक महिला की जिम्मेदारी है। तो इस तरह की ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम सबसे बड़ी कार्य क्षेत्र में भी महिलाओं के पास बहुत चुनौती है, चाहे वो बहुत अच्छे अपना कार्य कर रही हैं सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में, पर प्रायः ये देखा गया है कि जो शीर्ष स्थानों पर पहुंचने के लिए उनको अपने मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में शायद डबल एफर्ट लगाना पड़ता है, और कई बार वो बहुत शीर्ष स्थानों पर शायद पहुँच भी नहीं पाती। और उससे बड़ी सबसे बड़ी जो मैं एक चुनौती मानती हूँ एक वो महिला के लिए यह है कि वो अपने आप को एक सुपर वुमेन सिंड्रोम से हम एक ग्रस्त हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम सुपर वुमेन हैं जो हम सारे ही काम बहुत ही संजीदगी से बहुत ही अच्छी पूर्णता से हम सारे काम कर लें, और इसी के शायद दबाव में हम अपना अपने लिए ना तो कोई समय निकाल पाते हैं, हमारा जो मी टाइम है, और हर टाइम हम किसी न किसी आत्मग्लानी से ही भरे होते हैं कि शायद हमने ये कार्य अच्छे से नहीं करा, और हमें जो समय परिवार को देना था वो हमने अच्छे से नहीं करा, कार्यस्थल पर शायद हम अपना संपूर्ण नहीं दे पाए। तो इन सब अनगिनत ये चुनौतियां आज के परिपेक्ष में ये चुनौतियां सबसे ज्यादा है
0: एक्चुअली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये गिल्ट जो है ना ये हर महिला की जिंदगी में आता है, लेकिन इस गिल्ट को देने वाला भी हमारा ही समाज है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये समाज ही है ना जो महिलाओं को ये कहता है कि आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने ये काम ठीक से नहीं किया। अगर हम महिलाओं पर से प्रेशर ही हटा ले तो मुझे लगता है ये गिल्ट भी खत्म हो जाएगा। क्या कहना है आपका, जल्दी से बताइए मुझे 8010781078 पर।
1: ये बिल्कुल आपका कहना इस मामले में बिल्कुल सही है भावना जी, पर बस यही मेरा भी आज आपके माध्यम से और सबसे यही अनुरोध है कि क्यों यह सारे कार्य महिला के ऊपर ही हमको जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे आजकल समय बहुत बदल रहा है, और जैसा मैं देख रही हूँ आजकल के जो नव युवक और नव युवतियाँ हैं वो संपूर्ण मतलब अपनी दोनों अपने अपने क्षेत्र में भागीदारी निभा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि एज अ पेरेंट फादर भी पूरा ही बच्चे का वो सारा कार्य करते हैं जो मदर करती हैं, और आजकल वर्क फ्रॉम होम का ये जो कल्चर शुरू हो गया है उसमें कई बार प्रायः ये होता है कि महिला तो जा रही है नौकरी पर हस्बैंड बच्चे की टेक केयर कर रहा है। और सोशल मीडिया पे भी आजकल मैं बहुत इंस्टाग्राम और इन पे कभी कभी देखती हूँ कि ये विषय को बहुत अच्छे से लाया गया है, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो इसको समझाने के लिए और तरह तरह के उपाय वो कर रही है। तो आई एम वेरी श्योर कि शायद आने वाले समय में इसको हमारी जो बड़ी पीढ़ी है पेरेंट्स भी हैं वो भी शायद इसको समझ जाएंगे, और युवा पीढ़ी तो इसको काफी हद तक समझ रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति जी। इनफैक्ट मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बस जरूरत ये है कि इस बदलाव की शुरुआत खुद महिलाओं ने की है। भाई वो ही बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उन्होंने ये इक्वालिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर डालने की कोशिश की है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के। आज इस खूबसूरत से एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं JVVNL में। दीप्ति जी, अब अगला सवाल आपकी एम्पावरमेंट का, आपके सशक्तिकरण का। क्या आपने अपने जीवन में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई एक ऐसा डिसीशन लिया जो बहुत ही सशक्तिकरण भरा था या उससे ओतप्रोत था, और आपने उस डिसीशन को लेने के बाद फिर कभी जिंदगी में रिग्रेट नहीं किया?
1: मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा शायद डिसीशन यही था कि जब मैं 12th 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट चूज करने का टाइम आया 9th में, तो मैंने उस टाइम साइंस मैथ्स चूज करा, जो प्राय उस टाइम मैं ये बात कर रही हूँ आपसे 1980s की। तब शायद ही लड़कियाँ इस क्षेत्र में जाती थी, और दिमाग में शुरू से ये था कि मुझे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाना है। बहुत ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, पर मैथ से प्राय लड़कियां सारी बहुत घबराती थी। और उस टाइम मैंने ये कदम लिया। उस टाइम मुझे अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे साइंस मैथ्स नहीं थी, तो मुझे एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा जो बॉयज प्रोमिनेंट स्कूल था, और वहाँ पे मैं अपनी कक्षा में मात्र एक ही लड़की थी। पर शायद मैंने वो डिसीशन सही लिया, और आगे चल के ठीक है, मुझे परेशानियां भी आई, सब कुछ हुआ। इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया, तब उस टाइम बहुत चुनिंदा लड़कियां हुआ करती थी, पूरी पूरी क्लास में हम लोग सिर्फ दो या तीन लड़कियां थी। तो ये सब मेरी लाइफ के बहुत ऐसे महत्वपूर्ण डिसीशंस थे जिसको शायद मैंने ऐसे कभी रिग्रेट नहीं करा, और मैंने हमेशा इंजॉय करा इस मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में। अपने आप को एस्टैब्लिश करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो मैंने स्वीकारा, और मेरे लिए सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का शायद एक यही एग्जाम्पल है कि मैंने अपने आप को कभी भी विचलित नहीं होने दिया। आए ऐसी समस्याएं मेरे साथ बहुत आई, कार्य क्षेत्र में भी बहुत बार ये सब हुआ, पर मैं अडिग रही और अपना कार्य संपूर्ण निष्ठा से मैंने निभाया।
0: That is absolutely wonderful. दोस्तों, यही सशक्तिकरण है, जहाँ आपने जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचा है और आप इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप फीमेल जेंडर हैं। मतलब जेंडर के हिसाब से आप अपने जीवन को तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, और इसीलिए मैं महिलाओं को हमेशा ये कहती हूँ कि खुलकर जिए, और जो करना चाहते हैं उन्हें जरूर करिए, क्योंकि आप अपने जेंडर से डिफाइन कभी भी मत होइए। बट जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ये खूबसूरत सा एपिसोड जारी है बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से। दीप्ति जी, अब एक अहम सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है ना, शायद वो तब से थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं अपने जीवन के डिसीजंस लेने में। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अगर इंडिपेंडेंट होना है या फिर सशक्त होना है तो उन्हें फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है?
1: भावना जी, आपका प्रश्न काफी हद तक बहुत सही है, पर मेरा इसमें कुछ और भी विचार है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो महिलाएं हैं घर पे रह रही हैं या कामकाजी नहीं है वो सशक्तिकरण का कोई एग्जांपल क्रिएट नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण का एक साधन हो सकता है, परंतु वह पूर्ण रूप से एम्पावरमेंट नहीं है। पैसा किसी भी व्यक्ति को अंदर से सशक्त नहीं कर सकता जब तक हम अपने हमारे पास अपने विचार अपना निर्णय लेने की हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे। तो अब ये जरूरी है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना एक मतलब एक भारी ढाल है, पर अंदर की ढाल हमारी अपनी नैतिकता और अपने सिद्धांतों से कहीं उससे जुड़ी हुई है। अधिक आजादी जो है वो इंसान को भौतिक सुरक्षा दे सकता है, पर मेरे हिसाब से संस्कार, चरित्र, ये सब बहुत एक जरूरी आपकी वैल्यूज हैं जो आपको आत्मसंतोष दिलाती हैं। और आर्थिक आजादी निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जीवन के कभी विषम और गंभीर परिस्थितियों में आपके लिए एक मतलब फाइनेंशियल शील्ड जिसे कहते हैं वो हमारे लिए उसका काम करती है और हम कभी भी विवश होने से बच जाते हैं। ये सब बहुत जरूरी है, पर मेरे हिसाब से ये नहीं है कि जो महिलाएं कामकाजी नहीं हैं, घर में रह रही हैं और आर्थिक रूप से कुछ अपना योगदान नहीं दे रही, पर वो भी बहुत सशक्तिकृत हैं अगर वो उनके पास अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, उनके अपनी मॉरल इंटीग्रिटी है, अपना विवेक और संतुलन वो बना के रखती हैं, तो मेरी नजरों में दे आर हाईली एम्पावर्ड वेमेन।
0: एक्चुअली सो जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और होते हुए ही आप सिर्फ सशक्त होंगी, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस समाज के पैमाने में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या फिर आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी एक फ्रेम मिल जाता है जिसमें कि आप बहुत सारी परेशानियों से ऊपर उठ जाती हैं, क्योंकि वहां पर आपके डिसीशंस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।
2: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है। ज्वाला।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी दीप्ति माथुर जी आज हमारे साथ हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से। दीप्ति जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, महिलाओं के साथ एक चैलेंज जो मुझे लगता है अक्रॉस सेंचुरीज चलता आ रहा है, महिलाएं जब कभी भी अपनी पसंद का कोई करियर चूज करती हैं या कुछ भी उन्होंने अगर अपने जीवन में एक करियर बनाने की कोशिश की है, सो हमेशा से ये देखा गया है कि जब कभी भी कोई जिम्मेदारी आती है या पारिवारिक अगर हम कहें फैमिली का एक्सटेंशन होता है, तो हमेशा से करियर महिलाओं का ही कॉम्प्रोमाइज होता है या सैक्रिफाइस होता है। सो क्या इसे बैलेंस बनाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: ये आपका प्रश्न काफी हद तक बिल्कुल सही है कि कॉम्प्रोमाइज महिलाओं को ही जनरली देखा गया है कि करना पड़ता है अपना कैरियर और उन कुछ चीजों को लेकर। पर आजकल मेरे हिसाब से जो नया हमारा समाज है और इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं महिलाओं को। एक तो जैसे आपका जब मेटर्निटी लीव है आपका, उसको इतना आपको 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिलती है आपके लिए। देन एक अलग से आजकल हर कार्यस्थल पे हर जना मतलब काफी संवेदनशील होता गया है। हमने देखा है कि कार्यस्थल पे बेबी सिटिंग के लिए वो लोग अपनी क्रेचेस वो लोग रखते हैं कि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। इवन आपने शायद कहीं देखा होगा कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी बहुत कार्यस्थल पर महिलाओं को अलग से सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उन्हें कम्फर्ट हो और सब चीजें हैं। साथ में जो है पुरुष वर्ग भी उनका पूरा सहयोग कर रहा है। पर हाँ, अभी भी ये है कि आपको अगर कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज आए कि हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो गई, आपका कहीं है, तो ये पहला प्रश्न ये उठता है कि शायद फीमेल्स ही अपना कैरियर को सेक्रीफाइस करें। पर आजकल है कि सबैटिकल स्कीम्स मिलती हैं कि जिसमें आप 2-3 साल बच्चे को बड़ा कर दें और फिर उसके बाद आप वापस जॉब पे जा सकते हैं। और मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कैरियर इस जिंदगी में सबसे इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दें कि हम अपना परिवार नहीं चलाएंगे, हम शादी इसलिए नहीं करने से डरती हैं लड़कियां कि हमारे आगे सब कैरियर खत्म हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, तो और मतलब सारे दायित्व हम पे आ जाएंगे। बट मेरे हिसाब से शायद ये सही नहीं है। हमने उस जमाने में नौकरी करी, आज से 20-30 साल पहले 25 साल पहले जब ये सब स्वतंत्रताएं नहीं थी, बहुत रूढ़िवादी परिवार भी था, पर सबके सहयोग से सबके उससे हम आगे बढ़ते गए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम शादी नहीं करें या बच्चे पैदा नहीं करें, क्योंकि इसका एक बहुत दुष्परिणाम डेमोग्राफिक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो मेरा तो यही मानना है कि आज आने वाली लड़कियों को महिलाओं को इन सबसे डरना नहीं चाहिए। वो लोग एक्चुअली इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो हम ये सब अपने ऊपर ले ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं सही है और महिलाओं को अपने पारिवारिक मूल्यों का भी ख्याल रखना चाहिए और सब कुछ होएगा। अगर आपका आप अपने उस पे अडिग हैं, आप अपना किसी को विश्वास से जीत सकती हैं, तो शायद आपको अपने कैरियर पे इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: वाकई दोस्तों, देखिए भाई, हमारे समाज की ना एक कंडीशनिंग है और खास तौर पर बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ ये कंडीशनिंग बड़ी अलग है। मतलब बचपन से ही महिला या बच्ची जो है ना, मतलब अगर आप देखेंगे छोटी बच्ची से लेके जवान लड़की तक, हर जगह उन्हें बस ये कहा जाता है कि तुम बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा व्यवहार है, वो तुम्हारा कैरेक्टर है, वो तुम्हारे काम है। तो इन सारी चीजों से ना महिलाओं पर या बच्चियों पर या फिर कहना चाहिए लड़कियों पर एक बचपन से ही प्रेशर रहता है, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमेशा पिक्चर परफेक्ट हो। आप देखिए ना कि ये जो एड्स बनते हैं, ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, कि किस लिए बनते हैं? क्या हम आज भी बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं? लेकिन वाकई अगर आप देखें तो लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप पतली रहिए, बहुत कम लड़कों को ये कहा जाएगा कि शादी के बाद तुम्हारा फिगर बिगड़ जाएगा और तुम अपने फिगर को ठीक करना, लेकिन लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशनिंग है हमारे समाज की ना, ये कारण है कि लड़कियों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर एक प्रेशर रहता है, और इसीलिए फिर वो ये सोचती हैं कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो कहीं ये जिम्मेदारी हमसे निभाई जाएगी या नहीं, क्या हम उन पैरामीटर्स पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, क्या हम लोगों को खुश कर पाएंगे या नहीं। सो इसीलिए मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ महिलाएं जीती हैं और इसीलिए उन्हें सशक्तिकरण की जरूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। दीप्ति जी से आज हमने ढेर सारी बातें की, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके चैलेंजेस के बारे में जाना और साथ के साथ ये भी जाना कि क्या महिलाएं वाकई अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकती हैं और क्या वो जीना ठीक है। मतलब ये ना गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हम रिबेल हैं, ये भी नहीं महसूस होना चाहिए कि हमने समाज से हटके कुछ किया है। इस समाज के दायरे में रहते हुए समाज के साथ हाथ से हाथ मिलाकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तरीके बताए हैं दीप्ति जी ने जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद दीप्ति जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स से इतनी बेहतरीन बातचीत की। जाते जाते उन्हें क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: हाँ भावना जी, मैं एक थोड़ा सा कभी कभी कुछ लिख भी लेती हूँ, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ अभी लिखी हैं जो मैं समर्पित करना चाहती हूँ आज की यंग गर्ल्स और महिलाओं को, सबको। न केवल नारों में सिमटी, न केवल पन्नों की बात, सच्चा सशक्तिकरण वही है जो बदले मन के हालात। न पैसों की झंकार से नापो, न केवल अधिकारों से, यह तो जागृत होती है अंतर मन के विचारों से। स्वतंत्रता वह नहीं जो हमने अपने जड़ों से काट गिराए, सशक्त वही जो परिवार संग सपनों के गगन में लहराए। अहंकार से दूर रहकर जो संस्कारों को सहेजती है, वही स्त्री जग में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। न झुकना सीखना, न टिकटना सीखना, सिद्धांतों पर अड़ी रहना, हर मुश्किल में हर मोड़ पर चट्टान बनकर खड़ी रहना।
0: ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत आप लिखती है दीप्ति जी, और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ना तो हम उन्हें सिक्कों की झनकार से तोल सकते हैं और ना ही हम उनके अधिकारों से इन्हें तोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन दिल से उनसे कोई सवाल पूछा जाए और उनकी इच्छा क्या है ये पूछा जाए, सही मायने में सशक्तिकरण हमारे समाज में तब आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आज आप ना सिर्फ आपने हमारे बहुत सारी महिलाओं को एनलाइटन किया है, लेकिन साथ के साथ हमारे लिसनर्स को आपने बेहतरीन जानकारी दी है।
1: धन्यवाद भावना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आशा है मैं कुछ अपना अंश लोगों में कुछ उनको जागरूकता कर पाई होंगी और आगे वो लोग पढ़ेंगे अपने इसी मुकाम को हासिल करेंगी। थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात, टिल देन आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा,
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस अगर आर्थिक तनाव की बात बात करें तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूंगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि ये सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना, ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है, लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जेन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आएं। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या

0: पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखे हैं कि प्राइस बहुत ही शॉर्ट अप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 हज़ार करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3 हज़ार करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
1: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
0: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, 3 चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये 3 चीजों का जवाब। जब इन 3 चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन 3 सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
1: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
0: करेक्ट, एकदम सही।
1: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
0: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, आई मीन ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
0: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है।

0: आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेव ही रहेंगे, आप विमेन के ले लो मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है, तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
1: बट आज की डेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मनोरचना 107.8 FM के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पे आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बड़े एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइज़र क्या करते हैं या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो, एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे या जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड है जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, पर ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज। तो बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाईं कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मनोरंजना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और इसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगी। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया।

छह जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखा।

0: करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाली फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 125 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी, ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
1: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो?
0: ले लो।
1: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदी उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देखकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसके पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात

0: करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ। मैं ऑर्गन इंडिया के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर सागर गुप्ता, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हैं। यह डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सागर बात करेंगे किडनी यानी कि गुर्दा के बारे में, गुर्दा रोग के बारे में और गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो के लिए।
2: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका।
1: इससे पहले कि हम किडनी के रोगों के बारे में चर्चा करें, आप सबसे पहले सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किडनी होता क्या है और इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में।
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जनरली दो किडनीज होती हैं, यानी दो गुर्दे होते हैं। ये करीबन 4 इंच लंबे अंग हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक गुर्दा स्थित है। गुर्दे के शरीर में बहुत सारे कार्य हैं। सबसे प्रमुख इनमें से है खून की सफाई, यानी ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज हैं, यानी जो गंदगी हैं, उनको साफ करके, फिल्टर करके पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देना। इसके और कई कार्य हैं शरीर में, जैसे कि खून बनाने में मदद करना। नंबर 3 पे आप कह सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हड्डियों की स्वस्थ स्थिति को बनाए रखने में भी गुर्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से शरीर से फालतू नमक पानी निकालना भी गुर्दे का ही कार्य है।
1: तो गुर्दा रोग की बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे हम कहते हैं, वो होता क्या है।
2: मैं अपने श्रोताओं को ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुर्दे के रोग प्रमुख प्रकार से दो तरह के होते हैं। एक होता है AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि गुर्दों पर नया जोर जो कि हाल ही में पड़ा है। और दूसरे प्रकार का रोग होता है CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी चिरकारी वृक्क रोग, यानी गुर्दे पर वो जोर जो स्थायी रूप से बना आ रहा है 3 महीने से ज्यादा। एक चिकित्सक के रूप में हमें ये पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी यानी गुर्दे का नया जोर कारण पकड़कर पलटा जा सकता है। CKD यानी चिरकारी वृक्क रोग शरीर की वो स्थायी क्षति है जो कम से कम 3 महीनों से मौजूद है और गुर्दों के काम करने की क्षमता कुछ हद तक घट चुकी है। उस स्थिति को हम CKD यानी चिरकारी वृक्क रोग कहते हैं।
1: तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है?
2: अगर हम पूरी दुनिया के सारे देशों को लेकर चलें, तो नंबर 1 कारण यानी सबसे प्रमुख कारण, यानी वो बीमारी जिससे सबसे ज्यादा गुर्दा खराब होते हैं, वो है शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह रोग। पूरी दुनिया की तरह ही भारत के आंकड़े भी इसी तरफ संकेत देते हैं कि शुगर की बीमारी ही सबसे ज्यादा गुर्दों की बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग का कारण है। दूसरे नंबर पर आता है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी का लंबे समय तक हाई रहना। सीकेडी होने के अन्य कारण होते हैं बार बार संक्रमण यानी इन्फेक्शन पड़ना पेशाब के रास्ते। अन्य कारण होते हैं दवाएं लेना जैसे कि दर्द की दवाएं। छोटे समय से खाने में इसमें इतनी समस्या नहीं आती बट कई लोग इसको बहुत लंबे समय तक लेते रहते हैं, उससे भी गुर्दों पे काफी जोर पड़ सकता है। इसके अलावा गुर्दे के अंदरूनी बीमारियां होती हैं और कुछ अन्य बीमारियां हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बच्चे में माँ बाप के थ्रू आ सकती है। तो ये सब होते हैं चिरकारी वृक्क रोग यानी सीकेडी के कारण। इसमें याद रखने वाला सबसे प्रमुख नंबर 1 शुगर, नंबर 2 बीपी ये हैं।
1: पर यदि कोई व्यक्ति सीकेडी से ग्रस्त है तो वो कौन से लक्षण है जिससे रोगी का पता चलता है कि उसको सीकेडी है?
2: क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग एक तरीके से मुश्किल समस्या है। दुर्भाग्य से जब तक की बीमारी काफी हद तक बढ़ नहीं जाती तब तक यूजुअली इसका कोई लक्षण नहीं होता। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मरीज को कोई लक्षण नहीं आएंगे लेकिन उनके अंदर गुर्दे की बीमारी पनप रही होती है और वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ भी रही होती है। आम तौर पर जब ये चिरकारी वृक्क रोग अपने स्टेज 4 या अंतिम स्थिति स्टेज 5 तक पहुंच जाता है तभी अधिकतर मरीजों को लक्षण आते हैं। सीकेडी के लक्षण होते हैं बहुत थकान, ऊर्जा की कमी, ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई, आपको लगेगा आप सोए जा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काम पे। उसके अलावा जो चीजें आप देख पाएंगे इसमें है पांव और एड़ियों में सूजन, आंखों के चारों ओर सूजन विशेषकर सुबह के समय, सूखी त्वचा और त्वचा में खुजली, पेशाब की मात्रा कम होते जाना, लोगों का सांस भी फूलने लगता है और अधिकतर मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर किडनी की बीमारी चल रही है। इसको पकड़ने का एकमात्र तरीका है एक सिंपल सा KFT नाम का ब्लड टेस्ट जिससे किडनी के कार्य, उसकी फंक्शनिंग, उसकी क्षमता के बारे में पता चल सकता है, और एक पेशाब की सिंपल जांच यूरिन RM ये जरूर करवाएं।
1: हमारे साथ है डॉक्टर सागर गुप्ता जो हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज या चिरकारी वृक्क रोग के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब हमने बात किया कि सीकेडी होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे पैदा होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये सीकेडी हो गया है तो अब उसका इलाज क्या है?
2: अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग हो चुका है और वो बढ़ते बढ़ते स्टेज 5 या ESRD या अगर किसी को मान लीजिए क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुका है और वो बढ़कर ESRD यानी स्टेज 5 किडनी डिजीज यानी अंतिम चरण किडनी रोग तक पहुंच गया है तो उसके इलाज को हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो वर्ड यूज करते हैं हम RRT यानी कि गुर्दे का जो काम था शरीर में खून की सफाई, हमको उस कार्य को अब बाहर से करना होगा। गुर्दे का काम था शरीर में खून की सफाई यानी जो विषाक्त पदार्थ यानी जो अशुद्धताएं हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रही है उनको बाहर निकालना। जब गुर्दे इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट प्रक्रिया यानी डायलिसिस के रूप में हम खून को बाहर से साफ करेंगे। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि इलाज का दूसरा फॉर्म होता है किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
1: तो डायलिसिस के क्या कोई भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं या वो एक ही तरह की होती है, कैसे करते हैं डायलिसिस?
2: ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने डॉक्टर गीतिका जी। डायलिसिस जैसा कि मैंने कहा वो प्रक्रिया है जिसमें हम मरीज के खून को साफ करते हैं। डायलिसिस दो प्रकार की होती है, हीमोडायलिसिस यानी खून वाली डायलिसिस और दूसरे प्रकार की पेरिटोनियल डायलिसिस, वो डायलिसिस जिसको पेट के थ्रू पानी भर के किया जा सकता है।
1: क्या आप हीमोडायलिसिस के बारे में कुछ और विस्तार से बता सकते हैं?
2: हीमोडायलिसिस जैसे कि मैंने कहा ब्लड का डायलिसिस है, इसमें हम शरीर से खून बाहर निकालकर उसको एक डायलिसिस मशीन यानी आर्टिफिशियल किडनी, एक डायलाइजर, एक फिल्टर के जरिए हम साफ कर देते हैं और खून को दूसरी साइड से वापस शरीर के अंदर डाल देते हैं अथवा शरीर में नसों को जोड़कर एवी फिस्टुला बना दिया जाता है, जहाँ पर दो सुइयां लगा के हम एक तरफ से खून को निकाल के मशीन से साफ करके दूसरी सुई से वापस पेशेंट के अंदर यानी मरीज के अंदर रिटर्न कर देते हैं। इसका नाम होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए आपको किसी प्रकार की हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी में यानी किसी अस्पताल किसी क्लिनिक में जाना होगा। ये कम से कम हफ्ते में दो बार बट आइडियली हफ्ते में तीन बार किया जाता है। एक सेशन 3 से 4 घंटा लंबा होता है। डायलिसिस के साथ सिर्फ खून साफ होगा लेकिन गुर्दों के बाकी कार्य जैसे खून बनाना कैल्शियम फॉस्फोरस को संभालना उनके लिए भी आपको साथ साथ अन्य दवाएं लेते रहना होगा।
1: डॉक्टर साहब अब हमने बात किया गुर्दा और गुर्दा रोग के बारे में डायलिसिस के बारे में पर आपने ये भी कहा था कि एक और जो मुमकिन इलाज है वो होता है गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती कब है?
2: कोई भी मरीज जिसकी किडनीज यानी गुर्दे पर जोर आ चुका है यानी जिनको चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 हो चुका है, जिनके शरीर में गुर्दे अपने काम करने की क्षमता स्थायी रूप से खो चुके हैं, उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आजीवन डायलिसिस या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण। अधिकतर तौर पर मैं हंस के कहता हूँ लोग पूछते हैं सर गुर्दा प्रत्यारोपण कराने का कौन सा समय सही है, तो जवाब है आज। यानी कि सारे समय सही हैं अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 या उससे आगे आप डायलिसिस पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी रिसर्च में ऐसा दिखाया गया है कि अगर आप गुर्दा प्रत्यारोपण डायलिसिस शुरू करने से थोड़ा पहले करवा लें तो वो मरीजों का सबसे बेहतर लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय में देखें तो उनके रिजल्ट सबसे अच्छे रहते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत उनको है जिनको CKD स्टेज 5 यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 जिसमें आपके गुर्दों की मिलाकर क्षमता 15% से कम की रह गई है उनको जरूरत होती है।
1: आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के गुर्दा प्रत्यारोपण अगर किसी को कराना है तो वो तुरंत ही करा लेना चाहिए, तो डायलिसिस से क्या गुर्दा प्रत्यारोपण बेहतर होता है और अगर बेहतर होता है तो क्यों?
2: जी हाँ डॉक्टर कृतिका, जैसे कि मैंने कहा अगर किसी को CKD स्टेज 5 यानी चिरकारी वृक्क रोग स्टेज 5 है तो उनको गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में सोचना चाहिए। गुर्दे के प्रत्यारोपण के कई लाभ है। नंबर 1 ये डायलिसिस की आवश्यकता को समाप्त करता है। अगर आपका शुरू नहीं हुआ है तो फ्यूचर में नहीं जरूरत लगेगी। अगर आप ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं तो आपका डायलिसिस बंद किया जा सकता है। डायलिसिस के साथ होने वाले लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आपकी रोजमर्रा आपके दिनचर्या में जो बदलाव आते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस के लिए जाना, वो सब चीजें चली जाती हैं, तो इससे जीवन की गुर्दा प्रत्यारोपण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। तीसरा फायदा अगर आप देखें तो आपके समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आता है। गुर्दे की खराबी का सफलतापूर्वक उपचार हो सकता है। आपके आहार पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी चिरकारी वृक्क रोग के दौरान और डायलिसिस के दौरान वो सब नहीं रहते हैं। आप तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स जितना सेवन करना चाहें उतना ले सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी रिसर्च स्टडीज में ये दिखाया गया है कि 1-1.5 साल के बाद जितने पैसे एक बार गुर्दा प्रत्यारोपण में लग जाते हैं 1-1.5 साल के बाद आपके पैसे की अथवा धन की भी बचत होती है। तो ना सिर्फ आप केवल एक बेहतर स्वास्थ्य एक बेहतर जीवन की गुणवत्ता एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही साथ ये कुछ हद तक आपके धन की समय की भी बचत करेगा।
1: और इससे जुड़े जो जोखिम है अगर आप उनके बारे में भी थोड़ा श्रोताओं को बताना चाहें।
2: जैसे आपने कहा कि कोई भी मेडिकल इलाज जोखिम रहित नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर मरीज को गुर्दे का प्रत्यारोपण कराना चाहिए। बहुत सारी जांचों के बाद एकदम डिटेल्ड हम इवैल्यूएशन करने के बाद ही मरीजों को गुर्दा प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे जोखिम जुड़े हैं। अगर आप तकनीकी जटिलताएं देखें तो किसी भी बड़े ऑपरेशन की तरह एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाओं का रिएक्शन, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, ब्लीडिंग यानी खून जाना और हार्ट पे यानी दिल पे स्ट्रेस पड़ना, ये सब किसी भी एक बड़े ऑपरेशन के प्रकार, ये तो ऑपरेशन के समय के रिस्क हैं। साथ ही साथ गुर्दा प्रत्यारोपण कराने के बाद आपको आजीवन कुछ दवाइयां लेनी होती हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिनसे आपके शरीर के इम्यूनिटी की जो होती है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा जोखिम है कि इम्यूनिटी कम करने से शरीर में संक्रमण यानी इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो किसी भी गुर्दा प्रत्यारोपण का मरीज और नॉर्मल आदमी के कंपेयर में संक्रमण के लिए वो ज्यादा उसका शरीर कमजोर है। दूसरी चीज जो मैंने नाम लिया रिजेक्शन यानी अस्वीकरण, यानी कि जो हमारा शरीर है वो नए गुर्दे को बाहर से आते हुए को एक फॉरेन बॉडी यानी एक बाहर की चीज समझकर उसको स्वीकार ना करने की पूरी कोशिश करता है, इसको रिजेक्शन कहते हैं। पूरी दवाइयों और सावधानी के बाद भी रिजेक्शन का डर बना रहता है।
1: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सागर गुप्ता से। डॉक्टर साहब, जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से आहार विहार या ऐसा कौन सा रोजमर्रा के जीवन में हमें आचरण करना चाहिए जिससे कि गुर्दा रोग से बचा जा सके।
2: तो अगर मैं कहूं कि गुर्दा रोग यानी चिरकारी वृक्क रोग से कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले उनके कारण समझिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, संक्रमण, पेन किलर वाली दवाइयां खाना। अगर आपको इससे बचना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी अपने स्वास्थ्य में आपको रोजमर्रा में चेंजेस लाने होंगे। आप अच्छा खाना खाइए, फल सब्जियां, फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाइए और मीठा और तला हुआ कम रखें। नंबर दो, रेगुलर वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। आप नियम बांध लीजिए कि मुझे कम से कम दिन में आधा घंटा वॉक करनी है, चलना है या फिर दौड़ना है, हफ्ते में सातों दिन नहीं तो कम से कम पांच दिन। नंबर तीन मैं कहूंगा स्ट्रेस कम करिए, उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर आप तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उसे बंद करिए। उसके बाद अगर आपको बीपी या शुगर की समस्या है तो उनको कंट्रोल में रखिए और बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई एंटीबायोटिक यानी संक्रमण के इलाज या पेन किलर दवाएं लंबे समय तक ना लेते रहें। इन सब चीजों को करके हम गुर्दे में होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी जीवन, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
1: ये सभी जानकारी हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी पता चली है। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण।

The Organ, Organ Receiving and Giving Awareness Network, Parashar Foundation तथा Radio Station, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहाँ सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दोस्तों हाजिर हूँ मैं सरिता आपके साथ और लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों, वो सदाबहार रंग में रेट्रो गाने जो वाकई में ही मोती बन चुके हैं, वो इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 8 बजे। और दोस्तों, आप जानते हैं मैं अकेली नहीं होती इस कार्यक्रम में, मेरे साथ होते हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स। तो चलिए पहले उनका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र नांगिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, और मेरे सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। और मेरे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी भी। सर, आपका भी स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला कार्यक्रम यानी कि पिछले सप्ताह शनिवार को 8 बजे कार्यक्रम सुना होगी जो बन गए मोती, तो आपको मालूम होगा कि हमारा टॉपिक था चल चलो चले चलना। और हमने वादा किया था सेम टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि गाने बहुत ही सारे हैं। तो पार्ट टू आज लेकर आए हैं हम, और आज इसी टॉपिक के साथ बहुत बेहतरीन नगमे आपको और सुनाएंगे। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और हमेशा की तरह अपनी फरमाइश भी जरूर भेजिए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं जिसके मुखड़े में चल चलो चले चलना चली इस तरह का कोई शब्द आया हो। तो हमारा नंबर वही है 8010781078। तो चलिए बहुत ही प्यारे गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और ये फिल्म कौन सी है, गाना कौन सा है, सारी जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र जी।
2: जी, जैसा कि सरिता जी ने बताया कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही लुभावना, बहुत ही छेड़छाड़ भरा गीत हम लेने वाले हैं। फिल्म है बेटी बेटे 1964। ये गीत फिल्माया गया है हमारे बहुत ही मशहूर कॉमेडियन महमूद के ऊपर, और उनका साथ दे रही हैं शोभा खोटे
1: जी।
2: और फिल्म में अन्य कलाकार हैं सुनील दत्त, बी सरोजा देवी, जमुना जयंत, महमूद आगा व अन्य कलाकार। आवाजें हैं आशा भोंसले के साथ रफी साहब की, तो मेरा साथ देंगी सरिता जी, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन है। ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है।
4: कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो, मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो।
2: ओ चांद सी उजली हसीना,

0: वाह वाह, चुलबुला सा मस्ती भरा गीत, आप दोनों ने भी इसे मस्ती भरे अंदाज में ही पेश किया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी दोस्तों, वाकई में बहुत ही प्यारा ये गाना है, आप इसे जरूर एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। और दोस्तों अपने रिक्वेस्ट जरूर भेजिए हमें 8010781078 पर। आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना फील।

0: दुश्मन हो।
1: जी श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस बहुत ही चुलबुले गीत के बाद, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, और आज का टॉपिक है चल चलो चलना। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये इस टॉपिक का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 हम पिछले शनिवार को आपको सुना चुके हैं, आपकी बहुत सी फरमाइश आई, आपके बहुत से सुझाव आए, और हमें पता लगा कि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा। तो चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। अगला गीत कौन सा है, क्या है, सारी जानकारी हमारे को दे रहे हैं प्रदीप जी।
2: जी, ये फिल्म है दिल तेरा दीवाना, 1962 की फिल्म है। शम्मी कपूर माला सिन्हा की जोड़ी है
1: जी।
2: इनकी एक फिल्म इससे पहले आ चुकी थी उजाला, उसमें भी बहुत अच्छे गीत थे, और रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है
1: जी।

0: प्रदीप जी, बहुत अच्छे से गीत को पेश किया आपने।
1: थैंक यू जी, थैंक यू
2: जी। दोस्तों, दिल तेरा दीवाना फिल्म से ही बहुत ही बेहतरीन नगमा, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर। आज का टॉपिक चल चलो चले, और दोस्तों हम जो हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में बने रहेंगे और भी बेहतरीन नगमे आपको सुनाएंगे आज के टॉपिक के साथ। आप भी अपने रिक्वेस्ट जल्दी से भेजिए 8010781078, ये हमारा नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेज सकते हैं। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए दिल तेरा दीवाना फिल्म से, और हम लौट कर आते हैं इस नगमे के बाद। फील गुड,
0: फील लाइफ।

0: देता।
1: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर, मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में आज टॉपिक है चल चलो चले और पार्ट टू है, एपिसोड टू है क्योंकि बहुत सारे गाने हैं और पार्ट थ्री पार्ट फोर भी मे बी हम कर सकते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट भी आ रही हैं और हमारी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। तो चलिए आप चलते हैं अगले गाने की तरफ और इस गाने की आई है रिक्वेस्ट, मैसेज किया है मुझे राजीव जी ने और राजीव जी गाना सुनना चाहते हैं चल अकेला चल अकेला, बहुत ही प्यारा गाना है। तो चलिए बाकी की जानकारी हमें दे देते हैं नांगिया जी।
2: जी बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आई है, बहुत ही मैसेज देने वाला सॉन्ग है, दार्शनिक सॉन्ग है। फिल्म का नाम है संबंध 1969 और फिल्म में काम करने वाले कलाकारों का नाम है प्रदीप कुमार, अनीता दत्त, देव मुखर्जी, अचला सचदेव, सुंदर, नाना पलसीकर व अन्य कलाकार। ओपी नैयर ने गीत की धुन तैयार की है, कवि प्रदीप ने बोल लिखे हैं और मुकेश की आवाज में ये गीत है।

0: दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
1: बहुत ही मार्मिक गीत, बहुत ही मोटिवेशनल गीत जिसे आपने खूबसूरत अंदाज में पेश किया।
0: जी धन्यवाद सर
2: जी।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारे गाना संबंध फिल्म से राजीव जी की रिक्वेस्ट पर आप इसे एंजॉय कीजिए और आगे भी बहुत सारे गाने हैं, बहुत प्यारे गाने हैं जो आपको सुनाएंगे। रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो गई है तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। मेरे साथ हैं शैलेंद्र नांगिया जी, प्रदीप जी और आज का टॉपिक है चल चलो चलें चलना। सुनते रहिए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती। फील गुड,
1: फील लाइव।

0: जी दोस्तों, स्वागत है इस बहुत ही प्यारे गाने को लेकर। अब हम आ गए हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे की है प्रेरणा जी ने, और प्रेरणा जी के गाना सुनना चाहती हैं और मैं अपने आपको रोक ही नहीं पाई। मैंने आपको एक लाइन तो गा के सुना दी है, लेकिन आगे का गाना हम आपको जरूर सुनाएंगे। पहले लेते हैं जानकारी प्रदीप जी से।
1: जी, एक बहुत ही बेहतरीन गीत, फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और जोड़ी है सदाबहार जोड़ी शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की, जिन्होंने लगभग 9-10 फिल्मों में एक साथ काम किया है।
2: जी, वेरी गुड।
1: फिल्मों के नाम मैं जरूर बताऊंगा, अनुपमा 1966 की फिल्म, देवर 1966 की फिल्म, सत्यकाम और यकीन 1969 में आई ये दोनों, फिर चुपके चुपके 1975 की फिल्म, एक महल हो सपनों का 1975, और सनी फिल्म आई है इनकी 1984 में, और चैताली और देवदास फिल्मों में भी इस जोड़ी ने काम किया है।
0: तो
1: सफल जोड़ी और हिट जोड़ी, और ये गीत भी बहुत ही बेहतरीन है, मेरा मनपसंद गीत है, और सरिता जी इसको स्टार्ट करेंगी।

0: पता चले।
1: जी बहुत खूब सरिता जी, प्रदीप जी, बहुत अच्छे से आपने गीत पेश किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा गाना। प्रेरणा जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की। दोस्तों आप भी अपने रिक्वेस्ट जरूर भेजिए हमें। इसी तरह आप अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं आज का टॉपिक चल चलो चलें चलना के साथ, तो नंबर हमारा वही है 8010781078। इस नंबर पर आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये गाना आप इंजॉय कीजिए रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। फील गुड,
1: फील लाइव,
0: चलो।

0: बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। आज पार्ट टू लेकर आए हैं टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रंग में हैं, बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली रेट्रो गाने जो इस टॉपिक के साथ हम आपको सुना सकते हैं और सुनाएंगे ज़रूर। तो चलिए अब बिना देर के आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारे गाने की आई है रिक्वेस्ट। मैसेज किया है मुझे रेखा जी ने और रेखा जी गाना सुनना चाहती हैं राजेश खन्ना जी पर फिल्माया। वो कहती हैं राजेश जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं और वो गाना सुनना चाहती हैं चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो चलिए इस गाने की जानकारी ले लेते हैं हम नागिया जी से।
1: जी सरिता जी, राजेश खन्ना जी न केवल लाखों करोड़ों दिलों के चहेते एक्टर हैं बल्कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार भी हैं।
0: बिल्कुल जी,
1: और ये भी एक मानने की बात है कि 1969 में इन्होंने पदार्पण किया। पदार्पण तो नहीं कहेंगे, इनकी जो हिट फिल्म हुई वो थी आराधना। और उस फिल्म में जो गीत आए थे उनमें कुछ गीत किशोर दा ने गाए थे, कुछ गीत रफ़ी साहब ने गाए थे। तो किशोर दा के गाए गीत बहुत पसंद किए गए और उसके बाद से इनकी जोड़ी मतलब किशोर और राजेश की जोड़ी खूब चली और कई फिल्मों में इनके गीत आए।
0: बिल्कुल,
1: ये भी फिल्म उन्हीं में से एक है। इस फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी 1972। पर्दे पर राजेश खन्ना के साथ तनुजा, सुजीत कुमार, बिंदु, के एन सिंह, हेलेन, उत्पल दत्त, राजेंद्र नाथ, नासिर हुसैन व अन्य कलाकार, आर डी बर्मन की मधुर धुन, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और किशोरदा की आवाज
0: जी।
1: चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए।

हराने लिए, वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी

0: तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
1: इस फिल्म में राजेश खन्ना कार में लॉन्ग ड्राइव पर चले जा रहे हैं, किसी की धुन में, क्या अपनी प्रेमिका की धुन में, और बहुत ही खूबसूरत इसमें गीत थे और राजेश खन्ना तनुजा की जोड़ी भी खूब जमी थी और आपने इस गीत को बेहतरीन अंदाज में गाया।
0: जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना, मस्ती भरा ये गाना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, और आप भी मस्ती भरी धुन में इस गाने को एंजॉय कीजिए और ज़रूर लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जीवन के मोती में। और भी कुछ गानों का सफ़र आज तय करेंगे इसी टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ, लेकिन फिलहाल ये गाना मेरे जीवन साथी फिल्म से आप सभी के लिए, फील गुड
1: फील लाइव।

0: जी श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और दोस्तों, चलते चलते अब हम चलते हैं अगले गाने पर। और अगला गाना भी बहुत ही फेमस गाना जो हम लेने वाले हैं आज की प्लेलिस्ट में, फिल्म है हसीना मान जाएगी, चले थे साथ मिलकर। दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना है, हम तो आपके साथ मिलकर चल ही रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। आप भी अपना प्यार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजते रहिए 8010781078 पर। और आप हमारे इस कार्यक्रम को रेडियो मानव रचना की एप्लीकेशन पर भी इंजॉय कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें रेडियो मानव रचना 107.8, और इन बेहतरीन कार्यक्रमों को आप उस पर भी सुन सकते हैं देश के किसी भी कोने में। तो चलिए चलते हैं अगले गाने की तरफ और जानकारी के लिए प्रदीप जी के पास।
1: जी, ये फिल्म है हसीना मान जाएगी, 1969 की फिल्म है। इस जोड़ी की दो फिल्में आई, दूसरी फिल्म भी 1969 की ही है, एक श्रीमान एक श्रीमती।
0: जी,
1: तो शशि कपूर बबीता पर पिक्चराइज ये सॉन्ग बहुत ही फेमस और बहुत ही हिट रहा है। पियानो पर वो गाते हैं, रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत है, अख्तर रोमानी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत है।
0: जी,
1: चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले

0: चले थे साथ मिलके।
1: जी प्रदीप जी, बहुत अच्छे से आपने गीत को पेश किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू
3: जी। दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, समय समाप्ति की ओर जाता है, तो हमें लगता है हो अभी तो कितने गाने रह गए हैं। तो चलिए अगला एपिसोड भी लगता है तैयार जरूर करेंगे हम इसी टॉपिक के साथ। लेकिन फिलहाल ये गाना आप इंजॉय कीजिए। रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती आप सुन रहे हैं, और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना। फील गुड,
0: फील लाइव।

0: इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों वाकई में ही ये सदाबहार नगमे हैं, इनको आज भी जब हम सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं तो उतना ही आनंद आता है। और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ क्योंकि रेट्रो जो है वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। कहने को ये पुराने गाने हैं लेकिन आज भी उतने ही नए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारे गाने की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, मैसेज किया है मुझे लक्ष्मी जी ने, और लक्ष्मी जी गाना सुनना चाहती हैं। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं ये बता रहे हैं हमें नांगिया जी।
1: जी अब जो गीत हम लेकर आए हैं सरिता जी, हमारे श्रोता की फरमाइश पर, ये गीत है फिल्म फेयर अवार्डेड सॉन्ग है, राग कैफी पर आधारित ये गीत है। आवाज दी है इसको येसुदास ने, बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने और धुन तैयार की है उषा खन्ना ने। फिल्म है दादा 1979 और फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, जगदीप, अमजद खान, जीवन, रजा मुराद व अन्य कलाकार। और गीत है दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा।

ये दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब

0: दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
1: विरह का बाखूबी चित्रण किया गया है इस गीत में और आपने बाखूबी इस गीत को गाया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी दोस्तों, वाकई में ही बहुत ही प्यारा गाना और काफी फेमस ये गाना दादा फिल्म से, आज भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं जब किसी का दिल टूट जाता है। लेकिन फिलहाल हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए, कुछ और गानों का सफर तय करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की जो बन गए मोती आप सुन रहे हैं और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना, फील गुड
1: फील लाइव।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती, और वाक्य में ही मोती नुमा ये गाने हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों आज का टॉपिक है चल चलो चलें चलना, और पार्ट टू आज हम कर रहे हैं। और अगला गाना जो है उसकी भी आई है रिक्वेस्ट, मैसेज किया है मुझे मित्तल जी ने। एके मित्तल जी गाना सुनना चाहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, बहुत प्यारा गाना है। तो चलिए बाकी की जानकारी ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी फिल्म है सन्यासी, मनोज कुमार हेमा मालिनी की जोड़ी कई फिल्मों में आई, जिसमें 10 नंबरी भी है, क्रांति भी है और सन्यासी जिस फिल्म का गीत हम सुनाने जा रहे हैं। तो सभी में मनोज कुमार की जोड़ी इनके साथ खूब जमी है। हेमा और मनोज की इस फिल्म में लता और मुकेश का गाया हुआ ये गीत है। विश्वेश्वर शर्मा के बोल हैं और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है
0: जी।
1: और सरिता जी भी इसमें मेरा साथ देंगी, बल्कि वो स्टार्ट करेंगी।
0: चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर

0: साथ साथ खनकाएंगे।
1: क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला।

0: प्रदीप जी, सरिता जी, ये दोनों ने मिलकर इस ड्यूएट गीत का बहुत ही अच्छे से पेश किया।
1: जी धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: जी तो दोस्तों, सन्यासी फिल्म से गाना आप इस एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर। और वाकई में ही जैसे कि प्रदीप जी ने कहा, बहुत ही अच्छी जोड़ी जो है यहाँ पर मनोज जी की और हेमा जी की रही थी। फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और अब एक अंतिम गाना और सुनाएंगे आपको, और वो गाना भी बहुत ही अच्छा है। और आप भी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना। Feel good.
2: Feel nice.

0: जी श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और आज आप सुन रहे हैं पार्ट टू, टॉपिक है चल चलो चलना। और इस कड़ी में अब आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत हम ले रहे हैं, बहुत ही चुलबुला, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मनचला गीत। फिल्म है आन मिलो सजना 1971। फिल्म में जिन कलाकारों ने काम किया पहले उनके नाम देख लेते हैं, राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, जूनियर महमूद, अरुणा ईरानी, सुजीत कुमार व अन्य कलाकार। गीत को आवाजें दी हैं किशोर दा के साथ लता दी ने, और मेरे साथ सुर मिला रही हैं सरिता जी।
1: जी।
0: गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मी प्यारे ने।
1: जी। अच्छा तो हम चलते हैं,
0: फिर कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे।
0: जुमे रात को?
1: हाँ हाँ आधी रात को।
0: कहाँ?
1: वहीं

0: देखो तो घड़ी,
1: ओहो मेरी तो घड़ी बंद है,
0: तेरी ये अदा मुझे पसंद है।
1: देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी।
0: तो आओ पास बैठे पल दो पल,
1: आज नहीं कल,
0: क्यों क्यों
1: आज नहीं कल,
0: ये तो एक बहाना है,
1: वापस घर भी जाना है।
0: ओहो कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं।
1: टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं,
0: फिर कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे।
0: कल मिलो या परसों?
1: परसों नहीं, नरसों।
0: कहाँ?
1: यहीं, यहाँ कोई आता जाता।

0: बहुत ही चुलबुला नोकझोंक भरा रोमांटिक गीत जो पर्दे पर भी बहुत अच्छा लगा और आप दोनों ने आज इसे बेहतरीन बहुत ही बखूबी पेश किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर
2: जी। तो दोस्तों इसी के साथ अच्छा तो हम चलते हैं। जी हाँ हम भी चलते हैं, आपको इन बेहतरीन नगमों के साथ छोड़कर जा रहे हैं और अगले हफ्ते फिर से आएंगे सेम टॉपिक के साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा गाने बहुत सारे हैं तो पार्ट 3 भी आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे अगले शनिवार को ठीक 8 बजे। आप ज़रूर सुनेगा और भी बेहतरीन नगमे आपके लिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नागे जी प्रदीप जी आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने बेहतरीन नगमे हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए।
1: जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रेडियो मानव रचना का और मेरी पूरी टीम का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अब तक चलो टॉपिक के ऊपर 2 एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन एक गीत मेरे जहन में आ रहा है जो शायद हम ओरिजिनल ट्रैक पे नहीं सुना पाए। उसके बोल और उसका मुखड़ा इस तरह से है
2: जी।

0: बाय। मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन
1: जी।
0: और जाने से पहले आज का सुविचार, वो मींस ऊपर वाला, वो दे दे तो शुक्र है उसका, ना दे तो मलाल नहीं, उसके फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर सवाल नहीं।
1: जी बिल्कुल।
2: और मैं भी एक शेर से चलने पर, एक शेर है जो शायद आपको पसंद आएगा, कि चलते चलते हमसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने।
0: क्या बात है, क्या बात।
2: इसके साथ ही मैं अपनी सहयोगी टीम का, रेडियो मानव रचना की पूरी टीम का और श्रोताओं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बखूबी हमें सुनते हैं, सराहते हैं और अपनी पसंद भी भेजते हैं, तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।
1: जी तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं सुविचारों के साथ आप हमें दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती चल टॉपिक के साथ और भी बेहतरीन ढंग में आपको सुनाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड,
0: फील लाइव।
3: अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हां, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए हर हफ्ते। और यहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ से हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है, जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपनी लाइफ की प्रिंसिपल के दम पर दुनिया के सामने एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिनका नाम हमने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, और शायद हर साल 2 अक्टूबर को भी हम उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या कभी हमने उनकी जर्नी को रियली समझने की कोशिश की है? नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, और दुनिया ने उन्हें प्यार से कहा महात्मा गांधी। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गांधी जी जब पैदा हुए थे तब किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक पूरे देश के फ्रीडम मूवमेंट का एक इतना इम्पोर्टेंट फेस बन जाएगा। लेकिन उनकी जर्नी किसी शॉर्टकट की कहानी नहीं थी, इसमें कन्फ्यूजन भी था, स्ट्रगल्स भी थे, फेलियर्स भी थे, और खुद को समझने के लिए एक लंबा प्रोसेस भी था। गांधी जी का जन्म

2 अक्टूबर को हुआ। 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके फादर करमचंद गांधी राजकोट और कुछ अन्य प्रिंसली स्टेट में दीवान के पोजीशन पर रहे और उनकी मदर पुतलीबाई रिलीजियस और डिसिप्लिन नेचर की वुमेन थी। गांधी जी की पर्सनैलिटी और उनकी मदर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट बने। लेकिन गांधी जी बचपन से ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट या फिर फियरलेस लीडर नहीं थे। वो काफी शाय नेचर के थे। पब्लिक में बोलने में हेजिटेशन भी होती थी कई बार। मतलब जिस इंसान ने आगे चलकर लाखों लोगों को एड्रेस किया, उनके अंदर भी कभी स्टेज फियर और हेजिटेशन हुआ करता था। और ये चीज उनकी स्टोरी को रिलेटेबल भी बनाती है, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर स्टार्टिंग से ही सारी क्वालिटीज प्रेजेंट हो। सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें और धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले। गांधी जी की लाइफ हमें स्टार्टिंग से ही एक सिंपल सा लेसन देती है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी जर्नी में क्या सीखते हैं और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी की जर्नी में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, एक ऐसे फेस जो उनकी सोच को कम्प्लीटली चेंज करने वाला था। तो दोस्तों अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं बातों के साथ गाने भी। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, इसके बाद जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें। चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा। और हम बात कर रहे हैं आज महात्मा गांधी जी की, एक ऐसे इंसान की, उनकी जर्नी की जिन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। और पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी का जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, एक सिंपल, एक शाय और एक डिसिप्लिन लड़के का, और जो कि आगे चलकर एक पूरे मोमेंट के इम्पोर्टेंट फेज बनने वाले थे। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अब शुरू होती है। गांधी जी ने अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन जाने का डिसीजन लिया। ये हुआ 1888 में, वो लंदन गए और वहाँ लॉ की पढ़ाई शुरू की। सोचिए, एक यंग लड़का जो अपने घर और फैमिली एनवायरनमेंट से दूर एक बिल्कुल नए कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। आजकल के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नई जगह एक्सप्लोर करनी है, नए पढ़ाई की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए। पर उस टाइम में ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मानी जाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों की सोच वैसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं टाइम के साथ में। लेकिन लंदन में उन्होंने सिर्फ लॉ की पढ़ाई नहीं करी है बल्कि अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है, उस पर भी काम किया है। उन्होंने इंग्लिश मैनर्स और पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोशिश की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और आइडियाज को समझा और ग्रेजुअली अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया। फिर आया टाइम 1891 जिसमें लॉ की पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद गांधी जी इंडिया वापस आए और बॉम्बे में लॉ प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ा कि कोर्ट में बोलने में उन्हें हेजिटेशन होती थी, उनका कॉन्फिडेंस अभी भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ था। एक यंग लॉयर के लिए ये ऑब्वियसली इजी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन गांधी जी की जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर उन्हें इंडिया से बाहर ले गया। फिर आया साल 1893 जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक लीगल केस के सिलसिले में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और बस यहीं से उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी जी रेकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जहां पर सबसे फेमस इंसिडेंट में उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, और क्योंकि वो इंडियन थे। उस रात गांधी जी ने रेलवे स्टेशन पर बैठे रहे और उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में सीरियसली सोचा। वो वापस इंडिया भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएंगे जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। यहीं से एक लॉयर की जर्नी धीरे धीरे एक सोशल रिफॉर्मर और लीडर की जर्नी में बदलने लगी। दोस्तों, गांधी जी की लाइफ का ये इम्पोर्टेंट मोमेंट हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन भी देता है कि कभी कभी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ही हमें अपने रियल पर्पस से मिलाता है, हमें अपना रियल पर्पस समझाता है। प्रॉब्लम से बचना इजी हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम को समझना और उसके अगेंस्ट पीसफुली स्टैंड लेना एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ मांगता है आपसे। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसी स्ट्रेंथ को डेवलप करना शुरू किया था। लेकिन एक सवाल ये था कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ेंगे कैसे, क्या वॉयलेंस उनका आंसर होगा या फिर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ चूज करेंगे। इसी सवाल का आंसर गांधी जी के सबसे पावरफुल फिलॉसफी को जन्म देने वाला था। इस पर भी बात करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं जिनकी जर्नी की, उनका नाम है महात्मा गांधी जी। जी हाँ, महात्मा गांधी की आज हम जर्नी की बात कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि साउथ अफ्रीका में कैसे गांधी जी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ट्रेन से बाहर निकाले जाने वाला इंसिडेंट उनके लिए सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट ही नहीं था, बल्कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इनजस्टिस का सामना करना है तो इसका तरीका क्या होना चाहिए। गांधी जी के पास गुस्सा करने का रीजन था, वो वॉयलेंस का रास्ता भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच को डेवलप किया, वो था सत्य और अहिंसा पर बेस्ड रेसिस्टेंस। एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली हर्ट ना करना नहीं था, बल्कि गांधी जी के लिए अहिंसा एक बॉर्डर प्रिंसिपल था। हेट्रेड और वॉयलेंस के बिना इनजस्टिस का सामना करना, और इसी के साथ आया सत्याग्रह। जी हाँ, सत्याग्रह का सिंपल मीनिंग है सही के लिए स्टैंड लेना, यानी कि गलत के सामने चुप रहना नहीं है, लेकिन अपनी फाइट को वॉयलेंस के थ्रू नहीं, सच्चाई और शांति के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू लड़ना है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियंस के राइट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, उन्होंने लोगों को यूनिट किया और पीसफुल प्रोटेस्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड को डेवलप किया। ये जर्नी इजी नहीं थी, उन्हें अरेस्ट को फेस करना पड़ा, ओपोजिशन मिला और क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू रखा। 1950 में गांधी जी इंडिया वापस आए। अब उनके पास साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था और इंडिया में उनकी पब्लिक लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। इंडिया में उनका पहला मेजर मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, और ये हुआ 1917 में। जी हाँ, बिहार के चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन और डिफिकल्ट कंडीशन का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी वहाँ गए, फार्मर से उनकी प्रॉब्लम को समझा और उनकी प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, और इसी एक्सपीरियंस ने गांधी जी को इंडियन पब्लिक की और ज्यादा करीब लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद माइल स्ट्रीक जैसे मूवमेंट में भी उन्होंने लीडरशिप दी। दोस्तों, ये गांधी जी की सक्सेस स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी स्पीचेस में ही नहीं थी, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो जो कहते थे उसे अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश भी करते थे। अब हम सक्सेस को अक्सर पोजीशन, मनी या फिर पॉपुलैरिटी या फिर फॉलोअर्स में मेजर करते हैं, लेकिन गांधी जी की जर्नी एक डिफरेंट आइडिया सामने रखती है। और सक्सेस का एक पार्ट ये भी है कि आप प्रेशर के टाइम में अपनी वैल्यूज को कितना होल्ड कर पाते हैं। गांधी जी की फिलॉसफी ने उन्हें एक लीडर बनाया, लेकिन उनकी पर्सनल डिसिप्लिन ने उस लीडरशिप को स्ट्रेंथ दी। और अब गांधी जी की जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाला था, जहां पर उनका लीडरशिप स्टाइल और मास मूवमेंट दोनों एक नए लेवल पर पहुंचने वाले थे। उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, उनकी जर्नी की, उनकी थिंकिंग की और उन लेसन की जो आज भी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं हम जैसे। और पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में जाना, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ नेचुरली आ जाता है कि गांधी जी के आइडियाज इतने लोगों तक कैसे पहुंचे, और आखिर उनके अंदर ऐसी क्या लीडरशिप क्वालिटी थी कि ऑर्डिनरी लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर था कि गांधी जी सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ से लीडरशिप दिखाते थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, उन्होंने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी और अननेसेसरी कंफर्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया। उनका सिंपल ड्रेस और सिंपल वे ऑफ लिविंग उनकी पब्लिक इमेज को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना देता है। लेकिन सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं था कि उनकी लाइफ ईजी थी। एक्चुअली उनकी सिंप्लिसिटी के पीछे स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन था। वो अपने थॉट्स और एक्शंस को रेगुलरली एग्जामिन करते थे, और उनकी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल था, और ये चीज एक पावरफुल लीडरशिप लेसन देती है। और अगर हम किसी टीम को लीड करना चाहते हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना इनफ नहीं होता है, बल्कि लोग तब ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब लीडर खुद भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। गांधी जी ने मोमेंट्स में ऑर्डिनरी पीपल को इन्वॉल्व किया, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन और डिफरेंट सेक्शंस के लोग फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट होने लगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे मास मूवमेंट में उनकी लीडरशिप का स्केल बहुत बड़ा हो गया था। 1930 का सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च किया था। उनके साथ लोग जुटते गए और मार्च में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडेंस का एक पावरफुल सिंबल बना दिया। सोचिए दोस्तों, एक सिंपल सा डेली यूज प्रोडक्ट सॉल्ट एक मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट का सिंबल बन गया। यहाँ पर हमें गांधी जी की लाइफ से लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि बड़ी बात को समझने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या फिर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी एक सिंपल सा आइडिया भी लोगों से कनेक्ट कर सकता है। और गांधी जी की लीडरशिप का दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कंसिस्टेंसी। जी हाँ, उन्होंने एक दिन में अपनी इमेज नहीं बनाई। ईयर्स ऑफ वर्क, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और पब्लिक एंगेजमेंट ने उनकी लीडरशिप को शेप किया। दोस्तों, सक्सेस में टैलेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी होती है। गांधी जी की जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि लीडर वो नहीं है जो सिर्फ सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो भी है जो लोगों को एक पर्पस के साथ कनेक्ट कर सके और खुद अपने प्रिंसिपल्स पर चलने की कोशिश करे। लेकिन फ्रीडम की ये जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। आगे गांधी जी को अरेस्ट, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट डिसीजंस का भी सामना करना पड़ा। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई उन लेसन की, जो सिर्फ हिस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी काम आ सकती है। अब तक हमने गांधी जी की जर्नी के कई इंपॉर्टेंट फेसेस को देखा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल, सत्याग्रह, इंडिया में उनके मूवमेंट्स, लीडरशिप और डिसिप्लिन। लेकिन अगर हम गांधी जी की स्टोरी को सिर्फ अचीवमेंट्स के थ्रू देखेंगे तो पिक्चर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि उनकी जर्नी में सेटबैक्स भी थे, अरेस्ट भी थे और डिसएग्रीमेंट्स भी थे और डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े थे। गांधी जी कई बार ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट किए गए और जेल भी गए, लेकिन जेल जाना उनकी पब्लिक जर्नी का एंड नहीं बना था। उनके मोमेंट्स के सामने भी चैलेंजेस आए और हर मोमेंट का रिजल्ट इमिडिएटली उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो कभी वॉयलेंस हुआ, और कभी गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट डिसीजन भी लिए हैं। और इन सब में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। जी हाँ, 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच वॉयलेंट क्लैश हुआ, जिसमें पुलिस पर्सनल की डेथ हुई। गांधी जी वॉयलेंस के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। इस डिसीजन पर उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई। अब दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग लाइफ लेसन भी है कि कभी कभी लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ते रहना नहीं होता है, बल्कि कभी कभी लीडर को अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉज लेना और डिफिकल्ट डिसीजन भी लेना पड़ता है। आगे चलकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक और मेजर फेस आया, वो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मास मूवमेंट को कॉल दिया और उनका फेमस मैसेज था डू और डाई। इसके तुरंत बाद गांधी जी और कई अदर लीडर्स को ब्रिटिश अथॉरिटी ने अरेस्ट कर लिया। सोचिए, एक मूवमेंट का कॉल देने के बाद लीडर खुद जेल में है, लेकिन मूवमेंट की एनर्जी सिर्फ एक इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बहुत सारे ऑर्डिनरी इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। यहाँ पर गांधी जी की लॉन्ग टर्म लीडरशिप का इम्पैक्ट समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था, उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल को भी मूवमेंट का पार्ट बनने की स्पेस दी थी। दोस्तों हमारी लाइफ में भी सेटबैक्स आते हैं, कभी कभी एग्जाम के रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, तो कभी करियर में अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, कभी किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिल जाता है। ऐसे मूवमेंट में गांधी जी की जर्नी एक सिंपल सा थॉट देती है, हमें एक देती है कि एक सेटबैक को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी मत बनने दो। फेलियर या डिफिकल्ट फेस जर्नी का एक चैप्टर हो सकता है, पूरी स्टोरी नहीं। गांधी जी की लाइफ में भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल्स ने उनकी जर्नी को आगे बढ़ाया, और अब फ्रीडम स्ट्रगल उस फाइनल फेस की तरफ बढ़ने लगा जहां पर इंडिया की इंडिपेंडेंस का ड्रीम रियलिटी के करीब आ रहा था। बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जर्नी के बारे में। और अब हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी की लाइफ की उस फेस में जहाँ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल अपने फाइनल स्टेज पर आ गई थी। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, सत्याग्रह को एक मेथड के रूप में यूज किया और मास मूवमेंट लीड किया, और कई बार अरेस्ट और क्रिटिसिज्म का सामना भी किया। अब सवाल था कि जिस फ्रीडम के लिए इतने सालों से स्ट्रगल चल रहा था वो दिन कब आएगा। और फिर आया वो दिन 15th of August 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंट का ये मोमेंट कम्प्लीटली सेलिब्रेटरी नहीं था। इंडिया के इंडिपेंडेंट के साथ ही पार्टीशन भी हुआ और देश के कई पार्ट में कम्युनल वॉयलेंस और डिस्प्लेसमेंट की ट्राइबल सिचुएशन भी क्रिएट हुई। जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहे थे तब गांधी जी उस वक्त कलकत्ता में, यानी कि प्रेजेंट डे पे कोलकाता में, कम्युनल हार्मोनी के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। उनका फोकस पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से ज्यादा उन लोगों पर था जो वॉयलेंस से अफेक्टेड थे। गांधी जी का मानना था कि फ्रीडम का रियल मीनिंग तब होगा जब ऑर्डिनरी पीपल अपने आप को सेफ और रिस्पेक्टेड फील कर सकेंगे, चाहे उनका रिलीजन या फिर कम्युनिटी कुछ भी हो। 1947 और 1948 के पीरियड में गांधी जी ने कम्युनल पीस के लिए बंगाल और दिल्ली में फास्ट भी किए और लोगों के बीच शांति के लिए अपील भी की। लेकिन उनकी लाइफ का फाइनल चैप्टर भी बहुत जल्दी आ गया। जी हाँ, फिर दिन आया 30th January 1948, जिसमें दिल्ली में गांधी जी की असेंसिनेशन कर दी गई। वो बिरला हाउस में प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे जब नथुराम गोडसे ने उन्हें शूट कर दिया। गांधी जी की डेथ के साथ एक इंडिविजुअल की लाइफ खत्म हुई, लेकिन उनके आइडियाज और उनकी लेगेसी दुनिया भर में डिसीजन का सब्जेक्ट बन गई। आज गांधी जी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा और डिस्कस किया जाता है। उनके पॉलिटिकल डिसीजन, मेथड्स और आइडियाज पर डिबेट भी होती है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ भी उनकी लाइफ ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट और 20th सेंचुरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला। और दोस्तों, यहीं से हम अपने सक्सेस मंत्र की तरफ आ जाते हैं, जहां पर गांधी जी की जर्नी हमें ये समझाती है कि सक्सेस को सिर्फ एक डेस्टिनेशन के रूप में देखना जरूरी नहीं है। एक पर्सन की जर्नी में लर्निंग, डिसिप्लिन, वैल्यूज, फेलियर्स, डिफिकल्ट डिसीजंस और सर्विस, सब कुछ सक्सेस के डेफिनेशन का पार्ट हो सकता है। गांधी जी एक ऑर्डिनरी यंग मैन के रूप में स्टार्ट हुए थे, उनके अंदर भी हेजिटेशन थी और फेलियर भी मिले हैं उन्हें। उन्होंने भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और अपनी थिंकिंग को कंटिन्यूसली इवॉल्व किया है। और शायद इसीलिए उनकी स्टोरी आज भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने रखती है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल होने के साथ अपनी वैल्यूज को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। फाइनल सेगमेंट में अब हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब वक्त है गांधी जी की पूरी जर्नी से कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल लेसन लेने का। जी हाँ, अब हम अपने आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, तो इनकी लाइफ से जो हमें लेसन मिले हैं उससे हम एक बार जान लेते हैं। गांधी जी की लाइफ हमें सबसे पहला मंत्रा जो देती है, नो योरसेल्फ। वो शुरुआत से कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी हेजिटेशन को एक्सेप्ट किया और ग्रेजुअली खुद पर काम करना शुरू किया। इसलिए अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है बल्कि ग्रोथ का पहला स्टेप है। और दूसरा मंत्र है, स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा सिर्फ वर्ड्स ही नहीं थे बल्कि उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो इन वैल्यूज को फॉलो करने की कोशिश करते थे। तीसरा मंत्र है डिसिप्लिन। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन रूटीन बताता है कि बड़े गोल सिर्फ ड्रीम्स से अचीव नहीं होते हैं बल्कि डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। चौथा मंत्र है लर्न फ्रॉम डिफिकल्टीज। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का डिफिकल्ट मोमेंट था, लेकिन इसी एक्सपीरियंस ने उनकी थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। हर प्रॉब्लम हमें कुछ नया सिखाती है। पांचवा मंत्र है, नेवर स्टॉप ट्राइंग। गांधी जी की जर्नी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। इयर्स ऑफ स्ट्रगल, मूवमेंट्स, क्रिटिसिज्म और अरेस्ट के बाद उनका इम्पैक्ट बिल्ड हुआ, इसलिए स्लो प्रोग्रेस को

0: क्लियर मत समझिएगा। और छठा मंत्र है लीड बाय एग्जांपल। गांधी जी सिर्फ दूसरों को प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि खुद भी उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट, सक्सेस बियॉन्ड योरसेल्फ। गांधी जी की लाइफ हमें यह याद दिलाती है कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट का नाम नहीं है, बल्कि अपने एफर्ट से सोसाइटी और दूसरों के लिए मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना भी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो गांधी जी की जर्नी से आज ये फाइनल थॉट जो हमें मिला है कि अपनी वैल्यूज को साथ लेकर चलना, डिफिकल्टीज से सीखना और कंसिस्टेंसी के साथ अपने पर्पस की तरफ बढ़ते रहना, यही एक मीनिंगफुल सक्सेस की फाउंडेशन हो सकती है। इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ, उनकी कहानी के साथ और उनके लाइफ के लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड,
1: इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव, ना

असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा दे।

बन के हम सन्यासी काम है चलते।

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1970 के बहुत चर्चित गीत के साथ, ओ मेरी जा मैंने कहा, ओ मेरी जा तूने सुना दिल ने। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, ये फिल्म थी द ट्रेन 1970 और मेरी जाम मैंने कहा ट्रेंड सेटिंग, आर डी बर्मन, आशा भोसले, आर डी बर्मन साहब का संगीत था और उनकी आवाज भी थी, आनंद बख्शी के बोल, अब बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही जो है वो चुलबुला और बड़ा ही मशहूर हुआ है ये गीत। और आज भी जो है वो जब डिस्को की बात आती है तो ये जो गीत है ये शीर्ष पे ही रहता है। हाँ, लेकिन हम कहाँ रहते हैं, हम बड़े सारी जगह पे रहते हैं, हम रहते हैं शोले में भी रहते हैं, जो मैं आपको सुना रहा था कि रिकॉर्डिंग क्या हो रही थी और उसके बाद हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा में राज बब्बर साहब की बात हो रही थी और फिर उसके बाद जो है वो कुछ हम जो है वो फिल्म ट्रिविया भी ले रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा जो है वो बंदोबस्त कम करें और उस तरीके से रहें कि भाई जो है ज़रा फोकस जो है वो हमको समझ में आए। तो फोकस समझ में आएगा जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा, इस बात को जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जब पिछली बार हम हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा, रूमी जाफरी साहब थैंक यू वेरी मच, उनका जब किस्सा हम आगे सुना रहे थे तो उसमें था कि राज बब्बर बताते हैं कि भाई रमेश सिप्पी साहब टैलेंट हंट वाले स्क्रीन टेस्ट देख चुके थे। मुशीर व्यास उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनको प्लेन का टिकट भेजा और बॉम्बे बुलाया। उस समय बॉम्बे था, अब तो मुंबई है, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे टू गोवा भी एक फिल्म थी, बॉम्बे 405 माइल्स भी एक फिल्म थी। अब उनकी बात भी जो है वो हम करेंगे, इनके गाने तो हम अपने कई शोज में सुना चुके हैं, लेकिन भाई अब इस टिकट के आने के बाद उनको, और जब उनको ठहराया गया 5-स्टार होटल में, तो उनको यकीन हो गया कि उन पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो इसका मतलब फिल्म मुझे मिलनी तय है। फिर फिल्म के मुताबिक जो है वो मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया, राज बब्बर साहब ये बताते हैं और रूमी जाफरी साहब जो है हमारे से ये जो लेख है वो साझा कर रहे हैं। और जो रस रंग के जो है वो सेक्शन में हमें मिला था, अब इस दौर के सबसे बड़े कैमरामैन द्वारका दिवेचा, जिन्होंने शोले शूट की थी, ने मेरा स्क्रीन टेस्ट शुरू किया। रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद, मुशीर व्यास, सबको मेरा काम बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे पास कर दिया। फिर मेरा टेस्ट दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब मेन रोल में थे और मुझे उनके बेटे के रूप में चुना गया था। दिलीप साहब ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे ओके कर दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे लगा अब लाइफ बन गई, मगर अफसोस किसी व्यावसायिक कारणों से मुझे नहीं लिया गया। इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े राइटर्स और दिलीप साहब जैसे कलाकार के साथ काम

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने कहा पिछली बार आपने दो झूठ का एक बड़ा बढ़िया सा गाना सुनाया था, छतरी ना खोल, एक और उसका गाना सुनाइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल नोटेड, इसमें देखते हैं। और फिर आपने कहा भाई हम आपको एक पजल देते हैं, राखी और हथकड़ी ऐसी एक फिल्म थी, उसका भी कोई गीत सुनाइए। इसका टाइटल जो सॉन्ग है वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ले सकते हैं इसलिए, लेकिन हाँ दूसरा जो है वो गीत बजा सकते हैं। फिर जोशीला थी, उसके भी कुछ गीत थे, सनम तेरी कसम, बड़ी सारी लिस्ट।

भेजिए आपने, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जो कर सकते थे शोले में वो कर रहे थे, उनको पता नहीं था रमेश जी को कि अभी क्या आने वाला है, और हम ये देख रहे थे कि भाई क्या आने वाला है। चलिए उस अध्याय पे भी जाते हैं, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, अनुपमा चोपड़ा जी की बेहतरीन किताब, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था, अब शोले में गब्बर की मौत, या कम से कम ये मूल शोले में ऐसा करते हैं जिसे रमेश ने शूट किया था, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था। अब ठाकुर गब्बर को अपने पैरों से मारता है, जूते पहनकर जो नौकर रामलाल ने तलवों में कील से लगाए होते हैं। निहत्ता ठाकुर पहले गब्बर की बाहों को कुचलता है, फिर वे आमने सामने खड़े होते हैं, दो निहत्ते योद्धा दो बराबर, और फिर ठाकुर गब्बर को ऐसा मारता है जैसे कि कोई जहरीला सांप हो। वो जब तक नहीं रुकता जब तक डकैत उसके जूते के नीचे खूनी जो है वो स्प्लैश ना देख ले, फिर वो टूट जाता है और रोता है। ये लंबे और जो है कठिन जो है वो दृश्यों में से एक है, जिसमें क्योंकि उसे जब वो रोता है तो उसको जीवन का मिशन पूरा होता महसूस होता है, और उसके बाद एक खालीपन का अनुभव होता है जिसको पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल है। ये एक पिरामिड जैसी जीत है, इसका बदला केवल नुकसान को जन्म देता है। अब केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को इस अंत से नफरत हो गई। बोर्ड के पास नियमों का एक लिखित सेट था, और देश में आपातकाल की स्थिति घोषित होने के साथ स्क्रीन पर जो दिखाया गया था उसे निर्देशित करने और नियंत्रित करने की इसकी शक्तियां जो है वो कई गुना बढ़ गई थी। यानी कि केंद्रीय सेंट्रल सेंसर बोर्ड जो है अब वो जो है वो इस दृश्य पे आपत्ति करने लगा था। बोर्ड ने इस सुझाव पर आपत्ति जताई कि एक पुलिस अधिकारी यहाँ, जबकि वो अब सेवा में नहीं है, कानून को अपने हाथों में लेगा और हत्या करेगा। अब उन्होंने फिल्म को बैलेटिक हिंसा जो उसमें दिखाई गई थी उस पर भी जो है वो आपत्ति जताई। ये ग्राफिक नहीं था, लेकिन इसे इतनी बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया था कि वास्तविक जो है वो जो उसका कोर है वो जो है वो प्रभाव छोड़ने लग गया था। दर्शकों ने ठाकुर की बाहों को कटा हुआ नहीं देखा, लेकिन गब्बर से तलवार उठाते हुए दृश्य जो है वो कट गया, जिसमें ठाकुर अपनी खाली शर्ट की आस्तीन फड़फड़ाते हुए खड़े हैं। अब हवा अविस्मरणीय थी, अब रमेश ने हिंसा को सौंदर्यपूर्ण और आकर्षक बना दिया था। यदि शोले पारित हो जाती है तो कम से कम फिल्मी निर्माताओं के लिए फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे, यानी कि शोले में अगर कटौती होती है तो भाई इसका तो भाई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले सिप्पी को इसका अंत बदलने के लिए कहा गया। अब रमेश भड़क गए, ये लगातार ऐसा था जैसे प्रतिभाशाली होने के लिए दंडित किया जा रहा था, पर हम जो है वो सोच रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। बड़ा ही जो है वो एक बड़ा दिलकश गीत है जो दो झूठ 1975 शंकर जय किशन, लिरिसिस्ट विश्वेश्वर शर्मा, चलो भूल जाएं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में है। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, फिर से आ गया मैसेज कि भाई वो जो आप जो इंटरव्यूज सुनाते हैं बिना का संगीत माला या गीत माला का, जो 1970 के आसपास के दशक का होता है, तो उसमें से कोई एक अच्छी झलकी जो है वो अगर आप सुना दें तो बड़े बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी टेक्निकल टीम से कहते हैं कि तुरंत ढूंढें और तुरंत जो है इस फरमाइश पे गौर किया जाए, क्योंकि आपकी बदौलत ही तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इतना जो है वो चर्चित है। और भाई हम आपकी बात कैसे जुटला सकते हैं, तो ये झलकी सुनते हैं और

0: ये तो आपको पता ही है कि ये गीत था फिल्म द बर्निंग ट्रेन का, जिसे डायरेक्ट किया था लाजवाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा के बड़े ही काबिल और मेहनती बेटे रवि चोपड़ा ने। बहरहाल इसी गीत पल दो पल का साथ हमारा के साथ, आइए बहनों भाइयों हम सर झुकाकर अजीम शायर साहिर लुधियानवी को फिर एक बार याद कर लें। साहिर के कलम ने भारत के बेशुमार टॉप के संगीतकारों की मधुर धुनों को और भी ज्यादा अमर बना दिया था। साहिर के बीसियों गीत रेडियो हिट परेड गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी पर बजे या फिर चोटी के आसपास बजे, और जो गीत हिट ना भी हुए उनका भी अंदाज निराला हुआ करता था और ख्याल बुलंद। यूं समझिए कि गीतों का एक अनमोल खजाना छोड़ गए साहिर हमारे लिए, और अक्टूबर 1980 में हमें अलविदा कह गए गोया अपनी ही एक पुरानी नज्म में ढलकर।
1: चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों।
0: जी हाँ दोस्तों, ये साहिर लुधियानवी साहब की अपनी आवाज थी एक असली मुशायरे से ली हुई, और इसे गीतमाला की छाव में के लिए हमें भेजी है पूना में रहने वाले मशहूर डॉक्टर और गीतमाला प्रेमी आनंद जोशी ने। भाई इससे अच्छी सलामी साहिल लुधियानवी के लिए क्या हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई। तो चलिए बहनों और भाइयों, हमने साहिर साहब को तो अलविदा कह दिया, लेकिन 1980 के गीतों को अलविदा कहने में अभी 7 ऊपर वाली पायदानों की झलकें बाकी हैं। ये देखिए फिल्म सुहाग का एक और गीत पायदान नंबर 7 पर आपके सामने है, एक सड़क का रूप धार कर, और इस पर सफर करने के लिए आपको मोटरसाइकिल पर बैठना होगा या तो अपने बिंदास यार अमिताभ के साथ या अपने जरा शर्मीले यार शशि कपूर के साथ।

वाह वाह वाह, क्या बात थी, और हमारे गुरु हैं भाई आमीन सयानी साहब। अब उनकी जो इंटरव्यूज हैं और जो उनकी जो बातें हैं उनके क्या कहने, लेकिन हाँ बड़ी जो है वो पशुपेश में पड़ गए थे जब राज बब्बर साहब को लगा कि भाई वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो राज बब्बर पिता को पढ़ने का बोलकर गए थे बड़े शहर, वहाँ करने लगे थे थिएटर, जब हमने आपको ये बात बताई थी। ये बात थी जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा, हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा, यहाँ तक हम पहुँच गए थे उसमें कि भाई अब वो राज बब्बर साहब को लगा था कि ये फिल्म उनको मिल जाएगी, और उन्होंने जो है वो दिलीप कुमार जी ने भी उनको जो है वो आशीर्वाद दे दिया था। अब उनको लगा था इतने बड़े राइटर्स दिलीप कुमार साहब, अब तो भाई उनका जो है वो बात बन जाएगी पूरी बिल्कुल, लेकिन जो है वो मौका हाथ से निकल गया क्योंकि वो व्यावसायिक कारणों से फिल्म बन नहीं पाई, और बोलते हैं मुझे इसका बहुत गम हुआ। अब इसी बात पर अकबर हैदराबादी का एक शेर याद आ रहा है, दिल दबा जाता है कितना आज गम के बार से, कैसी तन्हाई टपकती है दर ओ दीवार से। अब राज भाई बताते हैं कि मैं फिर दिल्ली आ गया और थिएटर करता रहा, फिर किस्मत ने उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक दी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर था और जिसके लिए प्रकाश मेहरा साहब दिल्ली आए थे, उन्होंने बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा मैं एक फिल्म में तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ, बॉम्बे आ जाओ वहाँ बात करेंगे। मैंने कहा 31 दिसंबर को नया साल नादिरा के साथ मनाकर 1 जनवरी को आपके पास नई जिंदगी शुरू करने आ जाता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बारे में तो जो है वो हम आपको अगले प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे, लेकिन हाँ बात जो हो रही है बड़ी सारी बात हो रही है, तो कुछ और बातें कर लेते हैं। तो ये फिल्म थी राखी और हथकड़ी, अच्छी नहीं सनम ये दिल लगी, ऐसे कुछ बोलते 1975 आरडी बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, आशा किशोर कुमार, और भाई बड़ा ही ट्रेंड सेटिंग गीत था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो बड़ी सारी बातें हुई हैं और बड़ी सारी बातें भी हुई हैं कि आगे क्या किया जाए, आगे क्या नहीं किया जाए, लेकिन शोले जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमने आपको बड़ा बेहतरीन गीत सुनाया था राखी और हथकड़ी का, तो आप लोगों ने कहा कि एक और चाहिए, तो एक और चाहिए। तो भाई मैंने अपनी टेक्निकल टीम से बोला कि भाई अब इसको थोड़ा सा ढूंढे, तो आजा आजा सनम, ये जो है ये गीत था आशा भोंसले, आरडी बर्मन का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी। भाई ये तो सुनना पड़ेगा, राखी और हथकड़ी 1975, इसको सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये देखिए ना, बड़ी ही मुसीबत में फंस गए थे रमेश सिप्पी साहब। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो क्रिएटिविटी का इतना बड़ा जो है वो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो भाई उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब रमेश जो है वो भड़क गए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में। फिल्म की हर बारीकियों पर सावधानी से उन्होंने विचार किया था और भाई अब एक एक जो फ्रेम था अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। बोर्ड सिर्फ कटौती के लिए नहीं कह रहा था, वो पूरी तरह से अलग निष्कर्ष के लिए पूछ रहा था। एक ऐसा अंत जिसमें पुलिस को ठाकुर को गब्बर को मारने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप करना था। ये तो अन्य फिल्मों में जैसा किया जाता है उसकी तरह हो जाता है और ये पैरोडी की तरह लग रहा था। अब इसमें मूल की कोई उदासीनता या त्रासदी नहीं थी। इतने कमज़ोर निष्कर्ष के साथ शोले अब रमेश की दृष्टि में जो है वो उतर नहीं रही थी। ये पूरी तरह से एक और फिल्म बन जाएगी, उन्होंने ये सोचा। अब आपातकाल के दृढ़तापूर्ण दमनकारी माहौल में मौलिक अधिकार मौजूद नहीं थे। इसका जो मतलब था कि भाई आपके पास ज़्यादा से नहीं था, क्योंकि उस समय आपातकाल जो है वो लगा हुआ था, न ही कलात्मक स्वतंत्रता थी। अब समझौता कोई विकल्प नहीं था, ये एकमात्र विकल्प था। लेकिन रमेश अड़ गया, उन्होंने अब मुकाबला करने के लिए 2 साल तक मेहनत नहीं की थी। ये अंत को बदलने वाला वो नहीं था। बोर्ड के विभिन्न स्तरों के साथ बैठकों की झड़ी लग गई। रमेश ने बोर्ड के सदस्यों के साथ तर्क करने की कोशिश की। उन्हें अपने स्वयं के तर्क में खामियों की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो जो अंत चाहते हैं, एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गब्बर की मांद में समय के साथ पहुंचते हैं, पुलिस बल को मूर्ख बना देगा। कि भाई अब वो गब्बर के वहां तक पहुंच गए, आखिर ये निडर पुलिस फोर्स फिल्म के माध्यम से अब तक कहाँ थी जब डकैत गांव की हत्या और लूटपाट कर रहे थे। भाई उन्होंने तर्क देना शुरू किया था। अब इसके अलावा इसमें फिल्म के पूरे आकार को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसे एक कॉमेडी यानी कि हास्यास्पद बना दिया। इसमें संजीव कुमार के सावधानीपूर्ण सूक्ष्म और समझदार प्रदर्शन का जो है मजाक उड़ाया जाएगा। अब उन्होंने इस तरीके से बोला, जिसे अंतिम विस्फोटक एपिफेनी की ओर से ले जाने के लिए सटीक रूप से बनाया गया था। कुछ मुलाकातों में रमेश ने कुछ ऐसा किया जो उनके लिए सबसे अस्वाभाविक था। उसने अपनी ऊंची आवाज की और उसके बाद क्या किया, अब ये किया कि भाई एक फिल्म थी, अब बड़ा ही दिलकश गीत था 1982, सनम तेरी कसम, शीशे के घरों में देखो, तो किशोर कुमार, आर डी बर्मन, गुलशन बावरा। अब इसको सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बड़ी सारी बातें हो रही हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो रही हैं। अब ये जो था कि भाई जो किस्सा था बड़ा ही चटपटा था, लेकिन हाँ इस किस्से को जो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे उस पे भी रहेंगे, यानी कि राज बब्बर साहब का जो जब एडिटिंग रूम बन गया था राज बब्बर का घर, ऐसा भी एक किस्सा था। नमक हलाल जैसी कुछ फिल्मों से हटाए जाने के बाद भी एक्टर ने नहीं मानी थी हार। ये जो है रूमी जाफरी साहब ने एक जो है उसका एक सेकेंड पार्ट जो है हमारे साथ शेयर किया, जो रसरंग में प्रसारित हुआ था। अब किस्से के हिस्से, किस्से के हिस्से के माध्यम से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले बार उन्होंने कहा कि मैंने राज बब्बर की बात की थी, मैंने बताया था कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए प्रकाश मेहरा साहब ने कैसे राज भाई को मुंबई बुलवा लिया। अब आगे का किस्सा जो है वो पढ़ते हैं। अब बॉम्बे पहुंचकर राज बब्बर दिए गए पते पर पहुंचे। वो जुहू में एक शानदार होटल था जिसका नाम था किंग्स होटल। नीचे प्रकाश मेहरा जी का ऑफिस था। बकौल राज भाई, मैं कार से उतरा और होटल को देखकर सोचा कि प्रकाश जी मुझे इसी होटल में ठहराएंगे। प्रकाश जी ने बताया, मैं नमक हलाल फिल्म शुरू कर रहा हूँ, इसमें विनोद खन्ना को ले रहा हूँ, लेकिन वो संन्यास लेकर ओशो के आश्रम जा रहे हैं, इसलिए वो रोल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर पूछा, मेरे रहने का इंतज़ाम कहाँ है? उन्होंने कहा, यहीं किया है, और अपने आदमी से बोले, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। वो आदमी मुझे एडिटिंग रूम में ले गया, वहाँ एक छोटा सा कमरा था। उसने कहा, यहीं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किया गया है। एडिटिंग रूम को देखकर राज साहब के होटल के भव्य कमरे वाली उम्मीद तो टूट गई, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि इतनी बड़ी फिल्म के साथ साथ उन्हें मुंबई में रहने की जगह मिल गई है। उन्हें लगा कि यहाँ से वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और मुझे लग रहा है कि भाई हमें याद आ रहा है, बड़ी ही जो है वो डेडली फिल्म थी देश परदेश 1978, किशोर कुमार, राजेश रोशन, अमित खन्ना, देवानंद, टीना मुनीम। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन जो घड़ी है ना भाई, ये बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, लेकिन हाँ, ये जो हमने बात की थी राज बब्बर साहब की, इसे पूरा करेंगे। शोले की बातें भी जो हैं वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बातें जो हैं आप लोग कह रहे हैं तो हम जो है वो आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ चुका था भाई। फिल्म पास नहीं हो रही थी, अब जो है वो सेंसर बोर्ड कह रहा था कि भाई इसमें कट लगाएं। कट लगाने की बात अगर करते हैं तो ये तो एक मामूली फिल्म बन जाती, और बड़ी सारी जो है वो मीटिंग्स हो रही थी बोर्ड के साथ। अब फिर उसके बाद हुआ कि कुछ मुलाकातों में रमेश ने कुछ ऐसा किया जो उनके लिए सबसे अस्वाभाविक था। उसने अपनी आवाज़ ऊंची करी, सिप्पी ने अपने हर कनेक्शन को बुलाया। जीपी सिप्पी काफ़ी रसूख वाले एक जो है वो संपन्न व्यक्ति थे, साधन संपन्न व्यक्ति, अब ऐसा कहें तो ज़्यादा जो है वो ठीक होगा। उन्होंने घंटों तक फ़ोन पर काम किया, उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था करी। जिस किसी ने भी बोर्ड को प्रभावित किया होगा उसे कॉल किया। पिता पुत्र में भी कड़वे संवाद थे। रमेश ने एक कलाकार के रूप में तर्क दिया जो अपने काम को देख रहा था, और जीपी एक यथार्थवादी के रूप में जो जानता था कि समझौता अपरिहार्य था। क्या शब्द दिया आप लोगों ने, अपरिहार्य था। एक बिंदु पर रमेश ने फिल्म से अपना नाम हटाने का भी विचार किया था। आखिरकार ये वे कहते हैं कि समझदार दर्शकों को कौन समझाने जा रहा था कि वास्तव में ये वही था जो इरादा था, या आपने इसे बदल दिया है, लेकिन ये वही था जो सामने आया था। और कोई ऐसा कोई क्या हुआ क्या करे, इस तरीके का तर्क वितर्क जो है वो दर्शक नहीं देखते हैं। अब इसी बात पर जो है वो हम जो आपसे लेते हैं विदा। अब जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, हम कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको जो छोड़े जा रहा हूँ, बड़ा ही बेहतरीन गीत था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, गंगा की सौगंध 1978, लता मंगेशकर, कल्याण जी, आनंद जी, अनजान। अब ये जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक था, इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalam alaikum doston, main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Satyamev Jayate, jai hind, jai bharat. Now this show is special for us, special for you, reason being ki legal framework ko decode karne ki koshish yahan par ki jati hai. Har episode apne aap mein bahut khas hota hai kyunki har ek episode mein ek naya topic, ek naye expert hamare sath maujood hote hain. Aaj hamare sath hai Ms. Garima Pawa. Garima ma'am is assistant professor at School of Law, Manav Rachna University. टॉपिक हमारा होने वाला है आज का सोशल मीडिया, इसके लॉज क्या है, क्या सही में सोशल मीडिया एक फन के लिए आप उसको देख सकते हैं कि महज एक फन है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, निकल जाओ, कोई भी वीडियो बना के डाल दो, सब ठीक होगा, कोई नहीं देखेगा, या फिर उसको भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना सीरियस हम बाकी चीजों को लेते हैं, लाइक क्रिमिनल लॉज या ट्रैफिक लॉज. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किस लेवल पर आपको उसको आंकना चाहिए, क्या ग्रेविटी वहां पर हो सकती है, सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है. This we gonna decode in today's episode. Now let's get started and let's welcome Ms. Garima Pawa. Hi ma'am, welcome to our show.
2: Thank you so much.
1: पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि क्या सोशल मीडिया को हमें ऐसे ही लाइटली लेना चाहिए या फिर सोशल मीडिया सच में किसी इंसान को लीगल ट्रबल में डाल सकता है?
2: सी, आजकल हर कोई एक इंसान, चाहे वो 16 ईयर ओल्ड हो, 12 ईयर ओल्ड हो या एक छोटा भी बच्चा भी आजकल सब स्क्रॉल करते हैं, और या 60-70 ईयर्स ओल्ड हो, मतलब ऑल एज ग्रुप्स आर ऑन सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, हर एक चीज़ के पीछे ना एक मोटिव होता है. अब जैसे मान लीजिए कि एक रिलीजियस कोई पोस्ट डली हुई है और मुझे वो अच्छी लगी, मैंने वो लाइक कर दी, पर क्या पता मेरी कम्युनिटी को वो चीज़ पसंद ना आए और वही चीज़ मेरे को प्रॉब्लम में लेकर आ जाए. या फिर हम लोग ऐसे कोई पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, जो कि हमारे देश के खिलाफ हो जाती है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को वो हैम्पर करती है, या डे टू डे रूटीन को भी हैम्पर करती है, चाहे हायर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो. तो दोनों ही केसेस में हम लोग लीगल ट्रबल में फंस भी सकते हैं और कभी लेट गो भी हो जाता है.
1: ऑलराइट. क्या जो भी हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, हम उसको बोल सकते हैं सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सेंसर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आ सकती उसके अंडर?
2: देखिए, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मोस्ट यूज फंडामेंटल राइट इंडिया में, हर कोई इंसान इसको यूज़ कर रहा है. और सोशल मीडिया में पोस्ट करना ऑब्वियसली हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, बट जैसे उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ही गिवन है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे हम इंडिया की सोवरेनिटी को हार्म नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी है उसको हार्म नहीं कर सकते, पब्लिक डेकोरम को ख़राब नहीं कर सकते, ऐसे करके बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट एक आम आदमी उस नज़रिए से उसको देख ही नहीं पाता. हम लोग को कानून पता है तो हम उस नज़रिए से समझ पाते हैं, पर एक आम आदमी के लिए तो हर चीज़ बोलना एक फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. तो सोशल मीडिया पे कुछ लिखने, बोलने, इन सब को लोग ना बहुत नॉर्मल लेने लग गए हैं, चाहे वो किसी की ज़िंदगी ले रहा है, चाहे किसी की पूरी लाइफ आगे ख़राब कर रहा है, और एक दिन में किसी को बहुत फेमस भी करके अच्छी उसकी लाइफ भी बना दे रहा है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं. एक हम बात करते हैं ओपिनियन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, मेरा ओपिनियन है उसको लेके, ज़रूरी नहीं है हम सरकार की हर बात की सहमति हो, तो उसको लेके हमने अगर कोई ओपिनियन दिया है तो वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में है. पर मैं उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काऊं, ऐसे स्पीच लिखूं या बात बोलूं, पूरे सोशल मीडिया में फैला दूं, जिससे पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ कोई बात हो जाए, तो वेजिंग वॉर वाला सीन आ जाए, तो वो उस टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे उनका रोल आ जाता है और एक आम आदमी समझ ही नहीं रहा होता. क्यों? मान लीजिए कि मैंने सबको समाज में किसी को भड़काने का सोचा, सरकार ने कुछ डाला, मैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ हूँ और मैंने उसको प्रमोट किया अपने व्यूज़ को देके, बट वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, बट वो दिख रहा है कि मैं भड़काना चाह रही हूँ, मैंने भेजा, किसी ने फॉरवर्ड किया, फिर किसी ने फॉरवर्ड किया, और ऐसे करते हुए चलता चला जाता है. तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है, बेसिकली मिसयूज़ है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. बट ऑन दी अदर हैंड आई फील सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड अभी आप देखिए, बहुत रिसेंटली, मतलब 3-4 साल में मैंने नोटिस किया है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से अपने आप को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी LGBTQ कम्युनिटी हो, लोगों को अवेयरनेस फैलती है इस बारे में, चाहे अभी हम देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है, या अभी एक प्रोटेस्ट जो पीछे रहा कॉकरोच पार्टी के उसमें, तो सारी इन्फॉर्मेशन जब लोगों के तक पहुंचती है तो लोग अपना ओपिनियन दे पाते हैं उसके ऊपर, एक्सप्रेशन दे पाते हैं, तो तब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
1: और मैं अगर इसको ये देखना चाहूँ कहाँ पर ये बाउंड्री खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की खत्म हो रही है, और कहाँ पर लीगल लाइबिलिटी स्टार्ट हो जा रही है,
2: ये बहुत थिन और ट्रांसलूसेंट बाउंड्री है, इसको हम लोग कॉमन लोग डिमार्केट नहीं कर सकते, हम उसमें अंतर नहीं बता सकते। हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट वही चीज़ हो सकता है कि किसी की डिफेमेशन में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए मैंने किसी पार्टी के बारे में, या किसी, जैसे हम लोग वीडियोज़ देखते हैं नेबर्स बीच में लड़ाई हो गई वो डाल देते हैं, या किसी भी पर्सन के बारे में जिससे रेपुटेशन उसके सामने ख़राब हो जाती है वो हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं। अब मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मैं अपने एक ओपिनियन दे सकती हूँ, पर वो सामने वाले के लाइफ पे या उसके इमेज के ऊपर क्या लेकर आ रहा है ये हमें नहीं पता, तब वो डिफेमेशन में बदल गया। तो जो थिन लाइन है ये लोगों को नहीं पता, और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग समझें कि किसी के बारे में अपना ओपिनियन देना, अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन उससे सामने वाले के ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। या आप सोचें कि मैंने वीडियो डाली और अब मैं उसको हटा देता हूँ तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, AI आ गया है, उसको डाउनलोड करके डीप फेक करके आप पोस्ट करिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डाल दीजिए, हर जगह से आप नहीं हटा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है इस लाइन को समझने के लिए अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पोस्ट कुछ आती है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि इसका ओरिजिन क्या है। इसके ना दो जनरेशन सबसे ज़्यादा शिकार हो रही है। एक जो हमारी बहुत यंग जनरेशन है जो टीनेज में और एडोलेसेंस एज में आती है, और एक है हमारी जो बहुत एजड जनरेशन है जिनके हाथ में फ़ोन तो है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, और वो सिर्फ भावुकता में उन चीज़ों को आगे पोस्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको ये समझाना कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लाइन है ये बहुत बहुत थिन है।
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर आपके और मेरे जीवन की, जो आप कह सकते हो जिस तरीके से तारें जुड़ी हुई हैं, या द वे हाउ वी कंज्यूम द इंफॉर्मेशन, द वे हाउ वी आर गेटिंग द करंट अफेयर्स, द वे हाउ वी आर गेटिंग द न्यूज़, ये सब कुछ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम आज के टाइम सोशल मीडिया, जिससे आपको और मुझे पता लग रहा है। मुझे याद नहीं ठीक कि मैंने आखिरी बार अखबार कब पढ़ा था, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि मैं सोशल मीडिया पर डेली कुछ ना कुछ देखता हूँ कि कुछ नया हुआ है,

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है सत्यमेव जयते, आप जुड़े हुए हैं रेडियो मार्फिस्ट 107.8 एफएम के साथ। टॉपिक हमारा है कि सोशल मीडिया पर लॉज कैसे काम करते हैं, हाउ एग्जैक्टली लीगल फ्रेमवर्क इज नेविगेटिंग थ्रू दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया। हमारे साथ गरिमा मैम है और गरिमा मैम से अभी तक हमने बात करी है एग्जैक्टली सोशल मीडिया में कहां पर आप लीगल ट्रबल में आ सकते हो, कहां पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो वो बाउंड्री है वो खत्म हो जाता है, कहां पर आपका लीगल लायबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ लेट्स टेक इट अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि किसी के बारे में अगर मैं कुछ बोल दूं या डिफेमेटरी कंटेंट डाल दूं, या लेट्स से कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, इस केस में क्या होगा, कानून कैसे नेविगेट करेगा, क्या कोई लीगल एक्शन हो सकता है अगर मेरे पास उसका तथ्य नहीं है तो।
1: अभी ये चीज़ तो बहुत कॉमन हो गई है सोशल मीडिया में, कोई बात हो रही है, कहीं आप जा रहे हैं, आप कोई फोटो बनाई, वीडियो बनाई, डाल दिया। परमिशन का तो कोई कंसेप्ट एज सच है नहीं, क्योंकि मतलब काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो परमिशंस भी लेते हैं, बट हम कहीं जा रहे हैं तब भी वीडियो डाल दिया, तो अगर वो कोई डिफेमेटरी है, जिससे डिफेमेशन का भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जिसमें हम छोटी सी बात ये समझ सकते हैं कि जिससे हमारी समाज की नज़रों में हमारी इज्जत कम होती है, उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। सो अगर हमारा ऐसा कोई डिफेमेशन का केस बन जाता है, जिसमें मुझे लगता है कि आपने कोई मेरे बारे में कोई वीडियो डाल दी, या मैंने कुछ कहा या कुछ करते हुए आपने मेरी वीडियो डाल दी और सबको पता चल गया, या वो कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ ख़राब ही हो, तो वहाँ पे हमारा भारतीय न्याय संहिता आ जाता है, जहाँ पे दिस इज़ द न्यू लॉ, जिसको IPC ने रिप्लेस किया है अभी, और BNS जो है वो डिफेमेशन को एज अ ऑफेंस लेता है और उसके अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ आप साइबर लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज सच डिफाइंड साइबर लॉज अभी इंडिया के अंदर नहीं है जो स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर बात करता है, तो जो जनरल ऑफेंस जिसमें हम बात कर सकते हैं वो BNS का डिफेमेशन ही है, जिसके लिए हम चार्ज फाइल कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, क्या अगर व्हाट्सएप पे आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट नहीं है लेकिन आपके पास कहीं से आया है, तो क्या आप इसके अकाउंटेबल ठहराए जाओगे?
1: जी, इसमें अब दूसरा लॉ आ जाता है। आजकल ये YouTube पे भी बहुत कॉमन देखा जाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के नोटिसेस आ जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉपीराइट है क्या और उसका इन्फ्रिंजमेंट कैसे। अब जैसे आजकल हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसके अंदर कुछ भी एक ऑडियो का पार्ट उठाया और हम डाल देते हैं, राइट, तो वो हमारा कॉपीराइट है कि इन्फ्रिंजमेंट है कि नहीं है, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। या मैंने कहीं से कविता उठाई, मैंने व्हाट्सएप पे उसमें अपना नाम लगा के और आगे फॉरवर्ड कर दी, तो ये यहाँ पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं, और कॉपीराइट एक्ट है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट्स गिवन है। अभी इसका डोमेन और वाइड होना चाहिए, बिकॉज बहुत अभी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट इसको भी वाइड करना होगा। YouTube की जैसे कुछ गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसमें आप देखते हैं कि लोग मूवी अपलोड कर देते हैं और उसमें कुछ पार्ट जो है वो म्यूट कर देते हैं, जस्ट टू फाइंड अ लूप होल इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। सो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़, किसी का और का काम का क्रेडिट ले लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, बीट इमेज, रील्स और सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट, एनीथिंग, बीट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो तब हमारा कॉपीराइट एक्ट जो है वो गवर्न करता है इसको, और उसके अंदर हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए चार्ज कर सकते हैं।
0: बट वो तो तब बात होगी ना जब मैं उसको पब्लिश कर रहा हूँ कहीं पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी उठता है कि मानकर चलिए मेरे पास एक फेक कोई मैसेज आया जो मैनिपुलेटेड था, जिसमें किसी की डिग्निटी हार्म हो रही थी, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर वीडियो या फोटो जो भी है, बट मैं सोर्स बन रहा हूँ उसको आगे पहुँचाने का, क्या मेरे अगेंस्ट को लीगल एक्शन हो सकता है इस केस में?
1: जी, अभी मैंने बहुत रिसेंटली एक दो जगह पे देखा है, मेरे एक नोन भी हैं जिनका ना व्हाट्सएप अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो बैन हो गए हैं। रीज़न ये है कि दे आर नॉट नोइंग कि वो फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं। जैसे आज की क्या था जो तुमने कुछ फॉरवर्ड किया, कोई गाइडलाइंस इन्फ्रिंज की, तो हमें पता ही नहीं है। वेन एवर वी स्टार्ट व्हाट्सएप, टर्म्स एंड कंडीशन से बस टिक करते हैं एंड वी गो विद इट। हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं है डिफाइंड, बट देर आर सम गाइडलाइंस जो ये प्लेटफॉर्म्स हमको देते हैं। और तीनों चारों जो फेमस सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे मेटा जो कंपनी है उन्होंने परचेज कर रखे हैं, उनके अंदर ही काम करते हैं। अब इनकी गाइडलाइंस हर प्लेटफॉर्म को लेके डिफरेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि 1 या 2% ऑफ इंडिया इवन नो अबाउट दैट गाइडलाइंस। सो जो हम ये फॉरवर्ड करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, हम सोशल मीडिया से बैन हो जाते हैं, रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो वो लीगल एक्शंस जो हैं वहाँ लिए जा रहे हैं। बट ऑन दी नेशनल लेवल अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए कोई अभी तक एज सच कोई फ्रेमवर्क आया नहीं है।
0: ओके, सो बेसिकली इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप उस प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस को अगर यू नो स्पॉइल कर रहे हो या उनको समहाउ वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं हर प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म आपके अगेंस्ट एक्शन ले पाएगा, आपके अकाउंट को बैन कर देगा, शेडो बैन कर देगा, बट कोई सीधा लीगल नोटिस नहीं आएगा अब एज ऑफ नाउ,
1: राइट?
0: अभी हमारे पास नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है. ओके, सो अमेजिंग, लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक. उम्मीद कर रहा हूं अगला पॉइंट आपको समझा पाए. हम जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव.

0: Once again, welcome back. अगर मेरे लिए या गरिमा मैम के लिए कोई भी फीडबैक है आपके पास, सो डू मेक श्योर 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात आप जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर के चलेंगे। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर और मैंने बाद में उसको डिलीट कर दिया, क्या अभी भी मैं अकाउंटेबल हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज का?
1: या डेफिनेटली, इवन दो अगर हम ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ अपलोड हो गई और हम सोच रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, गंदे रिव्यूज़ आ गए और वो किसी और के लिए है, ठीक है, और उसको हम रिमूव कर देते हैं कि सोच के कि अब मेरे पेज को लोग अनफॉलो ना करें या मेरे ऊपर कोई मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए कुछ इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैनी पीपल डाउनलोड दोज वीडियोज़, दे रीपोस्ट, नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रीपोस्ट ऑल्सो, एंड उसके बाद वो अपने पेजेस पे भी डालते हैं, अपने अकाउंट्स पे भी डालते हैं। उसके बाद आजकल एक जो बहुत इशू हो गया है वो है डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है, जिसमें आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके एक डिफरेंट सिनेरियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो वीडियो बना लें, चाहे आप कहीं कोई रील बना लें या आपको कहीं एक से पिक्चर बना लें, एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फोटो एंड वीडियो, इट विल डेफिनेटली लुक लाइक अ रियल पिक्चर, राइट। तो अगर आपने किसी की वीडियो अपलोड करी, इवन दो आपने उसको डाउन भी कर दिया, बट जो सर्कुलेशन हो चुका है, नैनो सेकेंड्स में आजकल सर्कुलेशन हो जाता है, जो सर्कुलेशन हो चुका है और उसके बाद अगर कोई उसको मिसयूज़ कर रहा है, सो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर लीगल ट्रबल आएगा, ठीक है। सो मेरा सजेशन तो हमेशा यही होता है दैट बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग जस्ट स्टॉप फर्स्ट एंड थिंक अबाउट इट कि अगर मैं ये पब्लिश करूँगा या मैं इसको पोस्ट करूँगा, दिस विल हार्म एनीवन इन द सोसाइटी, एंड इफ इट विल सो एट व्हाट लेवल वी कैन थिंक कि किसी की पूरी लाइफ या करियर जा सकता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सेंसरशिप वाला एक पार्ट होता है, अभी हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह जितनी सब चीज़ें आती थी पहले वो सेंसरशिप में वो सेंसर बोर्ड देखते थे एंड देन उसके बाद वो छपकर बाहर आते थे, लेकिन जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं उसमें आपके जो अकाउंट में मतलब जो पोस्ट कर रहा है जो उसका मेन एडमिन है उसके ऊपर होता है कि उसको सेंसर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, और वो कहीं पर ब्लर हो जाती है वीडियो, नहीं हो जाती। अभी बहुत रिसेंटली जो बिहार केस हुआ जिसके अंदर एक लड़का लड़की को पकड़ लिया और फिर वो वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया, एंड वन ऑफ द एक्यूज ओनली हिमसेल्फ अपलोडेड दैट वीडियो, उसमें उन दोनों का फेस एकदम क्लियर है। आफ्टर मी एज अ नॉर्मल पर्सन आफ्टर वॉचिंग इट फॉर लाइक 10-15 times, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरे सामने आई उसमें उनके फेसेस ब्लर हैं, सो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस? सो जो पर्सन जिसने स्टार्ट किया है दैट पर्सन विल बी ओनली अकाउंटेबल, उसके बाद जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो तो फंसेंगे ही, बट जो मेन है अगर वो सोच रहा है कि मैं डाउन कर देता हूँ ना आई विल बी आउट ऑफ इट, तो ये तो नहीं हो पाता।
0: काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉलेज में अगर हम यहाँ पर कैंपस की बात करते हैं अपने, लेट्स से कि हमारे कोई स्टूडेंट है जिसने मीम पेज अपना बनाया हुआ है और वो टीचर्स का मजाक उड़ाता है, मॉक करता है, या अपने कॉलिग्स का मजाक उड़ाता है, मॉक करता है, क्या इस सिनेरियो में जो कि फन वे में हो रहा है, मीम भाषा में हो रहा है, क्या इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ को?
1: सी दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली, इंस्टीट्यूशन क्या उसके लिए एक्शन लेना चाहती है। कई बार एडमिन को पता करके एंड वी मतलब इंस्टीट्यूशन डज इट कि वो उनको मना कर देती है या एक स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी लेवल पे ले लेती है कुछ, बट उनके ऊपर लीगल केसेस वगैरह तो मैंने बहुत कम देखे हैं, नॉट जस्ट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज बच्चे आजकल ही जस्ट टेकन नैनो सेकेंड फोटो बना दी, स्नैपचैट में तो फिल्टर्स लगा दिए एंड देन पोस्टिंग इट अप। इवन आई हैव सीन सम केसेस जहाँ सीनियर टीचर्स होते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतना समझ नहीं पाते हैं तो उनका कोई मीम बना के डाल देते हैं। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन एंड केस टू केस कि वो कितना ऑफेंसिव है और जिसके बारे में उन्होंने वो डाला है वो उसको कैसा टेक लेते हैं। समटाइम्स एक वो पैरोडी भी तो होता है ना, समटाइम्स वी फील लाइक कि नहीं इट्स ओके, बच्चे हैं मजाक कर रहे हैं, दिस इज ओके ऑल्सो फॉर फ्यू फैकल्टीज, बट फ्यू फैकल्टीज फ्यू टीचर्स फील लाइक कि नहीं दिस इज कम्प्लीटली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जो उनका राइट टू प्राइवेसी है वो बिल्कुल खत्म होता है, हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं और फोटो वीडियोग्राफी के लिए वी डोंट डू इट अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूशन आस्क अस टू डू दैट। तो वहाँ पर डिपेंड करता है डेफिनेटली कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, एंड उसके बाद जो कंटेंट डाला है वो क्या है, कितना ऑफेंसिव है, कितना उसमें वो मतलब टारगेट कर रहा है या फन बेस्ड है या कुछ ऑफेंसिव डल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे मैटर करता है, एंड देन कम्स टू द यूनिवर्सिटी लेवल हाउ दे वांट टू यू नो मूव फॉरवर्ड विद इट।
0: ऑलराइट सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री।
1: ओके, आई जस्ट बिलीव कि हम लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करना आ गया है, बट उसकी कितना हमें यूज़ करना है और किस एक्सटेंट तक उसको यूज़ करना है, ये अभी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक देर शुड बी सम लीगल रूल्स ऑल्सो, देर शुड बी सम फ्रेमवर्क ऑल्सो जो इसको गवर्न करता हो, एंड जो हमारी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खराब, मतलब वॉयलेट भी ना कर रहा हो, बट स्टिल देर नीड टू बी सम लाइक सेंसरशिप ऑन द पोस्ट एंड एवरी थिंग. बिफोर दैट आई बिलीव कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंटेंट कर क्या रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. समटाइम्स आई थिंक द बिगेस्ट रोल दैट द पीपल प्ले इज इन्फ्लुएंसर्स ओवर सोशल मीडिया, बिकॉज वो ट्रेंड सेट करते हैं. अब वो किस तरीके के मजाक और किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो आई बिलीव चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, दे शुड थिंक फर्स्ट बिफोर लाइकिंग, अपलोडिंग और कमेंटिंग समथिंग. जो लोग इस बारे में अवेयर हैं वो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने एल्डर्स को इस चीज़ के बारे में बताएं कि वो जो भी डाल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल तरीके से ही हो रहा हो. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो किसी एक रिलीजियस सेक्ट को, एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को, या फिर कम्युनिटी को, या ऑल ओवर एक नेशन को बहुत अफेक्ट कर सकती है. तो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट बिफोर गिविंग एनी ओपिनियन, आई शुड से वी शुड थिंक कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एंड देन वी शुड टेक सम स्टेप्स जब तक हमारे पास कोई लीगल इसका स्टैंड नहीं आ जाता. सो जस्ट बी अवेयर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड साइबर क्राइम नहीं करने के साथ साथ उससे बचना भी है. तो मेरा सिर्फ यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सोशल मीडिया को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए और ना ही उसको ऐसा लिया जाए जिससे आपकी लाइफ पे बहुत अफेक्ट हो जाए.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज मैम. उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा. आज जो हमने बात करी सोशल मीडिया की, और बॉटम लाइन हमें समझ में आती है कि आपके एक्शंस बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या नहीं होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा या फिर उसको आप इन्फ्रिंज कर चुके होंगे. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका इंटेंट क्या है और आप क्या एक्शन ले रहे हो. समटाइम्स अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, बट वी हैव टू बी माइंडफुल. और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अपने बाकी शोज में भी बोलता हूँ, कि आप उस जमाने में जी रहे हो जहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया है. अब ऐसे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सही है या एज इट इज़ आपको पता लग रही है. डिपेंड करता है किसके थ्रू आ रही है, क्या उसमें किसी का एजेंडा छुपा हुआ है, उसको मैनिपुलेट किया गया है, क्या सिनेरियो वहाँ पर रहा होगा. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो ऑलवेज यू हैव टू फैक्ट चेक द थिंग, क्रॉस चेक आपको करना चाहिए कि फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. फिलहाल इसी नोट पर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच.
0: ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग.

मॉर्निंग रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज है शनिवार का दिन, हर शनिवार सुबह 11 से 1 आपको लेकर के जाती हूँ कहीं दूर सफर पर और हम बहुत सारी बातें करते हैं उस जगह के बारे में, बताती हूँ आपको उसके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, क्या कुछ खास है उस जगह घूमने लायक उस पर हम बातें करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं और उन ये हिडन जेम्स की हम बातें करते हैं ना जो बहुत ही कम लोग जिसके बारे में जानते हैं। आज भी एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको लेकर के मैं आ गई हूँ और आज जिस जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना ये बहुत ही खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश में ये जगह है और इसे कहा जाता है द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए ये कौन सी जगह है ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

प्रोग्राम लेकर के आती हूँ जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक मैं ये प्रोग्राम लेकर के आती हूँ जिसमें हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं। और आज का हमारा सफर हमें लेकर के जा रहा है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन, ठंडे और एडवेंचरस कोने में, जिसे द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, और आज हम चल रहे हैं बीर बिलिंग। इमेजिन कीजिए, आप 8000 फुट की ऊंचाई पर आप जो है वो किसी एक धुआंधार एक पहाड़ पर खड़े, और ये इसलिए क्योंकि बहुत ऊंचाई की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर बादलों के ऊपर हम आ जाते हैं, एक एज पर आप खड़े हैं, हवा में एकदम ताजा ठंडक है और आपके सामने आकाश में सैकड़ों कलरफुल पैराग्लाइडर्स तितलियों की तरह तैर रहे हैं। बीर बिलिंग सिर्फ एक एड्रेनलिन रश का नाम नहीं है, ये एक देखिए ऐसी जगह है जहां एक तरफ हवाओं में उड़ने का थ्रिल है और दूसरी तरफ तिब्बतन मोनेस्ट्रीज की शांति और टी गार्डन्स की महक है। आज के इस 2 घंटे के प्रोग्राम में ना, ये जो मैं लेकर के आती हूँ इस जर्नी में ना, मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। मैं आपको बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट पर ले चलूंगी, बीर के क्यूट कैफेज की हम बात करेंगे, ऑथेंटिक तिब्बतन मोमोज की मैं बात करूंगी और यहाँ के मैजिकल सनसेट्स का नज़ारा भी आपको बताऊंगी। तो बस बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज का सफर एकदम हाई फ्लाइंग और कोजी होने वाला है। चलिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। डर के उस पार जब एक कदम आगे हम बढ़ाते हैं तभी जिंदगी को आजादी का असली पंख हम दे पाते हैं। और देखिए आज जिस जगह हम आए हैं ना, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और देखिए सबसे पहले समझते हैं इस जगह का ज्योग्राफी। और देखिए ज्योग्राफी यहाँ की कहती है कि बिलिंग जो है, यहाँ का जो टेक ऑफ पॉइंट जो लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ के टॉप पर स्थित है, और बीर है लैंडिंग ग्राउंड जो लगभग 4500 फुट की ऊंचाई पर जो है ये कुछ इस तरह है, नीचे है, घाटी में बसा हुआ है। बिलिंग दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट माना जाता है और यहाँ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी हो चुका है। जब आप बिलिंग के ग्रीन मेडोज पर अपने पायलट के साथ हार्नेस बांध कर खड़े होते हैं तो दिल थोड़ा जोर जोर से ना धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही पायलट ये कहते हैं ना रन रन रन और 3 कदम दौड़ते हैं, आपके पैर हवा में चले जाते हैं। ओफ, वो जो मोमेंट है ना वो बहुत कमाल का है। उस मोमेंट पर डर एक सेकंड में गायब हो जाता है और आप जो वहाँ की बर्फीली चोटियाँ हैं और नीचे घने देवदार के जो जंगल हैं उसके ऊपर परिंदे की तरह उड़ रहे होते हैं। वो 20 से 30 मिनट हवा में रहना एक ऐसा जादुई अनुभव है जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज हम आए हैं बीर, और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ढलता हुआ सूरज जब पहाड़ों को नारंगी रंग में रंग दे तो घड़ी की सुइयां भी ठहर जाती हैं। हवा में घूमने के बाद जब आपका पैराग्लाइडर भाई स्मूथ तरीके से नीचे बीर लैंडिंग ग्राउंड पर लैंड करता है तो वहां की वाइब एकदम फेस्टिवल जैसी लगती है। शाम के वक्त ये लैंडिंग साइट पूरे बीर का सबसे बड़ा सोशल हब बन जाता है। यहाँ ट्रैवलर्स घास पर आराम से बैठते हैं, लोकल बच्चे खेलते हैं और हवा में एक के बाद एक पैराग्लाइडर्स जो हैं यहाँ पर लैंड करते रहते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब सूरज जो है वो धौलाधर के पीछे जो है वो ढलता है, यानी कि जो चोटी है उसके पीछे ढलता है। आसमान लाल गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है और ग्लाइडर के जो देखिए यहाँ पर जो आकाश पर किसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कैनवस जो है वो पेंटिंग से कुछ ऐसा बनाया हो, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर हम पेंटिंग्स में देखते हैं ना। वहाँ बैठकर आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ में गर्म गर्म चाय है और साथ ही सनसेट हो रहा है। पैराग्लाइडर्स जो है वो हवा में है, बिल्कुल आसमान में है और रंग जो है आसमान का हो रखा है गुलाबी। देखिए ये जो है ना आपके माइंड को और पूरी बॉडी को ना एकदम रिचार्ज कर देता है, आपको सुकून से ना भर देता है, इसलिए बीर जाना ना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक छोटे सी देखिए एक मैं लूँगी एक ब्रेक का टाइम जो है छोटा सा हो गया है, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें. आज आपको लेकर के आई हूं बी मॉनेस्ट्री के रंग बिरंगे झंडे जब हवा में लहरते हैं तो हर आहट एक प्रार्थना बन जाती है. बीर सिर्फ एडवेंचर का अड्डा नहीं है, ये तिब्बतन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है. बीर तिब्बतन कॉलोनी एक बीच देखिए स्थित है, बहुत ज्यादा खूबसूरत. इसके बीच में स्थित है एक चोकलिंग मॉनेस्ट्री और चोकलिंग मॉनेस्ट्री जो है ये बहुत खूबसूरत है और इस मॉनेस्ट्री का ग्रैंड स्तूपा और एंट्रेंस गेट इतना कलरफुल और बारीक कार्विंग से बना है कि देखकर आंखें आपकी खुश हो जाती हैं. मंदिर के आंगन में खड़े होके जब आप हजारों प्रेयर फ्लैग्स आप देखते हैं हवाओं में फड़फड़ाते हुए देखेंगे जब आप, और अंदर से मॉन्क्स के डीप चैंटिंग और बेल्स की आवाज आती है तो मन का सारा शोर एक झटके में शांत हो जाता है. वहां के ध्यान कक्ष में बैठकर कुछ देर मेडिटेशन करना दिल को एक अनोखा ठहराव देता है. तो आपका क्या कहना है, आप बिर जाएंगे या नहीं, जरूर मुझे बताइएगा. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर आपको बताना है. तब तक लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। आज आपको लेकर के आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह। ये जगह और कोई नहीं बल्कि है बीड़। जी हाँ, बीड़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर भट्टू गांव के जो यहाँ पर घने पाइन और ओक के जंगलों के बीच छुपा हुआ है एक विशाल स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स पलपोंग शरावलिंग मॉनेस्ट्री यहाँ पर है। और ये जो है वो ताई सितु रिनपोचे के सीट है। जंगल के शांत रास्ते से होकर जब आप इस मॉनेस्ट्री के आंगन में पहुंचते हैं तो सामने खड़ा विशाल स्तूप और गोल्डन आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके मेन प्रेयर हॉल के अंदर भगवान बुद्धा की एक बहुत ही विशाल और शांत मूर्ति विराजमान है। यहाँ हवा में देवदार की ठंडी खुशबू और बर्ड कॉल्स के अलावा कोई दूसरी आवाज आपको नहीं आती है। मॉन्स्ट्री के मॉन्क्स जो हैं वो देखिए ग्रैमी अवार्ड भी उनको जो है वो मिल चुका है इस आवाज़ को चैंटिंग को, और उनके ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट चैंटिंग के लिए उनको एक अवार्ड जो है ये मिला है ग्रैमी अवार्ड। अगर आपको भीड़ से दूर बिल्कुल प्योर साइलेंस चाहिए तो आप श्रैब जो लिंक है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ये आपको एक जन्नत की तरह महसूस होगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए पेट तो हम बहुत घूम लिए, चलिए अब कुछ खाने पीने की भी बात हो जाए। चलिए थोड़ी पेट पूजा जब बात आती है ना तो साक्षी आपको अलग अलग जगहों के बारे में बताती है। कोजी कैफे वाइब्स की हम बात करते हैं। बीर का कैफे कल्चर पूरे हिमाचल में सबसे यूनिक और रिलैक्स माना जाता है। यहाँ छोटे छोटे एस्थेटिकली प्लीजिंग ओपन एयर कैफेज हैं जहाँ इंटरनेट, किताबें और अच्छा खाना मिलता है। यहाँ आकर आपको स्ट्रीट पर ट्राई करना चाहिए ऑथेंटिक तिब्बतन लाफिंग, जो कोल्ड स्पाइसी पोटैटो स्टार्च नूडल्स जो है ये होते हैं, जिसे चिली ऑयल और सोया सॉस में ड्रिप करके दिया जाता है। और इसके अलावा गर्मा गर्म सूप, जो सूपी थुकपा है, या स्टीम यहाँ के जो फ्लफी ब्रेड्स हैं यानी कि जो यहाँ की टिंगमो है वो दी जाती है, और पैन फ्राइड मोमोज खाना मैंडेटरी है। ऑर्गेनिक फूड के शौकीन जो यहाँ पर लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ होममेड ऑर्गेनिक कॉम्बुचा और वुड फ्राइड पिज्ज़ा और साथ ही फ्रेश माउंटेन एप्पल पाइज भी मिलते हैं। सिल्वर लाइनिंग कैफ़े या जून 16 कैफ़े पर आप जा सकते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो ज़रूर जाइएगा और यहाँ आप कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज मैं आई हूँ बिर्रा को लेके और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है. हर शनिवार हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं 11 से 1 बजे तक दूर लेकर के जाती हूँ. आज लेकर के आई हूँ एडवेंचरस जगह बीर. जी हाँ, बीर की हम बातें कर रहे हैं. बीर सिर्फ देखिए ऊंचे पहाड़ों का शहर नहीं है, इसके लोअर जो इलाके हैं यहाँ पर फैले हुए हैं सुनहरे और हरे भरे टी गार्डन्स, चाय के बगीचे. ब्रिटिशर्स के दौर के कांगड़ा वैली अपनी खास ग्रीन और ब्लैक टी के लिए मशहूर रही है. बीर के चाय जो यहाँ पर चाय गार्डन्स है यानी कि जो टी गार्डन्स है, इसके बीच बने पतले रास्तों पर वॉक करना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है. यहाँ की लोकल महिलाएं ट्रेडिशनल बास्केट पीठ पर टांग कर दो पत्ती और एक कली तोड़ती हुई दिखती है. पास ही स्थित बीर टी फैक्ट्री, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे ताजी पत्तियां प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट क्वालिटी चाय जो है ये बनती है. यहाँ एक ताजी कांगड़ा टी पैक आप देखिए, आप जरूर आप पैक करवाइएगा अपने घर के लिए, लेकर जरूर आइएगा क्योंकि वो बेहतरीन स्वाद प्योर टी आप घर पे लेकर के आ रहे हैं. इसमें कोई मिलावट नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम द गार्डन्स टू योर किचन ये आप वहां से लेकर के आएंगे और वो स्वाद ना वो बहुत अलग है. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बहुत सारी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह। ये जगह है बीर। बीर से लगभग 12 किलोमीटर दूर देखिए बिनवा नदी के किनारे स्थित है हिमाचल के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक बैजनाथ धाम, यानी कि बैजनाथ टेंपल। 1204 AD में बना ये मंदिर भगवान शिव द लॉर्ड ऑफ देखिए फिजिशियंस वैद्यनाथ, यानी कि वैद्यनाथ को डेडिकेटेड है। और ये जो है वो देखिए एक नगारा स्टाइल स्टोन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मास्टरपीस है। मंदिर के पत्थरों पर इतनी बारीक मूर्तियां घेरी गई हैं कि आप उनकी कार्विंग्स देखकर दंग रह जाएंगे। माना जाता है कि रावण ने इसी जगह पर भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और अपना जो सर है वो अर्पित किया था। मंदिर के आंगन में खड़े होकर जब आप सामने बहती हुई नदी और पीछे पहाड़ों को देखते हैं तो मन एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति से भर जाता है। तो आप बैजनाथ धाम जाना मत भूलिएगा। यहाँ दर्शन करने से कहते हैं कि देखिए ऐसा लोगों का कहना है, लोग मानते हैं कि जो आप चाहे वो आपको आपकी जो मुराद है वो पूरी होती है। तो चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह और हम अपने शहर से तो काफ़ी दूर आ गए. हम आए आज बीर. देखिए, छोटी सी पहाड़ी रेल जब सीटी बजाती है तो बचपन के बीते हुए हसीन दिन याद आ जाते हैं. बीर के बिल्कुल पास पड़ता है अहजू रेलवे स्टेशन, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन नेटवर्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. ये नैरो जो गोच ट्रेन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. पठानकोट से जोगिंदर नगर के बीच धीरे धीरे पहाड़ों, खेतों और फूलों के बीच से सीटी बजाती हुई ये गुजरती है. और इस छोटे से विंटेज रेल स्टेशन पर खड़े होकर जब आप उस लाल पीली टॉय ट्रेन को आते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने जमाने के पोस्टकार्ड का दृश्य जिंदा हो गया हो. इस ट्रेन में बैठकर बीर से बैजनाथ तक का छोटा सा सफर करना पहाड़ी सादगी और नॉस्टैल्जिया का सबसे सस्ता और खूबसूरत तरीका है. चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. आज एक बड़ी खूबसूरत से शहर आपको लेकर के आई हूँ और ये शहर है, ये जगह है बीर. जी हाँ, द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है. ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और बड़ी प्यारी है. तो चलिए, अगर आप कभी, आपको मन है, आप बहुत मतलब एडवेंचरस हैं, आपको मन है कुछ एक्टिविटीज़ करने का, तो यहाँ पर आके पैराग्लाइडिंग ज़रूर कीजिए. अगर आप बहुत ही शांत जगह ढूंढ रहे हैं तभी बेर आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ऑन पीक है. तिब्बतन काफ़ी सारी मॉन्स्ट्रीज हैं यहाँ पर और यहाँ का खाना काफ़ी सादगी भरा है. तो चलिए, अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त. लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि भाई मैं ना आपको बहुत ही खूबसूरत गाने तो सुनाती हूँ और रेडियो मानव रचना आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर के आता है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देता है. तो अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त. होगी कल मुलाकात आपसे और होंगी ढेर सारी बातें. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel live. Bye-bye. Take care.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आ गई हूँ लेकर प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आपको बताएं, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसी सशक्त महिलाओं से जो न सिर्फ सशक्तिकरण फैला रही हैं लेकिन साथ के साथ बहुत सारा काम कर रही हैं महिलाओं के लिए। वो खुद भी सशक्त हैं, उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है दीप्ति माथुर जी। दीप्ति माथुर जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL में। और ये सोलर स्केल इंटीग्रेशन की बात करूं या फिर यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी की बात करूं तो इस पर ढेर सारा काम भी कर रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर भी ये बहुत सारा काम कर रही है। और ये क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है और इनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने के लिए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू भावना जी, आज इस प्रोग्राम में आपने मेरे को इस लायक समझा कि महिला सशक्तिकरण पे मैं कुछ अपने विचार सबके समक्ष रख सकूं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद।
3: दीप्ति जी, ये जो कार्यक्रम है ना, ये महिला सशक्तिकरण का है, और महिला सशक्तिकरण की एक जो परिभाषा या डेफिनेशन होती है, मेरा ये मानना है कि वो हर महिला के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण को कैसे डिफाइन करेंगी, आपको क्या लगता है क्या है महिला सशक्तिकरण, आपके लिए एम्पावरमेंट क्या है, तो क्या कहेंगी आप?
4: भावना जी, महिला सशक्तिकरण का शायद हर महिला अपने हिसाब से कुछ उसका व्याख्यान कर सकती है, पर मेरी नज़र में महिला सशक्तिकरण कोई किताबी परिभाषा नहीं है ना, और नहीं कोई एक ये नारा है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर लें, बल्कि यह मेरे लिए एक बहुत ही अत्यंत व्यक्तिगत और जीवंत यात्रा है। वह यात्रा जो शायद हम अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के साथ पूरी करते हैं, उस पर अडिग रहकर पूरी करते हैं, अपने योग्यता और अपने कार्य से अपनी जगह बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परंपरा और आधुनिकता का यह एक बहुत सुंदर संतुलन है। मेरे हिसाब से यही महिला सशक्तिकरण है कि अपने शर्तों और उच्च आदर्शों के साथ आप जिए और उत्कृष्टता हासिल करें, और शायद एक ऐसी अमिट छाप भी छोड़ जाए जो दूसरों का सदैव मार्गदर्शन करती रहे।
3: तो जी, महिला सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा अगर मैं कहूं तो वो यही है कि महिलाएं खुद तो सशक्त हो ही रही हैं, लेकिन साथ के साथ दूसरों के लिए और महिलाओं के लिए भी राह क्रिएट कर रही हैं, रास्ते क्रिएट कर रही हैं। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से। दीप्ति माथुर जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की JVVNL की, और सोलर एनर्जी पर ये ढेर सारा काम भी कर रही हैं। दीप्ति जी, अब एक सवाल, हम कहते हैं ना महिलाओं के नाम के साथ जो एक सरनेम आता है वो सरनेम है चैलेंज, और महिलाएं इन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेती हैं, लेकिन हर एरा में उनके जो चैलेंजेस हैं वो बड़े अलग हैं। सो आप मुझे बताइए आजकल की महिला का क्या चैलेंज है?
1: देखिए भावना जी, आजकल प्रायः सारी महिलाएं मतलब ऑलमोस्ट 40-50% महिलाएं नौकरी पेशा हैं, और मेरे हिसाब से जो वर्तमान में सबसे बड़ी उनके साथ चुनौती है वो कई बहुत मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं आती, कोई अदृश्य चुनौतियां हैं। जैसे मतलब हर महिला को एक दोहरा बोझ एक सहन करना पड़ रहा है, जैसे इट्स लाइक एन अनपेड केयर वर्क है वो। शिक्षा और कैरियर में हमने पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर हम चलते हैं, उसके बावजूद भी यह है कि घर परिवार, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, यह सब आज भी प्राय भारतवर्ष में एक आप देखा जाए तो महिलाओं के कंधों पर ही यह जिम्मेदारी मानी जाती है। यह हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा एक और मतलब मदरहुड एक पेनल्टी जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह से हमारे ऊपर एक ये पेनल्टी हमें लगता है कई बार, क्योंकि हमें अपना कार्य कार्यस्थल पे कार्य संपूर्ण करना होता है, पर ये हमें एक जिम्मेदारी यही समझी जाती है कि यह एक महिला की जिम्मेदारी है। तो इस तरह की ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम सबसे बड़ी कार्य क्षेत्र में भी महिलाओं के पास बहुत चुनौती है, चाहे वो बहुत अच्छे अपना कार्य कर रही हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, पर प्रायः ये देखा गया है कि जो शीर्ष स्थानों पर पहुंचने के लिए उनको अपने मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में शायद डबल एफर्ट लगाना पड़ता है, और कई बार वो बहुत शीर्ष स्थानों पर शायद पहुँच भी नहीं पाती। और उससे बड़ी, सबसे बड़ी जो मैं एक चुनौती मानती हूँ एक वो महिला के लिए यह है कि वो अपने आप को एक सुपर वुमेन सिंड्रोम से हम एक ग्रस्त हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम सुपर वुमेन हैं, जो हम सारे ही काम बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही अच्छी पूर्णता से हम सारे काम कर लें, और इसी के शायद दबाव में हम अपना अपने लिए ना तो कोई समय निकाल पाते हैं, हमारा जो मी टाइम है, और हर टाइम हम किसी न किसी आत्मग्लानी से ही भरे होते हैं कि शायद हमने ये कार्य अच्छे से नहीं करा, और हमें जो समय परिवार को देना था वो हमने अच्छे से नहीं करा, कार्यस्थल पर शायद हम अपना संपूर्ण नहीं दे पाए। तो इन सब अनगिनत ये चुनौतियां आज के परिपेक्ष में ये चुनौतियां सबसे ज्यादा है।
0: एक्चुअली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये गिल्ट जो है ना ये हर महिला की जिंदगी में आता है, लेकिन इस गिल्ट को देने वाला भी हमारा ही समाज है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये समाज ही है ना जो महिलाओं को ये कहता है कि आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने ये काम ठीक से नहीं किया। अगर हम महिलाओं पर से प्रेशर ही हटा ले तो मुझे लगता है ये गिल्ट भी खत्म हो जाएगा। क्या कहना है आपका, जल्दी से बताइए मुझे 8010781078 पर।
1: ये बिल्कुल आपका कहना इस मामले में बिल्कुल सही है भावना जी, पर बस यही मेरा भी आज आपके माध्यम से और सबसे यही अनुरोध है कि क्यों यह सारे कार्य महिला के ऊपर ही हमको जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे आजकल समय बहुत बदल रहा है, और जैसा मैं देख रही हूँ आजकल के जो नव युवक और नव युवतियाँ हैं वो संपूर्ण मतलब अपनी दोनों अपने अपने क्षेत्र में भागीदारी निभा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि एज अ पेरेंट फादर भी पूरे ही बच्चे का वो सारा कार्य करते हैं जो मदर करती हैं, और आजकल वर्क फ्रॉम होम का ये जो कल्चर शुरू हो गया है उसमें कई बार प्रायः ये होता है कि महिला तो जा रही है नौकरी पर हस्बैंड बच्चे की टेक केयर कर रहा है। और सोशल मीडिया पे भी आजकल मैं बहुत इंस्टाग्राम और इन पे कभी कभी देखती हूँ कि ये विषय को बहुत अच्छे से लाया गया है, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो इसको समझाने के लिए और तरह तरह के उपाय वो कर रही है। तो आई एम वेरी श्योर कि शायद आने वाले समय में इसको हमारी जो बड़ी पीढ़ी है, पेरेंट्स भी हैं, वो भी शायद इसको समझ जाएंगे, और युवा पीढ़ी तो इसको काफी हद तक समझ रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति जी। इनफैक्ट मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बस जरूरत ये है कि इस बदलाव की शुरुआत खुद महिलाओं ने की है। भाई वो ही बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उन्होंने ये इक्वालिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर डालने की कोशिश की है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के आज इस खूबसूरत से एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं JVVNL में। दीप्ति जी, अब अगला सवाल आपकी एम्पावरमेंट का, आपके सशक्तिकरण का। क्या आपने अपने जीवन में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई एक ऐसा डिसीशन लिया जो बहुत ही सशक्तिकरण भरा था या उससे ओतप्रोत था, और आपने उस डिसीशन को लेने के बाद फिर कभी जिंदगी में रिग्रेट नहीं किया?
1: हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा शायद डिसीशन यही था कि जब मैं 12th 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट चूज करने का टाइम आया 9th में, तो मैंने उस टाइम साइंस मैथ्स चूज करा, जो प्राय उस टाइम, मैं ये बात कर रही हूँ आपसे 1980s की, तब शायद ही लड़कियाँ इस क्षेत्र में जाती थी, और दिमाग में शुरू से ये था कि मुझे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाना है। बहुत ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, पर मैथ से प्राय लड़कियां सारी बहुत घबराती थी, और उस टाइम मैंने ये कदम लिया। उस टाइम मुझे अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे साइंस मैथ्स नहीं थी, तो मुझे एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा जो बॉयज प्रोमिनेंट स्कूल था, और वहाँ पे मैं अपनी कक्षा में मात्र एक ही लड़की थी। पर शायद मैंने वो डिसीशन सही लिया, और आगे चल के ठीक है, मुझे परेशानियां भी आई, सब कुछ हुआ, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया। तब उस टाइम बहुत चुनिंदा लड़कियां हुआ करती थी, पूरी पूरी क्लास में हम लोग सिर्फ दो या तीन लड़कियां थी। तो ये सब मेरी लाइफ के बहुत ऐसे महत्वपूर्ण डिसीशन थे जिसको शायद मैंने ऐसे कभी रिग्रेट नहीं करा, और मैंने हमेशा इंजॉय करा इस मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में। अपने आप को एस्टैब्लिश करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो मैंने स्वीकारा, और मेरे लिए सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का शायद एक यही एग्जांपल है कि मैंने अपने आप को कभी भी विचलित नहीं होने दिया। आए ऐसी समस्याएं मेरे साथ बहुत आई, कार्य क्षेत्र में भी बहुत बार ये सब हुआ,

0: पर मैं अडिग रही और अपना कार्य संपूर्ण निष्ठा से मैंने निभाया।
1: That is absolutely wonderful. दोस्तों यही सशक्तिकरण है, जहां आपने जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचा है और आप इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप फीमेल जेंडर हैं। मतलब जेंडर के हिसाब से आप अपने जीवन को तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, और इसीलिए मैं महिलाओं को हमेशा ये कहती हूँ कि खुलकर जिए और जो करना चाहते हैं उन्हें जरूर करिए, क्योंकि आप अपने जेंडर से डिफाइन कभी भी मत होइए। बट जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ये खूबसूरत सा एपिसोड जारी है बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस एपिसोड में हम अब बात कर रहे हैं दीप्ति माथुर जी से। दीप्ति जी, अब एक अहम सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है ना, शायद वो तब से थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं अपने जीवन के डिसीजंस लेने में। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अगर इंडिपेंडेंट होना है या फिर सशक्त होना है तो उन्हें फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है?
1: भावना जी, आपका प्रश्न काफी हद तक बहुत सही है, पर मेरा इसमें कुछ और भी विचार है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो महिलाएं घर पे रह रही हैं या कामकाजी नहीं है वो सशक्तिकरण का कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण का एक साधन हो सकता है, परंतु वह पूर्ण रूप से एम्पावरमेंट नहीं है। पैसा किसी भी व्यक्ति को अंदर से सशक्त नहीं कर सकता जब तक हम अपने हमारे पास अपने विचार, अपना निर्णय लेने की हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे। तो अब ये जरूरी है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना एक भारी ढाल है, पर अंदर की ढाल हमारी अपनी नैतिकता और अपने सिद्धांतों से कहीं उससे जुड़ी हुई है। अधिक आजादी जो है वो इंसान को भौतिक सुरक्षा दे सकता है, पर मेरे हिसाब से संस्कार, चरित्र, ये सब बहुत एक जरूरी आपकी वैल्यूज हैं जो आपको आत्मसंतोष दिलाती हैं। और आर्थिक आजादी निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जीवन के कभी विषम और गंभीर परिस्थितियों में आपके लिए एक मतलब फाइनेंशियल शील्ड जिसे कहते हैं वो हमारे लिए उसका काम करती है, और हम कभी भी विवश होने से बच जाते हैं। ये सब बहुत जरूरी है, पर मेरे हिसाब से ये नहीं है कि जो महिलाएं कामकाजी नहीं है, घर में रह रही हैं और आर्थिक रूप से कुछ अपना योगदान नहीं दे रही, पर वो भी बहुत सशक्तिकृत हैं अगर वो उनके पास अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, उनके अपनी मॉरल इंटीग्रिटी है, अपना विवेक और संतुलन वो बना के रखती हैं, तो मेरी नजरों में दे आर हाईली एम्पावर्ड वुमेन।
0: एक्चुअली सो जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और होते हुए ही आप सिर्फ सशक्त होंगी, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस समाज के पैमाने में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या फिर आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी एक फ्रेम मिल जाता है जिसमें कि आप बहुत सारी परेशानियों से ऊपर उठ जाती हैं, क्योंकि वहां पर आपके डिसीशंस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो।
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी दीप्ति माथुर जी आज हमारे साथ हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से। दीप्ति जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, महिलाओं के साथ एक चैलेंज जो मुझे लगता है अक्रॉस सेंचुरीज चलता आ रहा है, महिलाएं जब कभी भी अपनी पसंद का कोई करियर चूज करती हैं या कुछ भी उन्होंने अगर अपने जीवन में एक करियर बनाने की कोशिश की है, सो हमेशा से ये देखा गया है कि जब कभी भी कोई जिम्मेदारी आती है या पारिवारिक अगर हम कहें फैमिली का एक्सटेंशन होता है, तो हमेशा से करियर महिलाओं का ही कॉम्प्रोमाइज होता है या सैक्रिफाइस होता है। सो क्या इसे बैलेंस बनाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: हाँ, ये आपका प्रश्न काफी हद तक बिल्कुल सही है कि कॉम्प्रोमाइज महिलाओं को ही जनरली देखा गया है कि करना पड़ता है अपना कैरियर और उन कुछ चीजों को लेकर। पर आजकल मेरे हिसाब से जो नया हमारा समाज है और इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं महिलाओं को। एक तो जैसे आपका जब मेटर्निटी लीव है आपका, उसको इतना आपको 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिलती है आपके लिए। देन एक अलग से आजकल हर कार्यस्थल पे हर जना मतलब काफी संवेदनशील होता गया है। हमने देखा है कि कार्यस्थल पे बेबी सिटिंग के लिए वो लोग अपनी क्रेचेस वो लोग रखते हैं कि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। इवन आपने शायद कहीं देखा होगा कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी बहुत कार्यस्थल पर महिलाओं को अलग से सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उन्हें कम्फर्ट हो और सब चीजें हैं। साथ में जो है पुरुष वर्ग भी उनका पूरा सहयोग कर रहा है। पर हाँ, अभी भी ये है कि आपको अगर कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज आए कि हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो गई, आपका कहीं है, तो ये पहला प्रश्न ये उठता है कि शायद फीमेल्स ही अपना कैरियर को सेक्रीफाइस करें। पर आजकल है कि सबैटिकल स्कीम्स मिलती हैं कि जिसमें आप 2-3 साल बच्चे को बड़ा कर दें और फिर उसके बाद आप वापस जॉब पे जा सकते हैं। और मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कैरियर इस जिंदगी में सबसे इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दें कि हम अपना परिवार नहीं चलाएंगे, हम शादी इसलिए नहीं करने से डरती हैं लड़कियां कि हमारे आगे सब कैरियर खत्म हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, तो और मतलब सारे दायित्व हम पे आ जाएंगे। बट मेरे हिसाब से शायद ये सही नहीं है। हमने उस जमाने में नौकरी करी आज से 20-30 साल पहले, 25 साल पहले, जब ये सब स्वतंत्रताएं नहीं थी, बहुत रूढ़िवादी परिवार भी था, पर सबके सहयोग से सबके उससे हम आगे बढ़ते गए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम शादी नहीं करें या बच्चे

0: पैदा नहीं करें, क्योंकि इसका एक बहुत दुष्परिणाम डेमोग्राफिक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो मेरा तो यही मानना है कि आज आने वाली लड़कियों को, महिलाओं को, इन सबसे डरना नहीं चाहिए। वो लोग एक्चुअली इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनको लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो वो हम ये सब अपने ऊपर ले ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं सही है, और महिलाओं को अपने पारिवारिक मूल्यों का भी ख्याल रखना चाहिए। और सब कुछ होएगा अगर आपका, आप अपने उस पे अडिग हैं, आप अपना किसी को विश्वास से जीत सकती हैं, तो शायद आपको अपने कैरियर पे, इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: वाकई दोस्तों, देखिए भाई, हमारे समाज की ना एक कंडीशनिंग है, और ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये कंडीशनिंग बड़ी अलग है। मतलब बचपन से ही महिला या बच्ची जो है ना, मतलब अगर आप देखेंगे, छोटी बच्ची से लेके जवान लड़की तक, हर जगह उन्हें बस ये कहा जाता है कि तुम बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा व्यवहार है, वो तुम्हारा कैरेक्टर है, वो तुम्हारे काम है। सो इन सारी चीज़ों से ना महिलाओं पर या बच्चियों पर, या फिर कहना चाहिए लड़कियों पर, एक बचपन से ही प्रेशर रहता है, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमेशा पिक्चर परफेक्ट हो। आप देखिए ना कि ये जो एड्स बनते हैं, ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, ये किस लिए बनते हैं? क्या हम आज भी बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं? लेकिन वाकई अगर आप देखें तो लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप पतली रहिए, बहुत कम लड़कों को ये कहा जाएगा कि शादी के बाद तुम्हारा फिगर बिगड़ जाएगा और तुम अपने फिगर को ठीक करना, लेकिन लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशनिंग है हमारे समाज की ना, ये कारण है कि लड़कियों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर एक प्रेशर रहता है, और इसीलिए फिर वो ये सोचती हैं कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो कहीं ये जिम्मेदारी हमसे निभाई जाएगी या नहीं, क्या हम उन पैरामीटर्स पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, क्या हम लोगों को खुश कर पाएंगे या नहीं। सो इसीलिए मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ महिलाएं जीती हैं, और इसीलिए उन्हें सशक्तिकरण की जरूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। दीप्ति जी से आज हमने ढेर सारी बातें की, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके चैलेंजेस के बारे में जाना और साथ के साथ ये भी जाना कि क्या महिलाएं वाकई अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकती हैं और क्या वो जीना ठीक है। मतलब ये ना गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हम रिबेल हैं, ये भी नहीं महसूस होना चाहिए कि हमने समाज से हटके कुछ किया है। इस समाज के दायरे में रहते हुए समाज के साथ हाथ से हाथ मिलाकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तरीके बताए हैं दीप्ति जी ने जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद दीप्ति जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स से इतनी बेहतरीन बातचीत की। जाते जाते उन्हें क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: भावना जी, मैं एक थोड़ा सा कभी कभी कुछ लिख भी लेती हूँ, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ अभी लिखी हैं जो मैं समर्पित करना चाहती हूँ आज के यंग गर्ल्स और महिलाओं को, सबको। न केवल नारों में सिमटी, न केवल पन्नों की बात, सच्चा सशक्तिकरण वही है जो बदले मन के हालात। न पैसों की झंकार से नापो, न केवल अधिकारों से, यह तो जागृत होती है अंतर मन के विचारों से। स्वतंत्रता वह नहीं जो हमने अपने जड़ों से काट गिराए, सशक्त वही जो परिवार संग सपनों के गगन में लहराए। अहंकार से दूर रहकर जो संस्कारों को सहेजती है, वही स्त्री जग में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। न झुकना सीखना, न टिकना सीखना, सिद्धांतों पर अड़ी रहना, हर मुश्किल में हर मोड़ पर चट्टान बनकर खड़ी रहना।
0: ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत आप लिखती है दीप्ति जी, और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ना तो हम उन्हें सिक्कों की झनकार से तोल सकते हैं और ना ही हम उनके अधिकारों से इन्हें तोल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन दिल से उनसे कोई सवाल पूछा जाए और उनकी इच्छा क्या है ये पूछा जाए, सही मायने में सशक्तिकरण हमारे समाज में तब आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आज आप ना सिर्फ आपने हमारे बहुत सारी महिलाओं को एनलाइटन किया है, लेकिन साथ के साथ हमारे लिसनर्स को आपने बेहतरीन जानकारी दी है।
1: धन्यवाद भावना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आशा है मैं कुछ अपना अंश लोगों में कुछ उनको जागरूकता कर पाई होंगी और आगे वो लोग पढ़ेंगे, अपने इसी मुकाम को हासिल करेंगी। थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात, टिल देन आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बूटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आम तौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें, तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रिए में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि ये सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहे, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है। लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जैन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आएं। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने कोई जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत

0: बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है सेबी और एम्फी, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज सेबी ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है, तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्ट अप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24,000 करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए, तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, 3 चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये 3 चीजों का जवाब। जब इन 3 चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन 3 सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकता

0: आवश्यकताएं हैं क्या, यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट?
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, आई मीन ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की रेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानवरचना 107.8 FM के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बड़े एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइज़र क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है, बहुत आमतौर पर अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखें।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद।

0: बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नजरिए को बदलते हैं। और खासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर, जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें जरूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो AI का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो, एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनके उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट, जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे, तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, ATM बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके, क्या ये सुविधा हमारे पास, एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है, तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको, या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो एक दिन, दो महीने, छः महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहां आज रिडेम्पशन डालोगे तो दो दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है,
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो बिल्कुल। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा, तब भी वो रिटर्न नहीं है। राइट, रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली, अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है, तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई। इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी। राइट, ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मनोरंजना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, को कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज़ करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी।
0: तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अम्बाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अम्बाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे

उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए।

0: सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है।
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
1: मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
0: शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं,
1: मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई। सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ, ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जैसे मरा हुआ आदमी, लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूंगी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में चार एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है, उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी।
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी, पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गया। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में, कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या, यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई, मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालूं। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा ये अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, ये अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि ये अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी।
अंगरखा उतार कर रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए। फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है, ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े। वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे होगे कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे। अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे। राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है। इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो। कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है। कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा कोमल चित्त,
ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है, अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का, कि ईसाई का, कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है। वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते,
और मान के चलते कि पक्षी है। होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा। होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं। अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में। उसके दरवाजे पर लोहे के सीखों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के सीखों से अपनी पीठ खुजला रहा है।

वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे, बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी भी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी, क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की? दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस

देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा। ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन चार विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े। ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है। 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं। इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी। एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी, वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, वो नीचे रहती। एक इसकी टांगें पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से? क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और 1-2 मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। 1 दिन के लिए 1 मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका।
क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है। ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं। और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी। थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है।
मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूं। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की, कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की, कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में बैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंक जाती है, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है, इसलिए हाँ और नहीं इसलिए
कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो। जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसरुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसरुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी त्युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 हैं और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा करता था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीन कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वो केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं? और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने। उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटकाकर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारी से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पुत्रों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पुत्रों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धन का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की, जो पत्नी थी उसका नाम भी जरत्कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वे बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। सुने आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हर्ष पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना, और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते